ये आकाशवाणी है, एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफ एम एंड 103.7 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8:57 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर, और भक्ति संगीत वंदना का समय रहेगा सुबह 9:20। श्रोताओं, सुबह 9:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत भारतीय संस्कृति की संवाहक संस्कृत भाषा विषय पर सीट श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कृष्ण शर्मा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। सुबह 10:00 आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत, और सुबह 10:30 पर समय रहेगा गाने नए तराने नए फिल्म संगीत का। श्रोताओं, दिन में 11:10 पर आप सुनेंगे 12वें हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के सांस्कृतिक केंद्र में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:00, और कार्यक्रम महिला जगत आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और कार्यक्रम माटी के स्वर का समय रहेगा शाम 6:20 पर। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती बाड़ी समय रहेगा शाम 7:00, और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा, रात्रि 8:15 पर समय रहेगा फिल्मी गजलें और कव्वालियां। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे गाने नए जमाने के फिल्म संगीत, और सुगम संगीत का समय रहेगा रात्रि 9:00। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:00 को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। जयपुर में आयोजित ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत ने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड के गठन का प्रस्ताव रखा। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के तहत मतदाता सूचियों के गहन सत्यापन का काम शुरू हुआ और राज्य में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। आज बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा और टोंक के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। देश आज 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पारंपरिक बुनकरों के कौशल और देश की समृद्ध हथकरघा विरासत का सम्मान किया जा रहा है। आज ही के दिन 1905 में देश के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। इस अवसर पर आज वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में बाड़मेर जिले के सेड़वा के बुनकर बरीगा राम को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमजन से बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कलाकारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
1: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: जयपुर में भी बुनकर सेवा केंद्र की ओर से राज्य के हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। जवाहर कला केंद्र में 9 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। आयोजन का उद्देश्य हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना और बुनकरों को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर करौली जिले की खादी और हथकरघा परंपरा को भी याद किया जा रहा है। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि इस कला ने स्वतंत्रता आंदोलन से ग्रामीण आजीविका तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1928 में करौली के स्वतंत्रता सेनानी चिरंजीलाल शर्मा ने महात्मा गांधी को स्थानीय हथकरघे से निर्मित खादी वस्त्र भेंट किए थे, जिसकी गांधी जी ने सराहना की थी। जिले में दशकों से बुनकर परिवार चरखे और हथकरघे के माध्यम से आजीविका चला रहे हैं, लेकिन मशीनीकरण, आधुनिक तकनीक और बदलते बाजार के कारण यह पारंपरिक उद्योग अब सीमित होता जा रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने और स्वदेशी उत्पादों के अधिकाधिक उपयोग का संदेश दिया जा रहा है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज जयपुर में होगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले कल ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक जयपुर में आयोजित हुई। बैठक के दौरान भारत ने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का भी प्रस्ताव रखा। बैठक में ब्रिक्स देशों उद्योग मंत्रियों ने एमएसएमई, फोटोवोल्टिक उद्योग, स्टार्टअप और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का उद्देश्य व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच विश्वास मजबूत करना है। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। इस संशोधन के बाद सरकार को यूपीआई और अन्य अधिसूचित डिजिटल भुगतान माध्यमों पर आवश्यकतानुसार शुल्क लगाने का अधिकार मिलेगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए टिकाऊ राजस्व व्यवस्था तैयार करना और बैंकों तथा भुगतान सेवा प्रदाताओं को मजबूत करना है। संशोधन के तहत यूपीआई जैसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर नहीं लेने संबंधी मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के तहत मतदाता सूचियों के गहन सत्यापन का अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत सभी जिलों में मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने के लिए नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन का काम जारी है। जयपुर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है जिससे चुनाव के दौरान मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो और निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष तथा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। जैसलमेर जिले में भी चुनाव स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने कल एक बैठक ली जिसमें निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी प्रकोष्ठों की कार्य प्रगति, जिम्मेदारियों, संसाधनों की उपलब्धता, विभागीय समन्वय तथा आगामी कार्य योजना की विस्तृत समीक्षा की गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह आज जयपुर के राधा गोविंद राजकीय महाविद्यालय में युवा मतदाताओं से संवाद करेंगे। आगामी नगरीय निकाय और पंचायत

0: चुनावों के मद्देनजर आयोजित इस कार्यक्रम में वे लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी, मतदाता जागरूकता और मतदान के महत्व पर विचार साझा करेंगे। ये राज्य का पहला अवसर होगा जब राज्य निर्वाचन आयुक्त किसी महाविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं। इस संगोष्ठी में नशा मुक्त वागड़, स्वस्थ युवा, सशक्त जनजाति और विकसित भारत पर चर्चा की जा रही है। इससे पहले राज्यपाल ने कल डूंगरपुर जिले के आदिवासी गांव देवलखास में विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। कई स्थानों पर कल रात से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर सुबह तक जारी है। सवाईमाधोपुर में सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है। राजधानी जयपुर में भी कुछ इलाकों में रिमझिम बरसात हुई। भरतपुर के नदबई, वैर, रूपवास, रुदावल और उज्जैन में बरसात से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। उधर बंद बारेठा के कैचमेंट एरिया में बरसात से जल स्तर बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जल स्तर बढ़ने पर बांध के गेट खोले जा सकते हैं। उधर शिवालिक की पहाड़ियों में लगातार हो रही बारिश से हनुमानगढ़ की घग्गर नदी में पानी की आवक तेज हो गई है। इससे हनुमानगढ़ के धान उत्पादक किसानों में खुशी की लहर है। वहीं कोटपुतली, बहरोड, नीमराणा, बांसूर और विराटनगर में बरसात से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने आज बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा और टोंक जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिणी जिलों और कुछ पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर बाकी पूरे राज्य में बारिश का येलो अलर्ट है। उपमुख्यमंत्री और महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों के विकास के क्षेत्र में राजस्थान की प्रगति देश भर में उल्लेखनीय बनी हुई है। उन्होंने कल जयपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर भी जानकारी ली। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के पोषण तथा संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। जयपुर में आयोजित ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत ने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड के गठन का प्रस्ताव रखा। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के तहत मतदाता सूचियों के गहन सत्यापन का काम शुरू हुआ और राज्य में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। आज 12 बूंदी, झालावाड़, कोटा और टोंक के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

शोक संताप और ग्लानि के सागर में डूबते उतराते सुमंत्र ने सारा दिन अयोध्या नगरी के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर बिताया। जब शाम का अंधकार घिरने लगा तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। महामंत्री का अकेले वापस आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल प्रेतों के निवास स्थल जैसे लगने लगे। सुमंत्र को मौन तथा व्याकुल देखकर रानी कौशल्या उन्हें अपने महल में लिवा ले गईं। वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। आभूषण रहित मलिन राजा दशरथ धरती पर पड़े हैं। वाणी के नाम पर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी मात्र यही शब्द सुनाई पड़ते हैं। सुमंत्र ने जय जीव कहकर प्रणाम किया

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत वंदना।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत वंदना FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत भारतीय संस्कृति की संभाग संस्कृत भाषा विषय पर सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कृष्ण शर्मा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।
2: सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत कृष्ण शर्मा, जो कि संस्कृत के विद्वान हैं, और सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में प्राचार्य के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में आपको पाकर हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियोज में। नमस्कार।
3: नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
2: तो डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे हमारी संस्कृति की संवाहक संस्कृत। तो जो संस्कृत भाषा है, जो कि जिसमें कि हमारे भारतीय जो ज्ञान की परंपरा है, भारतीय साहित्य रचना हुई है आदिकाल से, हमारे जो भी ऋषि मुनियों हैं उन्होंने अपने ज्ञान को इसमें समेटा है, और भी जो विद्वान विदुषियां जो हुई हैं प्राचीन काल में, तो एक समय था जबकि संस्कृत ही भाषा थी हमारे देश में, तो और उसी से कई भाषाओं की और उत्पत्ति भी हुई। लेकिन आज हम देखते हैं कि संस्कृत जो भाषा है वो थोड़ा उपेक्षित हो गई है, और जो उसकी लोकप्रियता है वो उतनी नहीं है। उसका कारण ये हो रहा है, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो हमारी संस्कृति है वो हमारी युवा पीढ़ी तक नहीं पहुंच पा रही है, और हम बहुत तरक्की कर रहे हैं भौतिक रूप से, लेकिन फिर भी जो एक हमारा आध्यात्मिक एक स्वरूप था भारत का, एक जो हमारा एक सुख शांति और सुकून की जिंदगी थी, चाहे भौतिक सुख सुविधाएं कम थी, लेकिन आज भौतिक सुख सुविधाएं बहुत होने के बावजूद भी सुख शांति चैन नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं संस्कृत और हमारी संस्कृति।

0: संस्कृति की। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से संस्कृत के पराभव के साथ ही हमारी संस्कृति का भी क्षरण शुरू हो गया है।
1: धन्यवाद गोयल साहब। सच्चाई तो यह है कि पहले जो हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, वो संस्कृत में निहित है
0: जी।
1: सारा का सारा ज्ञान, सारे का सारा वैभव संस्कृत भाषा में ही निहित है। आज हम देखना चाहें तो हमें ये प्राप्त होता है, ये जानकारियाँ मिलती हैं कि प्रत्येक लोग, प्रत्येक व्यक्ति समाज से कटा हुआ है, समाज से दूरियां बनाई रखी हैं। उसका मुख्य कारण है वो अपनी जन भाषा, देव भाषा संस्कृत से दूरी बना चुका है। संस्कृत भाषा आध्यात्मिकता की भाषा है, देवताओं की भाषा है, और अतिशयोक्ति नहीं होगा, सभी भाषाओं की जननी भी संस्कृत भाषा ही है। आज संस्कृत भाषा से लोग दूर हो रहे हैं, विमुख हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आज संस्कृत भाषा को जानने वाले जो लोग हैं वो इसको सही ढंग से सभी लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। यदि वो लोग सही समय पर सही डिसीजन लेकर संस्कृत भाषा के सरलीकरण को करके जन सामान्य तक पहुंचाते, लोगों को जोड़ने का काम करते, तो आज वही दिन रहता जो आदिकाल में था। संस्कृत भाषा मुख्य भाषा थी, व्यवहार भाषा थी, वो आज भी रहता, लेकिन मुख्य कारण क्या रहा, संस्कृत के जानकार जो लोग थे वो इस भाषा के लिए इतना काम नहीं कर पाए। धीरे धीरे दूसरी भाषाएं विकसित होती गई और वो एक व्यापार की भाषा के रूप में डेवलप हो गई। आज सब लोग व्यापार को चाहते हैं, आर्थिक उन्नति को चाहते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में सारा का सारा ज्ञान निहित है, आर्थिक उन्नति निहित है। मुख्य कारण यही रहा कि दूसरी भाषाएं धीरे धीरे डेवलप हो गई। दूसरे लोगों का उद्देश्य भी यही रहा कि किस प्रकार से हम संस्कृत भाषा को पराभव करके, संस्कृत भाषा को तिरस्कृत करके हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, हम अपनी भाषा के वर्चस्व को आगे बढ़ाएं। रही बात सांस्कृतिक मूल्यों का, आज
0: क्षरण हो रहा है, जो नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, हमारे जो सामाजिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है,
1: जी, जी,
0: तो उसको अगर हम हमारी संस्कृति के क्षरण से जोड़ते हैं और संस्कृत भाषा के क्षरण से जोड़ते हैं, तो किस प्रकार से आप देखते हैं सब चीज़?
1: बड़ा अच्छा ये है साहब
0: जी।
1: संस्कृत भाषा का और नैतिक मूल्यों का बहुत आपस में जुड़ाव है। संस्कृत में ही सारे के सारे नैतिक मूल्य निहित हैं। देखिए, नैतिकता की बात जहां आती है वहां संस्कृत भाषा जरूर आती है। आज हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति संसार में देखते हैं, प्रत्येक घर, उसमें वातावरण दूषित हो रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि हम नैतिक शिक्षा की ओर जाते ही नहीं है, नैतिक शिक्षा पढ़ते ही नहीं है। आप देखिएगा डॉक्टर साहब, जब आप पहले पढ़ाई करते थे तो एक नैतिक शिक्षा का कालांश आया करता था। उसमें हमें साधु संतों के बारे में जीवनियां बताया करते थे, कुछ हमारी जो विरासत है उनके बारे में बताया करते थे, हमारी संस्कृति के बारे में बताया करते थे, हमारे पर्व के बारे में जानकारी दिया करते थे। लेकिन आज वो हो ही नहीं रहा है। आज केवल सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं। जिसके पास ज्यादा सूचना है उसको सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इस शक्तिशाली सूचना तंत्र के आगे नैतिक पक्ष कमजोर होता गया और वहीं से हमारी नैतिकता धीरे धीरे डाउन होती गई। आज समय यह है कि परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5ों का आपस में संवाद नहीं है। संवाद नहीं होने के कारण नैतिकता धीरे धीरे कम होती जा रही है। यदि परस्पर संवाद होता तो एक पिता को यह पता होता है कि मेरा पुत्र किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। संवादहीनता के कारण धीरे धीरे इतना दूरियां बन जाती हैं इतनी कि वो लोग नैतिक पतनता की ओर जा रहे हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि जो आर्थिक उन्नति की भी आपने बात की है कि समय तो बदल रहा है तेजी से, समय को हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन समय के साथ हमें चलना है, हमारी भाषा को चलना है, हमारी संस्कृति को भी चलना है, तो उसको समय अनुकूल बनाने के लिए ये भी जरूरी है कि भाई उसकी भाषा अगर थोड़ी क्लिष्ट है, ऐसा कहा जाता है, मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहते हैं कि भाई संस्कृत थोड़ी क्लिष्ट है, मतलब समझने में थोड़ी मुश्किल है, याद करने में मुश्किल होती है, तो एक तो इसका सरलीकरण हो, और जब तक ये जन जन की भाषा नहीं होगी, लोकप्रिय नहीं होगी, इसको व्यवहार में नहीं लाया जाएगा, तब तक इसके माध्यम से जो भी ज्ञान विज्ञान हमारा भंडार पड़ा है वो ऐसे ही रहेगा बगैर किसी काम के। तो उसको काम में लिया जाए, उसके लिए जरूरी है कि आप क्या मानते हैं, इसमें किन लोगों को काम करना चाहिए, क्या काम होना चाहिए जिससे कि संस्कृत भाषा को हम न केवल अपनाएं बल्कि उस भाषा में जो भी ज्ञान विज्ञान का हमारे पास संकलन है उसका भी हम

0: जीवन में उपयोग कर सके। और भारत की संस्कृति, भारत तो विश्व गुरु रहा हुआ है, और वो विश्व गुरु अपनी इसी आध्यात्मिक उन्नति की वजह से, और जो भी उसकी ज्ञान विज्ञान का भंडार है, और जो चीज़ें आज हम देखते हैं दूसरे रूप में वो आ रही हैं, वो सब चीज़ें किसी न किसी रूप में हमारी प्राचीन साहित्य संस्कृति और ग्रंथों में
1: विद्यमान है।
0: मौजूद है। तो वो चीज़ें वापस से आएं और लोग स्वेच्छा से इसको अपनाएं, क्योंकि केवल सरकारी प्रयासों से तो कोई काम होना संभव नहीं है। तो इसके साथ साथ सामाजिक, मतलब जो सपोर्ट है, सामाजिक जो उसको एक संबल मिले, और जो संस्थाएं हैं वो इसको लेकर, जो समाज सेवी हैं, संस्कृत सेवी हैं, वो भी इसको ले। अभी हमारी सरकार ने कुछ प्रयास तो कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि जो मन की बात होती है, हमारे प्रधानमंत्री जी हर महीने की आखिरी रविवार को जो मन की बात करते हैं, उसके बाद उसके संस्कृत भाषा का अनुवाद का भी प्रसारण, एक नई परंपरा शुरू हुई है, एक नई चीज़ हम ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी से भी करते हैं। तो सरकार का प्रयास तो है, लेकिन केवल सरकारी प्रयास नाकाफी है जहाँ तक हम सोचते हैं। तो आप चूंकि संस्कृत से जुड़े हुए, संस्कृत के विद्वान हैं, और संस्कृत पठन पाठन का काम आप कर रहे हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किस प्रकार से इस भाषा को आगे बढ़ाकर हम अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाएं।
1: धन्यवाद। देखिए साहब, आपने प्रारंभ में ही कहा कि संस्कृत भाषा कठिन है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। संस्कृत भाषा कठिन है ही नहीं, बहुत सरल भाषा है। बस प्रयास करना चाहिए, जो प्रयास करता है वह इस भाषा को साध लेता है। सच्चाई तो यह है कि इसका व्याकरण इतना पुष्ट है कि जैसे गणित में 1 + 1 = 2 होता, ठीक उसी प्रकार से हमारे व्याकरण के सूत्र हैं। उन सूत्रों के हिसाब से उच्चारण में शुद्धता आती है, शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास किस प्रकार से शुद्धता है, सारा का सारा सटीक है।
0: जी
1: तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि संस्कृत भाषा बहुत सरल है, इसको
0: जी
1: कठिनता की ओर
0: डॉक्टर
1: लोगों ने
0: साहब, यहाँ थोड़ा
1: धकेल
0: मैं
1: दिया
0: आपको
1: है।
0: टोकना चाहूंगा कि वैज्ञानिक भाषा है, इसमें कोई शक नहीं है, और शुद्ध है, व्याकरण सम्मत भाषा है, वो सब बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों नहीं लोकप्रिय हो रही है,
1: हाँ,
0: ये थोड़ा सा हमारा विचारणीय विषय। क्योंकि हम ये कह दें कि संस्कृत भाषा क्लिष्ट नहीं है, बहुत सरल है, उससे काम नहीं चलेगा।
1: मैं बताना चाहूंगा, पाणिनीय, महर्षि पाणिनीय से ले

0: लेकर संस्कृत भाषा को सरलता के लिए काम किया गया। इससे पहले ये वैदिक भाषा थी, उसको सरल भाषा में लाने का काम सबसे पहले महर्षि पाणिनि को जाता है। महर्षि पाणिनि ने सूत्रबद्ध काम किया, सरलता की ओर लेके गई। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि लोग जुड़ नहीं रहे हैं, जुड़ने
1: जी
0: के मुख्य कई कारण हैं। आज आर्थिक युग है, इस भाषा में आर्थिकता लाने के लिए वैदेशिक जो वैश्विक मंच है उसके ऊपर संस्कृत भाषा पनपी हुई नहीं है। वहाँ पर अंग्रेजी या अन्य दूसरी भाषाओं का बोलबाला है। लोग शॉर्टकट चाहते हैं, शॉर्टकट में विचार जो अपने स्थापित कर सकते हैं, इसलिए क्या वैदेशिक जो मंच है उसके ऊपर संस्कृत भाषा का वो प्रभाव नहीं रहा, इसलिए लोग इससे जुड़ नहीं रहे हैं। लोगों की इच्छा रहती है कि मैं किस प्रकार से आगे बढ़ूं। तो जो समुदाय है, व्यापारिक समुदाय है, दूसरे जो समुदाय हैं, वो लोग संस्कृत के जानकार नहीं हैं, वो दूसरी भाषा को जानते हैं। लोग आगे बढ़ने के लिए उन लोगों से संपर्क करते हैं, इसलिए संस्कृत भाषा को अपना नहीं पाए। दूसरा मुख्य कारण क्या है कि संस्कृत भाषा स्वान्तः सुखाय की भाषा है। संस्कृत भाषा आत्म शांति की भाषा है, अपने आप को साक्षात्कार करने की भाषा है। यदि संस्कृत भाषा भाषी जो व्यक्ति है वो कहीं पर भी जाता है तो आप देखिएगा उसकी विचारधारा में उसके सोचने की शक्ति, समझने की सारी अलग मिलेगी। तो निश्चित रूप से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक जो दूसरी भाषा पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके संस्कारों में, उसकी संस्कृति में निश्चित रूप से आपको अंतर मिलेगा। अब
1: बिल्कुल
0: रही बात ये कि लोग अपना नहीं रहे हैं।
1: जी
0: अपनाने का मुख्य कारण क्या है कि संस्कृत भाषा वालों के लिए रोजगार नहीं है। रोजगार के कई कारण हो सकते हैं, तो रोजगार अपने को खुद को डेवलप करने पड़ेंगे। अब
1: जी
0: संस्कृत भाषा क्लिष्ट भाषा आप कहते हैं, उसका कारण यह है कि संस्कृत धीरे धीरे

0: गए हैं। संस्कृत भारती एक आंदोलन के रूप में काम कर रही है, लोगों को संस्कृत के प्रति जोड़ रही है, और वो एक विशेष शिविर लगाते हैं संस्कृत भारती वाले, तो उसमें केवल 7 दिन में संस्कृत बोलनी सिखा देते हैं। आज पहले वाली बात नहीं रही, जैसे आप कह रहे हैं कि लोग संस्कृत से दूर जा रहे हैं। मैं भी संस्कृत भारती के शिविरों में जाता रहता हूँ,
1: जी
0: लोग बड़े उत्साह से संस्कृत सीखने के लिए आते हैं, और संस्कृत सीखकर गीता पाठ करते हैं या ईश्वर आराधना करते हैं, बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं संस्कृत बोलनी सीख गया।
1: जी तो डॉक्टर साहब, आप काफी लंबे समय से संस्कृत साधना कर रहे हैं और संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य आप हैं, तो मैं संस्कृत भारती की आपने अभी उल्लेख किया है उसका, तो वो उसके द्वारा भी आपको हाल फिलहाल में बहुत जल्दी ही सम्मानित किया जाएगा ऐसा हमें ज्ञात हुआ है, तो थोड़ा जानना चाहेंगे आपकी साहित्य साधना और संस्कृत साधना के बारे में और थोड़ी आपकी इस क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में संक्षेप में, कि जिसके वजह से जिसके लिए आपको कि सम्मानित किया जाएगा संस्कृत भारती द्वारा।
0: मैं आपको निवेदन करना चाहूँ, इससे पहले का जो टॉपिक है थोड़ा सा पूरा नहीं हो पाया था, वो पूरा
1: जी
0: करूँ।
1: जी
0: संस्कृत के क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, उसके वर्तमान में कुलपति माननीय बरखेड़ी महोदय हैं। बरखेड़ी महोदय को लगभग 5 वर्ष हुए हैं कुलपति के रूप में काम करते हुए। वो जब से आए हैं संस्कृत भाषा को जन भाषा के रूप में, कंप्यूटर की भाषा के रूप में जोड़ने के लिए कई नवीन प्रयोग किए हैं। जैसे उन्होंने बीटेक पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिया संस्कृत में।
1: जी
0: उनका उद्देश्य है कि ये जो कंप्यूटर की भाषा है, कोडिंग की जो भाषा, वो संस्कृत है। नया पाठ्यक्रम कर दिया, नवाचार हुआ है।
1: जी
0: आप ताजुब करेंगे कि वहाँ भी लोग बीटेक संस्कृत के माध्यम से कर रहे हैं, ये नवाचार है हमारा।
1: जी
0: इसी प्रकार से न्यायालय की जो पढ़ाई होती है, जिसे हम LLB बोलते हैं,
1: कानून
0: वो
1: की पढ़ाई।
0: जी
1: जी
0: कानून की पढ़ाई,
1: जी
0: उसको भी हमने क्या किया, संस्कृत माध्यम से पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। तो एक नवाचार किया है। अभी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के द्वारा कई इस प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, ग्रंथों का अनुवाद करना, छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा जन सामान्य तक पहुंचना। एक नई योजना है कि ये पांडुलिपि मिशन है, जो
1: जी
0: हमारा पूरा का पूरा ज्ञान है वो पांडुलिपियों में निहित है। बहुत सारी पांडुलिपियां ऐसी हैं जो अभी भी सुरक्षित हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, पता ही नहीं कहाँ है। केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई, पांडुलिपि मिशन ज्ञान भारतम, इसके द्वारा पांडुलिपियों का सर्वे हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को सूचना देना चाहूंगा, पांडुलिपि सर्वेक्षण के क्षेत्र में राजस्थान प्रथम स्थान पर आया है। वो
1: जी
0: तभी आ पाया है जब बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, सुप्रीम फाउंडेशन जैसे संगठन इसमें सहयोग कर रहे हैं। राजस्थान जयपुर में अपने कई प्रकार के NGO जैसे हैं जो कि इस पांडुलिपि मिशन में सहयोग कर रहे हैं। पांडुलिपियों में अपना जो पुराना ज्ञान वैभव है वो सुरक्षित है। पहला काम उसको सुरक्षित करना है, दूसरा स्टेप उनमें जो ज्ञान है उसको प्रकाशित करना रहेगा, तीसरे नंबर पर जनसामान्य को पहुंचाना रहेगा। इसी प्रकार से कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि संस्कृत विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दे रहे हैं, संस्कृत के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार के और कार्यक्रम कर रहे हैं। एक सुप्रीम फाउंडेशन नाम की संस्था है, वो जितने भी राजस्थान में संस्कृत विद्यालय हैं वहाँ अध्यापक लगा रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य, संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी कोई बिना अध्यापक के नहीं रहे, अध्यापक के अभाव में उसकी शिक्षा में कोई कमी नहीं आए। तो ये एक संस्कृत के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है, संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। और भी कई, एक तोसनीवाल ट्रस्ट है, वो संस्कृत विद्यालयों में जहाँ भी भूमि नहीं है, भवन नहीं है, वहाँ बैठने के लिए व्यवस्था करते हैं, भूमि भवन की व्यवस्था करते हैं। विद्यार्थियों के लिए कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, वो सबसे पहले संस्कृत के विद्यार्थियों को चिन्हित करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं।
1: जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने।
0: एक
1: जी
0: बात, एक और निवेदन करना चाहूँगा मैं, ये जो पाठ्यक्रम है, जैसे कई वर्षों पहले जो ये आयुर्वेद की पढ़ाई होती थी
1: जी
0: वो संस्कृत वाले विद्यार्थियों के लिए एक स्वप्न
1: बिल्कुल।
0: हो गया था, लेकिन माननीय बरखेड़ी महोदय ने एक ऐसी योजना चलाई, आयुर्वेद गुरुकुलम। उसके तहत क्या है कि जो बच्चा 10वीं पास करता है उसके बाद वो आयुर्वेद की पढ़ाई में आ जाए, एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट में देकर वो

0: 11वीं में ही आयुर्वेद BAMS की पढ़ाई चालू कर देगा। तो ये हमारे संस्कृत भाषा में नवाचार हैं, इन नवाचारों को हम कर रहे हैं। आप ताजुब करेंगे, वेटिंग लिस्ट निकलती है हमारी। पहले लोग कहते थे कि संस्कृत पढ़ने नहीं जाते हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ वेटिंग लिस्ट निकलती है और
1: जी,
0: संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा काम हो रहा है वर्तमान में।
1: तो बहुत ही सुंदर बात बताई
0: जी जी
1: आपने। और अब हम बात कर रहे थे कि संस्कृत, आपके संस्कृत साधना की,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: संस्कृत साधना के क्षेत्र में मेरा ये है कि मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी रहा ही हूँ और मेरे उत्साह से मैं संस्कृत का काम करता हूँ। मैंने संस्कृत के लगभग विभिन्न विषयों पर आज तक 10 कृतियाँ लिखी हैं और जो भी संस्कृत विद्यार्थी आता है मेरे पास, मैं सबसे पहले उसका मूल्यांकन करता हूँ कि ये कितना क्या कर सकता है। उसके बाद कई विद्यार्थियों की श्रेणियाँ अलग अलग बांटकर उनको उन्हीं क्षेत्रों में काम करने के लिए आगे बढ़ाता हूँ। कुछ विद्यार्थी पौरोहित्य कर्मकांड के लिए आते हैं, कुछ विद्यार्थी एक सेना में रिलीजियस टीचर होता है जिसे धर्मगुरु कहा जाता
1: जी
0: है,
1: जी
0: उस धर्मगुरु के लिए मेरे पास आते हैं तो उनको धर्मगुरु के रूप में प्रशिक्षित करके आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। संस्कृत शिक्षा में जहाँ पर अध्यापकों की कमी थी और कमी थी, सेठ जी ट्रस्ट से कई लोगों से मैंने निवेदन किया और उन संस्कृत स्कूलों को कॉलेजों को आगे बढ़ाने का काम किया। एक राजस्थान संस्कृत अकादमी है जो कि वेद विद्या का प्रचार प्रसार करती है, वहाँ मैं महासमिति सदस्य हूँ। वहाँ पर भी हमने एक योजना चलाई कि सभी वेद विद्यालयों में संस्कार शिविर लगाए जाएं। उन संस्कार शिविरों के द्वारा जो वेद विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको संस्कारित किया गया, उनको 21 दिन का प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण के आधार पर हमने देखा कि अब वो जहाँ भी जा रहे हैं रोजगार के लिए एक अलग पहचान है। खास करके वो विद्यार्थी पौरोहित्य कर्मकांड ही करते हैं, लेकिन बिना प्रशिक्षण के और प्रशिक्षण लेने के बाद उनमें जो निखार आया है वो एक बहुत बड़ा अंतर है। इसी प्रकार से राजस्थान में जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर है, वहाँ पर हमने एक मंत्र प्रतिष्ठान है, उस मंत्र प्रतिष्ठान को विकास करने का ठाना। वो इसलिए विचार किया कि एक बार अखबार में समाचार छपा कि मंत्र प्रतिष्ठान में कोई काम नहीं हो रहा। मैंने माननीय महावीर प्रसाद जी तापड़िया महोदय से निवेदन किया कि अपने को मंत्रों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। वास्तव में आज तंत्र मंत्र यंत्र के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो हमने वहाँ एक MOU किया और MOU करके वहाँ पर मंत्रों का प्रत्यक्षीकरण किया गया। अब आगे की हमारी योजना ऐसी है, उन मंत्रों को जैसे ये CD में गाने आते हैं, फिल्मों के गाने आते हैं, इसी प्रकार से उस मंत्रों के ज्ञान को छोटे छोटे CD बनाकर या फिर वो पेन ड्राइव में डालकर वो एक वितरण करेंगे। उससे ये संदेश जाएगा कि ये कितने उपयोगी हैं, जो लोग इनका प्रयोग करेंगे उनको महसूस कर पाएंगे कि मन शांति के लिए कितने अच्छे हैं।
1: जी, तो एक समय था जब मंत्र का जमाना था,
0: जी
1: यानी जब मंत्र काम करता था, फिर आया तंत्र, फिर आए यंत्र, और अब है षड्यंत्र।
0: जी जी
1: तो इन सारे जो षड्यंत्र हैं, चाहे वो हमारे देश की ताकतें हैं जो कि एंटी सोशल ताकतें हैं या विदेशी ताकतें हैं, तो वो हमारी संस्कृति को हड़प करके और जो हमारे बच्चों का दिमाग कैप्चर करके, और वो षड्यंत्र जो कर रही हैं, उस षड्यंत्र को हम किस प्रकार से असफल कर सकते हैं हमारी संस्कृति और संस्कृत भाषा की तरह। लोगों से आप क्या अपेक्षा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा समय कम है, इसलिए हम संक्षेप में ही बात को आगे बढ़ा
0: बहुत
1: पाएंगे।
0: बहुत अच्छा डॉक्टर साहब,
1: जी
0: मेरा ये निवेदन है कि वर्तमान में सभी जगह षड्यंत्र तो हो ही रहे हैं,
1: जी
0: लेकिन फिर भी जो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत में एक अकृत्य व्यूहा पाणिनीया, पाणिनीय की एक सूक्ति है, उस मंत्र है, उसका अर्थ यह होता है कि पाणिनीय संस्कृत पढ़ने वाले लोग भावी विनाश को पहले ही देख लेते हैं और उसी हिसाब से गुण वृद्धि का कार्य करते हैं। आज आवश्यकता ये उन षड्यंत्रों से बचने के लिए आवश्यकता ये है कि वेद की रक्षा की जाए, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया जाए और हम सभी लोग ध्यान मेडिटेशन इत्यादि के द्वारा जो गुरुकुल पद्धति है उसको पुनः विकसित किया जाए। गुरुकुल पद्धति पुनः विकसित हो जाएगी तो अपने भारत देश में संस्कार और संस्कृति की कमी नहीं रहेगी, अपना भारत देश पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो पाएगा। पुनः वर्तमान में आवश्यकता यही है कि हम संस्कारों की ओर लौटें, वेदों की ओर लौटें, हमारे भारतीय संस्कृति ज्ञान परंपरा वैभव उसको अपनाएं और अपने आप को अपडेट करते हुए आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।
1: तो बहुत ही अच्छी चर्चा आज हुई।

0: ये डॉक्टर साहब, आपसे आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर हेमंत कृष्ण शर्मा, जो कि प्राचार्य हैं जसवंतगढ़ में, जो संस्कृत कॉलेज है, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय। और बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है, लेकिन अभी हम कहें कि चर्चा अधूरी है, क्योंकि और वैसे इस चर्चा का हम कहें कि जो समय जितना कम हो, वो जितना समय हो उतना ही कम है, लेकिन हम समय की सीमा को देखते हुए
1: जी जी
0: आज इतनी चर्चा कर पाएंगे। आज आप हमारे स्टूडियोज में आए और हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद साहब, आपका धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिले के अंतर्गत भारतीय संस्कृति की संवाहक संस्कृत भाषा विषय पर सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कृष्ण शर्मा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। FM FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत। आवाज यशुदास की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का फिल्म सुनैना,

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया फिल्म सूरज से, जिसमें आवाजें दी है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने। संगीत शंकर जयकिशन का, गीतकार हसरत जयपुरी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत शिव हरि के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर के बोल, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म सिलसिला।

0: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेती बाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज, संगीत राजकमल का, गीतकार गोहर कानपुरी, फिल्म सावन को आने दो।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, संगीत राजेश रोशन का, फिल्म मिस्टर नटवरलाल।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के, फिल्म संगीत FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गाने नए, तराने नए, फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत राहत फतेह अली खान की आवाज में, फिल्म मौसम। गीतकार इरशाद कामिल और संगीत है प्रीतम का।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मेरी प्यारी बिंदु से, आवाज अरिजीत सिंह की, संगीत सचिन जिगर का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत मोहनजोदारो फिल्म से, आवाजें AR रहमान और साहान मोहंदी की, संगीत AR रहमान का, गीतकार जावेद अख्तर।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत राहत फतेह अली खान और कृष्णा की आवाज में, संगीत हिमेश रेशमिया का, गीतकार जावेद अख्तर, फिल्म नमस्ते लंदन।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शानदार से आवाज अमित त्रिवेदी की। संगीत भी अमित त्रिवेदी का और गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाज में, संगीत साजिद वाजिद का, गीतकार इरशाद कामिल, फिल्म

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने नए फिल्म संगीत एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 11:10 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे 12वें

0: माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: Yevakir Sindarov in the penultimate round, finishing the tournament with 23 points out of a possible 35. And that is the end of this news bulletin.

0: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। आज का यह समारोह भारत की समृद्ध वस्त्र परंपरा, बुनकरों की अद्भुत कला और हमारी सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। इस गरिमामय अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, देशभर से चयनित उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों और शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसका विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसीआर खान और मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
1: नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर डियर लिसनर्स ट्यून्ड इन, एंड वी एक्सटेंड आवर हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स ऑन द 12th नेशनल हैंडलूम डे। The Ministry of Textiles, Government of India, is celebrating the 12th National Handloom Day today with the national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Centre, New Delhi. The function celebrates India's rich handloom heritage and recognises the contribution of the handloom weaving community to the nation's cultural and economic development. The Honourable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will grace the occasion as the chief guest. The function will also be attended by the Union Minister of Textiles, Shri Giriraj Singh, Union Minister of State for Textiles, Shri Pavitra Margarita, Shrimati Neelam Shami Rao, Secretary Textiles, and Dr. M. Bina, Development Commissioner, Handlooms. The celebrations will also be attended by Sant Kabir Handloom Awardees and National Handloom Awardees and their family members. Handloom weavers from across the country, members of the Award Selection Committee, eminent personalities associated with the handloom sector, senior government officials, media representatives and other distinguished guests. A major highlight of the celebrations is the presentation of the Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for the year 2025. A total of 22 awards comprising 3 Sant Kabir Handloom Awards and 19 National Handloom Awards will be conferred upon outstanding handloom weavers for their outstanding craftsmanship, innovation and contribution to the preservation of India's handloom traditions. The function will also witness the release of 4 commemorative postage stamps celebrating India's rich and diverse handloom weaving traditions. 2 publications will also be unveiled by the Honourable President: Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India, and the Handloom Awards Book 2025 will be unveiled during the function. An exhibition showcasing award-winning handloom products has been organized on the sidelines of the events. Visitors here will have the opportunity to witness live demonstrations of traditional kani weaving and wall hanging weaving, providing a glimpse into the diversity and craftsmanship of India's handloom traditions.
0: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu aaj राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान प्रतिष्ठित हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, हथकरघा उद्योग के प्रतिनिधि, मास्टर बुनकर, डिजाइनर, निर्यातक, कारीगर और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। भारत की समृद्ध हथकरघा परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास में असाधारण योगदान के लिए कुल 22 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता शामिल है। वस्त्र मंत्रालय ने

0: संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्योगों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के हथकरघा विपणन सहायता घटक के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दौरान ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठन को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने भारत की हथकरघा विकास को मजबूत करने और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कार्यक्रम में देशभर से संसद सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ, शैक्षणिक संस्थान, निर्यातक, डिजाइनर और हथकरघा बुनकर शामिल हो रहे हैं। हथकरघा पुरस्कारों का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और निरंतर प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना है। ये पुरस्कार उत्कृष्ट शिल्प कौशल, पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने हेतु आधुनिक तकनीकों को अपनाने, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन नवाचार और बुनकर समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देते हैं। अगर बात करें संत कबीर हथकरघा पुरस्कारों की तो ये उन हथकरघा बुनकरों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने असाधारण शिल्प कौशल और भारत की बुनाई परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए आजीवन समर्पण दिखाया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन असाधारण तकनीकी कौशल, नवाचार, इस क्षेत्र में निरंतर योगदान, पारंपरिक बुनाई के तरीकों को बढ़ावा देने, कारीगरों को मार्गदर्शन देने और समुदाय के विकास के लिए प्रयासों के आधार पर किया जाता है। ये जो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार है इसमें शामिल है एक सोने का सिक्का, तामपत्र, शॉल, प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन हथकरघा बुनकरों और हितकारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनात्मक गुणवत्ता, नवाचार और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। ये पुरस्कार कारीगरों और संस्थानों को भारत की विविध हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करते हुए शिल्प कौशल, उत्पाद विकास और बाजार में पहुंचने वाले मानकों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बुनाई श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं का चयन जोनल मुख्यालय और केंद्रीय स्तर की चयन समितियों के माध्यम से एक कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इन समितियों में अनुभवी, पेशेवर, तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं जो निर्धारित पात्रता मानदंडों और मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर नामांकनों का आलंकन करते हैं। डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों से संबंधित श्रेणियों के लिए नामांकन को अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यालय समिति और केंद्रीय स्तर की समिति द्वारा एक व्यवस्थापित मूल्यांकन के द्वारा गुजरना पड़ता है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये 12वें राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का वितरण करेंगी।
1: Yes, you're absolutely right. The National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement, which launched on the 7th of August 1905, that gave renewed impetus to indigenous industries and India's handloom sector. The observance recognizes the enduring contribution of handloom weavers to the country's cultural heritage and socio-economic development. Since its inception in 2015, National Handloom Day has served as an occasion to celebrate the artistry, skill and dedication of India's handloom weavers while reaffirming the government's commitment to the preservation, promotion and sustainable development of the handloom sector. India's handloom sector continues to be one of the country's largest source of sustainable rural employment, supporting livelihoods of more than 35 lakh persons, with women constituting over 70% of the workforce. Besides its economic significance, the sector remains a custodian of India's rich textile traditions and an important contributor

0: to environmentally sustainable production practices. In the 136th episode of Mann Ki Baat on the 26th of July, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi had said that on the 7th of August, our country will celebrate National Handloom Day. On this occasion, quote the Prime Minister, we celebrate the skills and creativity of our weaver brothers and sisters. These friends of ours are carrying forward traditions that have been passed down through generations, unquote, the Honorable Prime Minister. Every handloom garment tells the story of a specific region or community and the countless people associated with it. These are people who are proudly dedicated to preserving India's cultural heritage. The Honorable Prime Minister has urged every citizen to honor our weaver friends by encouraging handloom crafts. This will further strengthen the spirit of being vocal for local. Since 2015, the way handloom has been promoted in the country, it has improved the lives of a large number of people. The saris of Pochampalli and from Kuthampalli and Kutch, these saris have enriched many individuals and touched many groups, infusing new energy and identified into our glorious handloom traditions. These are carrying forward the beautiful tradition, while others are engaging women weavers to create wool products. People are preserving their traditional arts and providing employment to our sisters. And this also brings to mind that our handlooms indeed are a rich tapestry of what India has to offer to the world. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, in just a short while from now, will present the National Handloom Awards and the Sant Kabir Handloom Award to the winners of the National Handloom Awards 2025 at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में ये हथकरघा पुरस्कार देंगी। इसमें शामिल है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, कमला देवी चट्टोपाध्याय हथकरघा पुरस्कार, हथकरघा उत्पादों के डिजाइन विकास स्टार्टअप उद्यम और प्रोड्यूसर कंपनी का विपणन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार वर्ष 2025। आपको बता दें, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा मिली थी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के संकल्प ने भारतीय हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान की। उसी ऐतिहासिक विरासत के सम्मान में वर्ष 2015 से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र का वातावरण बहुत ही गर्मीमय और अत्यंत भव्य दिखाई दे रहा है। सभागार को देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक हथकरघा कलाकृतियों, रंग बिरंगे वस्त्रों और पुष्प सज्जा से सुसज्जित किया गया है। देशभर से आए बुनकर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी, डिजाइन विशेषज्ञ और अनेक विशिष्ट अतिथि इस समारोह में उपस्थित है। भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है और यही विविधता हमारे हथकरघा उद्योग में भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी विश्वभर में अपनी महीन जरी बुनाई के कारण प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां अपनी शुद्ध रेशमी बुनाई के कारण एक विशेष स्थान रखती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां अपनी हल्की बनावट और उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जानी जाती है। तेलंगाना की पोचमपल्ली इकट, गुजरात का पटोला, पश्चिम बंगाल की बालूचरी और जामदानी, असम का मूंगा रेशम और कश्मीर का पश्मीना, ये सभी भारतीय बुनकर की अद्भुत कला के जीवंत उदाहरण है। हथकरघा उद्योग भारत में कृषि के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े पारंपरिक क्षेत्र।

0: में से एक है। देश भर में लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि देश भर के सभी जो हमारे महिलाएं हैं वो कताई, रंगाई, बुनाई, डिजाइनिंग और विपणन, हर स्तर पर महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में दिखाई देता है। वहीं भारत का वस्त्र मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, बुनकर सेवा केंद्र, डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन और डिजिटल विपणन तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनकरों को नई संभावनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल भारतीय हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता का प्रतीक बन चुकी है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
1: Yes, you are absolutely right. And today, the Honorable President of India will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Komala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to one awardee, and National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Komala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for the year 2025 to two awardees, and the National Handloom Award for Startup or Producer Company for the year 2025 to one awardee. And it is indeed a proud moment for them. And these awardees will also interact with the Honorable President. And in just a short while from now, we shall be taking you over to the Rashtrapati Bhavan Cultural Center, where the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 and the National Handloom Award 2025. We take you over to Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
2: Namaskar, Maninye Rashtrapati Ji, Evam Manch Par Biraje Vishisht Atitigan. Aaj 12ve Rashtriya Hatkarga Divas Samaroh Ka Shubharam, Hum Sarvapratham Deep Prajwalan Ke Saath Karenge. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें एवं मंच पर विराजे सभी माननीय अतिथिगण, वस्त्र मंत्री जी, आदरणीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री जी, वस्त्र सचिव एवं विकास आयुक्त हथकरघा से भी अनुरोध करती हूं कि वे कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों।

0: धन्यवाद। और अब इस समारोह का आविर्भाव करते हुए मैं सर्वप्रथम श्रीमती नीलम शमी राव, सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना स्वागत भाषण दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, डिस्टिंग्विश्ड अवॉर्डीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, members of the handloom fraternity, industry leaders, development partners, deviyon aur sajjanon, main is 12ve rashtriya hathkarga divas par maniye rashtrapati ji ka swagat karti hu. main swagat karti hu desh ke sabhi बुनकर भाइयों और बहनों का,

0: It is a privilege to join you all in celebrating the 12th National Handloom Day, an occasion that honors the extraordinary contribution of India's weaving community and reaffirms nation's collective commitment to strengthen the spirit of Swadeshi. The handloom sector, a custodian of our civilizational heritage, ग्रामीण रोजगार का साधन, महिलाओं के आगे रखे हुए डेवलपमेंट का सूत्रधार और सस्टेनेबल प्रोडक्शन की धुरी, यह 35 लाख वीवर्स और उससे जुड़े हुए लोगों को सपोर्ट करता है। मंत्रालय अपनी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में हैंडलूम डेवलपमेंट की दुई पक्षीय या दो तरीके की ऑब्जेक्टिव्स पर काम करता है, जहां पर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव, रेजिलियंट और फ्यूचर रेडी हैंडलूम इकोसिस्टम की भी हम बातचीत करते हैं। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम और रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के माध्यम से हम लाखों बुनकरों
1: कब्स हेलो हेलो देख रहे हो
2: आपको बता दें राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक गेन सभागार में 12वें राष्ट्रीय हैंडलूम पुरस्कार दिए जा रहे हैं।
0: 1.5 लाख वीवर्स हैव बीन ऑनबोर्डेड ऑनटू द इंडिया हैंडमेड ई मार्केटप्लेस हैंडलूम हार्ट्स कॉटेज कुंज have been repositioned as a professionally curated year-round platforms to reach out to the consumers and bring the best of handlooms and handicrafts to the world. The formation of 200 handloom producer companies across the country has enabled weavers to work together professionally, access markets more effectively, and achieve economies of scale. Weave the Future के तहत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डिजाइन टूल्स उनके द्वारा बनाए गए ट्रेडिशनल मोटिव्स को रीइमेजिन करने की चेष्टा और ग्लोबल बाजार के अनुरूप तैयार किए गए डिजाइंस वाइल्ड डिजिटल कैटलॉगिंग एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर कनेक्टिंग लूम्स इन रिमोट विलेजेस डायरेक्टली टू कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड QR बेस्ड ऑथेंटिकेशन would provide traceability, ensuring that the story, skill, and heritage behind each weave reaches with complete transparency and trust. Institutional partnerships remain essential to this journey. Initiatives like Weave the Future are positioning India's handloom tradition as a global leader in sustainability, championing circularity, responsible production, innovative designs, and the slow fashion. Our collaboration with organizations such as UN Women, academic institutions like IITs, design schools, NIFT, and research bodies has enabled new approaches. The growing recognition of more than 100 geographical indicators tagged handloom products has also provided larger, distinct, and unique identity. In the vision of Viksit Bharat 2047, the handloom sector stands as a shining tradition and progress, with technology as an enabler and weavers at the heart of journey. It is building a future where this legacy of handloom leads the world. Aaj इस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मैं आप सभी को अपना सिंसियर एप्रिसिएशन देती हूँ, राज्य सरकारों को भी, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को भी, डेवलपमेंट पार्टनर्स और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को भी, पर सबसे ज्यादा उन बुनकर बहनों और भाइयों को जिनके बुने हुए ताने बानों से हमारा जीवन रंगीन, जीवंत और एक मेमोरी के साथ जुड़ा रहता है. आई वंस अगेन वेलकम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम एंड एवरीबॉडी ऑन दिस ओकेशन ऑफ द 12th हैंडलूम डे. थैंक यू. जय हिंद.
3: थैंक यू मैम फॉर दिस वार्म वेलकम एड्रेस. अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करती हूं कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत एवं सम्मान करें. आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह टू काइंडली फेलिसिटेट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट.
2: और अब केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह माननीय राष्ट्रपति का शॉल पहनाकर सम्मान कर रहे हैं. तालियों के साथ सबने उसका अभिवादन किया.
3: धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी. और अब हम बढ़ते हैं आज के समारोह के इस महत्वपूर्ण भाग पर जो है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों की ओर. ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन कुशल बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित करते हैं जिनकी लगन, इन्वोकेशन और कलात्मकता ने हमारी राष्ट्र की हथकरघा विरासत को अत्यंत समृद्ध बनाया है. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 3 पुरस्कार जिसमें पदक और ताम्रपत्र शामिल हैं, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, ये कुल 21 पुरस्कार हैं जिसमें ताम्रपत्र शामिल हैं, इनके विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करें.
2: और अब 12वें राष्ट्रीय
3: सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 के साथ.
2: माननीय राष्ट्रपति
3: बुनकर वर्ग से आ रहे हैं ओडिशा से श्री राम मेहर. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. आपके उत्पाद का नाम है विजित पार खादी साड़ी. मेडल और ताम्रपत्र के साथ संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा रहा है श्री राम मेहर. हमारे अगले विजेता हैं बुनाई वर्ग से ही असम से आई श्रीमती रुनिमा चेतिया चौधरी. आपका विशेष उत्पाद है मूंगा सिल्क साड़ी.

हमारे अगले विजेता हैं उत्तर प्रदेश से बुनाई वर्ग से ही जनाब शाह मोहम्मद अंसारी, आपका विशेष उत्पाद जरबफ्त श्वेतांबरी अवध जामदानी साड़ी। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 की ओर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुनाई वर्ग के लिए ही तमिलनाडु राज्य से आए अन्नामलाई मारिमुतो, आपका विशेष उत्पाद है कांचीपुरम रेशमी साड़ी और ये जॉइंट अवार्ड है। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता हैं कुमारन बलरामन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आपका भी विशेष उत्पाद कांचीपुरम रेशमी साड़ी। हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही तेलंगाना से आए श्री गंजी वेंकटेश, आपका विशेष उत्पाद इक्कत साड़ी। बुनाई के लिए ही अगले विजेता आंध्र प्रदेश से श्री मरकला नटराज, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए कॉटन टसर हाफ और हाफ जामदानी साड़ी, आपका विशेष उत्पाद। अगले विजेता उत्तर प्रदेश से बुनाई के लिए जनाब नसीम अंसारी, आपका विशेष उत्पाद इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी। जम्मू और कश्मीर से हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही ये भी एक जॉइंट अवार्ड है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनाब फयाज अहमद वानी, आपका विशेष उत्पाद चांददार कानी शॉल। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता जनाब मंजूर अहमद हजाम,

0: हमारे अगले विजेता हैं मध्य प्रदेश से बुनाई के लिए श्री कमल गौड़। आपका विशेष उत्पाद महेश्वरी साड़ी। पश्चिम बंगाल से आए हमारे अगले विजेता हैं श्री अभिनवा बसक। फॉर 500 काउंट मसलिन खादी जामदानी साड़ी।
1: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के सभागार के सांस्कृतिक केंद्र में इस वक्त राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 का वितरण किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा।
2: Yes, you are absolutely right. And the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, has already conferred the Sant Kabir Handloom Award to two awardees, Shri Ram Meher from Odisha for weaving. And the handloom product was Bichitpar Khadi Sadi. And to Shri Shah Mohammad Ansari of Uttar Pradesh on the category Languishing Weaves. And the product was Zarbaft Shwetambari Tissue Jamdani Sadi. The Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 was conferred upon Srimati Runima Chetia Choudhury of Assam for the category Weaving, and her product was Natural Dyed Muga Silk Sadi. The National Handloom Awards 2025 are being conferred upon 12 awardees, Shri Annamalai Marimuthu of Tamil Nadu for weaving the Kanchipuram Korvai silk sari, and this award jointly was also conferred upon Shri Kumaran Balaraman. Shri Ganji Venkatesh of Telangana got the National Handloom Award for Ikat Sari. Shri Murukala Nataraju of Andhra Pradesh for his product Cotton Tasar Half and Half Jamdani Sari. Shri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sari. Shri Manzoor Ahmed Hajam and Shri Fayyaz Ahmed Wani of Jammu and Kashmir for the Chand Dar Kani Shawl. And Shri Kamal Gaud of Madhya Pradesh for the Maheshwari Sadi. Shri Abhinav Boshak of West Bengal for the Khadi Muslin Jamdani Sadi. Shri Prafullo Kumar Sahu of Odisha for the Jagat Singhpur Sadi. Shri Bariga Ram of Rajasthan, a young weaver, for the Pattu Sadi. And Shri Vankar Keshabhai from Uttar Pradesh for the Tangalia Dupatta. And the Honorable President is conferring the various awards to the awardees on the National Handloom Day 2025. And she is conferring the National Handloom Awards 2025.
0: Marketing training se hi agle vijeta hain Tamil Nadu se Messrs. 31 Kovilwadi Hatkarga Bunkar Sahkari Samiti. और आज का आखिरी पुरस्कार असम से स्टार्टअप उद्यम यानी निर्माता कंपनी के लिए मेसर्स मार्वेला एसोसिएट्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट कंक्लूड्स आवर अवार्ड्स प्रेजेंटेशन। विद दैट वी कंक्लूड द अवार्ड्स लिस्ट। आपके उत्कृष्ट कार्य संपूर्ण हथकरघा समुदाय और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सभी पुरस्कार विजेताओं को हमारी हार्दिक बधाई। आज हम मध्य भारत के आले से रंगे हथकरघा वस्त्र नामक एक विशेष कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी यहां पर होने जा रहा है। इसका शीर्षक है धरती यानी अर्थ, जड़ यानी रूट्स और धागा यानी थ्रेड। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस कॉफी टेबल बुक का अनावरण करें।

0: धन्यवाद। ये प्रकाशन हमारे हथकरघा कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और दृढ़ता के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करेगा। और अब हम हथकरघा पर आधारित चार स्मारक डाक टिकटों के विमोचन की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री जितेंद्र गुप्ता, महानिदेशक डाक सेवाएं। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और माननीय राष्ट्रपति जी को हथकरघा पर जारी स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम विमोचन हेतु भेंट करें।
1: And the Honorable President of India is being presented with this special commemorative postage stamps, and the Honorable President is releasing these commemorative postal stamps, which have been unveiled by the Department of Posts, Government of India. These are all rupees 5 postal stamps, which depict the rich heritage of India.

0: is a proud moment for all our citizens who are involved with the handloom sector. And the Honorable President has also released two publications. The first one, Earth, Root, Thread, Al-Dyed Handloom Textiles of Central India, and another coffee table book, the Handloom Awards Book 2025. And as we mentioned today, that the Honorable President of India presented Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees from Odisha and Uttar Pradesh, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to Srimati Runima Chetia Choudhury.
1: All right, Assam. Time to get one NRI task done.
0: Weaving.
1: And you thought I'm going out?
0: There were 12 awardees for the National Handloom Award 2025 from Tamil Nadu, which went jointly to Sri Annamalai Marimuthu and Sri Kumaran Balaraman for their Kanchipuram Kurvai silk sari. Sri Ganji Venkatesh of Telangana bagged the National Handloom Award 2025 for the Ikat Sadi. Sri Murakala Nataraju of Andhra Pradesh got the Katan Tushar half and half Janadani Sadi. Sri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sadi.
2: And
0: we have the Union Minister of State for Textiles, Sri Pavitra Margarita.
2: पद तक आपकी प्रेरणादायी यात्रा आपकी सादगी संवेदनशीलता और जनसभा के प्रति समर्पण 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। As we gather here today, we remember 7th of August 1905 when the Swadeshi movement became a symbol of India's resolve for self-reliance. More than a century later, under the visionary leadership of Paramadriniya Pradhan Mantri Sri Narendra Modi ji, that spirit continues through the vision of Atmanirbhar Bharat, vocal for local and local for global, creating new opportunities for our weavers and artisans. Maniya Rashtrapati ji, pichle vars Rashtriya Hast Shilp Puraskar Samaroh ke apne sambodhan mein aapne GI Tech ke mahatva par bhi vishesh bal diya tha aur adhik se adhik paramparik utpadon ko GI pehchan dilane ka ahvan kiya tha. Isi disha mein aage badhte hue do din pehle hi GI and Beyond 2.0 summit ka safal ayojan kiya gaya jisne GI ecosystem ko aur majbut banane ke bhi disha mein mahatvapurna kadam badhaya hai. साथ ही ये बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2014 के बाद हथकरघा एवं हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई पंजीकरणों में तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई है। The true credit for the enduring legacy and growing global recognition of India's handloom and handicraft traditions belong first to our generations of weavers and artisans who have preserved this priceless heritage for thousands of years. Under the constant guidance of Honorable Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh Ji, and through the dedicated efforts of the Secretary Textile, DC Handlooms, and the entire Ministry of Textile team, this legacy continues to reach the new heights. As I conclude, I would like to extend my heartfelt congratulations to all the recipients of Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards. For your craftsmanship, innovation and dedication, you continue to preserve our weaving traditions while inspiring future generations. Antata, aiye hum sab milkar ye sankalp le ki hamare bunkaron ko samman, pehchan aur naye avsar nirantar milte rahe tatha हमारे बुनकरों द्वारा बुना गए प्रत्येक धागा विकसित भारत के सपने को और अधिक सशक्त करे। धन्यवाद। जय हिंद।
3: धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी भाषण के लिए आपका धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं श्री गिरिराज सिंह जी को। माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार, आपसे अनुरोध है कि भारत के हथकरघा क्षेत्र के भविष्य के लिए अपना संबोधन और दृष्टिकोण साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
4: भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज 12वें हस्तकरघा दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति, हम लोगों के आन बान शान, भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक और हमारे हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज हम पूरे देश और दुनिया में आपका नाम लेता हूं, आपका मैं स्वागत भी करता हूं। मैं जब मंच पर बैठे हमारे सहयोगी राज्य मंत्री मानवर मार्गरेटा जी पवित्रा, हमारी सचिव नीलम शम्मी राव जी, हमारी डीसी हैंडलूम श्रीमती एम बीना जी और सभी यहाँ आए हुए हमारे विजेता बुनकर भाइयों, अधिकारी, प्रेस मीडिया, सभी का मैं सम्मान करता हूं। जब मैं 12वें हस्तकरघा दिवस की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को खो दिया, क्योंकि धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, जिन्होंने 14वें प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मन में लगा जो हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारे सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति है, उसको शायद नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज इस क्यों किया गया मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब हमारे सहयोगी

0: विकास को विरासत के साथ जोड़ के देखते हैं। यह हमारी ऐसी विरासत जिसे हम याद करते हैं कि भारत की विरासत में खादी और हैंडलूम एक अंगूठी से बंगाल का मुस्लिम मसलिन पूरे पास हो जाता था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने इस पे प्रहार किया हमारी टेक्नोलॉजी को। तो हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन, हमारे पूर्वजों ने मैनचेस्टर के कपड़े को बहिष्कार करके और इन्हीं बुनकर भाइयों के कृति पर हम पूरे देश को एक जन आंदोलन में बदलने का काम किया।
1: And we are bringing you the National Handloom Awards from the Rashtrapati Bhavan Cultural Center. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, conferred the National Handloom Awards 2025 to the awardees. And now the Minister for Textiles, Sri Giriraj Singh.
0: Jab 10 saal baad aata to 43 lakh. और जब उसके बाद 10 लाख आता तो 35 लाख। आखिर क्यों? आज मैं कुछ नौजवान भाइयों को देखा, मेरे अंदर वो प्रसन्नता जो मैं कह नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य है कि भारत के बुनकर भाइयों के लड़के और लड़की इस पेशा में कैसे आए, ये मेरी चिंता है। और मेरी चिंता है ये तब होगा जब मैं इनके संतति को, इनको अच्छी रकम मिले। ये तो संत कबीर हैं, ये हैंडलूम अवार्ड है। अवार्डी के कपड़े को तो मैडम मैं बीड भी कर रहा हूं, जिससे बुनकर भाइयों से पूछता हूं, संत कबीर इस साड़ी का कीमत कितना लेंगे? तो 1,90,000। और कॉटेज में लोग लेकर के जाते लेकिन आम बुनकरों की पीड़ा, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, जिस देश का ले, वो आज उनकी पीड़ा को कहना उचित नहीं लगता। लेकिन जो संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में लिया है, क्योंकि जब हम सूती कपड़े को देखते हैं तो बाजार में जाता है तो लोग उसे पावर लूम से कंपेयर करते, फिर उसकी कीमत देखते। हमने तय किया है आने वाले दिन में हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे और जीआई जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे। केवल निश प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, हमने गुवाहाटी में हम लोगों ने विभाग ने हमने मॉडल को स्थापित करने का काम किया है। हमारे देश में 29 बीवर सर्विस सेंटर है, 3 एक्सटेंशन है, 11 राज्य और केंद्र मिला के IISTE है और 20 निफ्ट का कैंपस है। मैं सबों को लेकर के, लेकिन फर्स्ट फेज में मैं सर्विस सेंटर को, IISTE को, एक्सटेंशन को, कि किसी भी बुनकर भाइयों की आमदनी मिनिमम 50,000 रुपया मासिक से कम नहीं हो। ये मोदी जी की पीड़ा है, ये गरीबों का, और ये होगा। ये करना शुरू कर दिया हूं गुवाहाटी से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा आपसे निवेदन करता हूं, इसमें हम अपस्किलिंग करते हैं। अपस्किलिंग करने के बाद अगर लूम नहीं है तो लूम हम देते हैं, लूम अगर है उनको सूता देंगे, उनको डिजाइन देंगे,

0: मार्केटिंग जो नहीं कर पाएंगे उनकी मार्केटिंग भी करेंगे। अगर ये हमारे बुनकर भाइयों को ठीक लगता है तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से सर विभाग को एक दें। और ये शुरू कर दिया है, अभी 25 से 30 हजार रुपये गुवाहाटी विभिन्न सर्विस सेंटर क्या दे रहे हैं, 6 राज्यों में इसको फर्स्ट फेज में, और लक्ष्य है 2030-31 तक कोई ना बचे। दूसरा तय किया, आज तक इनकी पहचान कार्ड नहीं था, मुख्य कानून छो था, जो कह दिया सर्वे में वही हम लिख लेते थे। लेकिन अब हम लोगों ने 2025 के जनवरी से हमने इनका पहचान कार्ड बनवाया, 35 लाख आए। लेकिन जो नई गतिविधि हुआ है, हम उस पहचान को ऑनलाइन छोड़ा है, और केवल ऑनलाइन नहीं छोड़ा है बल्कि हर दिन वो, और मुझे खुशी है अब 65 लाख से हम 35 लाख पहुंच गए, अब 35 से हम 65 रिवर्स में जाएंगे, लगभग 1 लाख नए विभर हमारे साथ जुट चुके हैं। ये हमारा संकल्प है। हमारा दूसरा संकल्प है कि विभर भाई अपने बच्चों को IIST में दें, पढ़ाएं, फिर निफ्ट में उसको हम प्रमोट करेंगे, और ये 2 लाख रुपया इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार टेक्सटाइल डिपार्टमेंट देने का काम करे। इसलिए ये पीड़ा है, आज कई युवक जब IIST से पढ़ करके निफ्ट जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो 150 लोगों को रखते हैं। मेरा उद्देश्य है मास्टर बीभर यानी बिचौलिया, मास्टर बीभर से बीभर का मुक्ति दिलाना। उसके लिए ई कॉमर्स रखा है, उसके लिए विदेशों में EPCH से के साथ जोड़ करके अभी शुरुआत की है, 50 हैंडलूम 50 हैंडीक्राफ्ट। क्योंकि इस बार जो योजना हम बना रहे हैं वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों को मिला करके, हैंडलूम की साड़ी बन गई, अगर उस पर पैच वर्क हुआ तो वो हैंडीक्राफ्ट हो जाता। तो हमने तय किया है दोनों को मिला करके एक नए तरह से हम विभर भाइयों के जिंदगी में परिवर्तन करेंगे। अभी राष्ट्रपति महोदया अभी IIT दिल्ली से MOU किए हैं, केवल MOU नहीं किया है, अभी 100 विभर से जस्ट शुरू किया है एक एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू, उसमें हम कार्बन फुटप्रिंट कितना कैप्चर कर रहे हैं वो उनको दिखाई देगा, विभर को दिखाई देगा कि उनकी एफिशिएंसी कितना आज के काम का है, उनको दिखाई देगा, AI टूल्स भी लगा रहेगा, उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगा तो AI टूल उसको रोकेगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा हम इनके जो लूम है लूम को परिवर्तित करेंगे। आसाम का एक शिवसागर जो जिला है वहां एक रिटायर्ड इंजीनियर ने लूम बनाया, अभी वो 70 से 80 PPM पर जा रहा है। उसने मुझे कहा है कि हम 180 PPM पर जाएंगे, पर मिनट 180 पिक जाएगा। लोगों ने कहा ये तो पावर लूम की तरह होगा, हम कहा टेक्नोलॉजी तो इसी को कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी होगा तभी हम ये करेंगे, हम मैकेनिकल चेंजेज लाएंगे। मैं इतना ही आपको वादा करता हूं कि
1: आपको बता दें 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर

0: राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति ने हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। और आपको बता दें, ये कई अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
1: और जो मेरा लक्ष्य है, पच लखिया भाई और बहन बनाना, दस लखिया बनाना, इस संकल्प को पूरा करेंगे आपके नेतृत्व में, मैं यही कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आपके उत्साहवर्धक संबोधन और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने में आपके सटीक नेतृत्व के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं माननीय राष्ट्रपति जी को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सभा को अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
3: बैठे बैठे, मैं कुछ कहने से पहले मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अच्छे लोगों को दिया है, अच्छे एक मंत्री को दिया गया। मुझे लगता है टाइम का पाबंदी है, टेक्सटाइल ऊपर में बातें करने के लिए उनको एक दिन दिया जाए तो शायद कम होगा। इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिजाराज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स श्री पवित्र मार्गरेटा जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स श्रीमती नीलम स्वामी राव जी, डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर एम बीना जी, गणमान्य अतिथियों, सभी अवार्डीज और सभी बुणाकार, डिजाइनर, देवियों और सज्जन, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत आनंदित महसूस हो रही है। मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे इधर आ रहे थे, एग्जीबिशन हम देखे, इतने सारे वैरायटीज देख के मुझे लगता है, मुझे कोई ने बोले मैडम आपका महिलाएं थोड़ा कम है, केवल 5 लोगों को दिया जाता है। मैंने बोली नहीं नहीं, हम लोग 100 लोगों को दिए नहीं, केवल 24 लोगों को दिए, हम सबको दिले 50 तो जरूर महिलाओं को मिलता है। इसने हमारे क्षेत्रीय विशेषताओं के संरक्षित भी किया है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीणों और जनजातीय समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोय है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। प्रकृति के अनुरूप जीने की पद्धति की उपयोगिता आज समूची विश्व में स्वीकृति जा रही है। देवियों और सज्जनों, हथकरघा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 35 से 25 महिलाएं हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। देश इंडिपेंडेंट होने के कुछ साल बाद में धरती पे आई, स्कूल गई, जो असहयोग आंदोलन के टाइम महात्मा गांधी ने जिस बात गांव-गांव घूम के बोले थे, हम जो स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम घूमते थे, प्रभात फेरी करते थे, वही गाना हम गाते थे। हम तो ओडिया में पढ़ाई की है, तो मैं थोड़ा ओडिया के दो पंक्ति बोलना चाहती हूँ। आज ही आसीओ छी नुआ जुगांतर गांधी कही छंती बोली बराबर, खाओ भात मुठे घर ढेंकी कुटा, पिंधो लुगा खंडे हाते काटी सुता। इट मीन्स आज नया युग आ गया है, इसीलिए जितने जमीन है, जमीन में खेती करो, अनाज उगाओ और अपना खाओ, अपना करो अपना खाओ। और कर्पास इतने उत्पादन होता है, इसीलिए वहां से थ्रेड निकालो और बुनाई करो और खुद का पहनो। आज भी मैं जो 7 क्लास तो पढ़ती थी, पर कितने साल हो गया है, लेकिन वो दो पंक्ति मेरे दिल में है, अभी भी मुझे याद है। इसीलिए आज जो देखती हूँ, केवल वो वाला मोटे वाला सूत नहीं, आज इतने फाइन फाइन कपड़ा बनाते हैं, कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख तो थे, तो यहीं पे तो शॉप है, हम विदेशों में नजर क्यों डाले। देवियों और स्वजनों, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से आज सम्मानित हुए वरिष्ठ बुनाकार विशेष बधाई के पात्र हैं। इन सभी ने ही आपने दशकों के कामकाजी जीवन में केवल अपने कौशल को ही नहीं संवारा, बल्कि उन्होंने सैकड़ों बुनाकारों को प्रशिक्षित और प्रेरित भी किया है। बुनाकारों की नई पीढ़ी तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार पाने वाले सभी प्रतिभाशाली और कर्मठ बुनाकारों को भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक देश के अनेक राज्यों की हथकरघा शैलियों के बेजोड़ उदाहरण का सर्जन उन कर्मठ बुनाकारों को किया है। इनके उत्साह और कौशल की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। हथकरघा का हमारी स्वतंत्रता संग्राम के गहरा जुड़ाव है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से देश।
0: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के जो सांस्कृतिक सभागार है, इसमें माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार वितरण के बाद संबोधित कर रही हैं।
3: मनाने जा रहे आ रही है। अब ये एक औपचारिक वार्षिक आयोजन भरी नहीं रहा, ये उत्सव है, हमारे देश की सांस्कृतिक एकता की इंद्रधनुष विविधता है। ये अवसर है सरकार और बुनकर समाज के उन साझे प्रयासों का याद करने हैं, जो भारत के हथकरघा सेक्टर को प्रीमियम क्वालिटी की छवि दे रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हथकरघा क्षेत्र में के बहुआयामी विकास के लिए सरकार ने विभिन्न हितधारकों के सक्रिय योगदान से अनेक योजनाओं और अभियान पिछले एक दशक से चली आ रही है। इसके सुपरिचालन आप सामने आने लगा है। मुझे ये भी बताया गया है कि हाल ही में भारत

0: हथकरघा उत्पादों के एक विशिष्ट कलेक्शन को विश्व सूत्र वेबर्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड के रूप में वैश्विक ऑडियंस के सामने एक नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इससे भारतीय हैंडलूम को डिजाइन की एक नई विधा मिली है। देवी और स्वजनों, हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलबती हुई है। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनाकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं, जो माननीय मंत्री में ने हम लोगों के सामने उल्लेख किया। भारतीय हथकरघा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय छवि निखर रही है, उसे और तेजी देते हुए इसे वेरीफाइड कल्चरल इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार प्रयास लगातार बढ़ा रहे हैं। गृहसज्जा और होम टेक्सटाइल क्षेत्रों में हैंडलूम को विशेष आर्थिक बढ़त मिलने की संभावनाएं बन रही है। वोकल फॉर लोकल अभियान के द्वारा भी भारतीय हथकरघा को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच पर, जैसे कि ग्लोबलाइज करने के लिए सोचा जा रहा है। इससे हमारे बुनाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक समृद्धि के नए अवसर भी मिल रही है और विश्व के समक्ष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कौशल की प्रतिष्ठा भी बढ़ रहे हैं। टेक्निक और नवाचारी डिजाइन के साथ अनेक प्रतिभाशाली युवा उद्यमी इस क्षेत्र में आने लगे हैं। सद्भाव और कौशल से इस सेक्टर की बहुआयामी सफलता की लंबे उम्र सुनिश्चित हो सके। युवाओं, एंटरप्रेनर्स, डिजाइनर्स और स्टार्टअप्स पारंपरिक शिल्पों को नए ट्रेंड्स, ब्रांड्स और ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़कर इस क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान और वेवर सर्विस सेंटर्स के अंतर्गत कार्यरत डिजाइन रिसर्च सेंटर्स युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि युवाओं को आधुनिक टेक्निकों के प्रशिक्षण करने के साथ साथ उनके नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई टेक्नोलॉजीज का उचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल सॉल्यूशंस के माध्यम से बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक और अधिक सशक्त बनाया जा सकती है। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र देश के समावेशी विकास एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार बनेगा। मैं हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी पुरस्कार विजेताओं को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, was speaking at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center on the occasion of the 12th National Handloom Day. The Honorable President also conferred the National Handloom Awards 2025 to the winners under the category of Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Awards 2025 to one awardee and the National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees and the National Handloom Awards for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for 2025 to two awardees and the National Handloom Award for Startup Producer Company for the year 2025 to one awardee. And she also released

0: commemorative postage stamps, and the Honorable President of India also released two publications, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India and the Handloom Awards Book 2025.
1: आज का ये समारोह केवल पुरस्कार वितरण नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है जिसने सदियों से अपनी परंपराओं को जीवित रखा है। जब हम हाथ से बुना हुआ भारतीय वस्त्र धारण करते हैं तब हम केवल एक परिधान नहीं पहनते बल्कि एक बुनकर की मेहनत, उसके परिवार की आशा और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हैं। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के इस विशेष समारोह से आप सजीव विवरण सुन रहे थे। मैं शोएसियार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे 12वें हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के सांस्कृतिक केंद्र में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गर्मियोमयी उपस्थिति में कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। श्रोताओं, इस समय दिन के 12:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।

0: जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार जे ओम प्रकाश को, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि, उनकी याद का दिन। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशिक हूं बहारों का, इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर हैं, आनंद बख्शी की रचना, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम
3: चलते रे, इश्क भी बढ़ जाते
2: पूरे दबंग अंदाज में, और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
4: ओ केटिको बर्फ बदन है।
2: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
5: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
2: जी,
5: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
2: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
6: निकला गड्डी लेके
2: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर शोक अदाओं के।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और
2: आ गया। कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी अन्य

0: आ रहे हैं महबूबा विविध भारती पर। सुंदरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: ब्रेक से पहले आपने सुना था आसपास फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल थे। अब आपको सुनवाते हैं अर्पण फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, आनंद बख्शी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप गीत सुन रहे थे अर्पण फिल्म से। इसी गीत के साथ कार्यक्रम यादों की महफिल आज यहीं संपन्न होता है। आज हमने आपको सुनवाए फिल्मकार जे ओम प्रकाश की फिल्मों के गीत, क्योंकि आज था उनकी याद का दिन। अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। देश आज 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पारंपरिक बुनकरों के कौशल और देश की समृद्ध हथकरघा विरासत का सम्मान किया जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इसमें बाड़मेर जिले के सेड़वा के बुनकर बरीगा राम भी शामिल हैं। इधर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में बुनकर सेवा केंद्र की ओर से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ इसमें शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने बुनकरों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हाथ से बुने हुए वस्त्रों की मांग का दौर वापस आने वाला है। इस उद्योग से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने युवाओं को भी इस परंपरागत उद्योग से जुड़ने का आह्वान किया। जयपुर में आज ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आयोजित होगी। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक सहयोग, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और एमएसएमई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल तथा ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक से पहले ब्रिक्स प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर के सिटी पैलेस और हवा महल का सांस्कृतिक भ्रमण किया। पर्यटन विभाग ने पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में उनका स्वागत किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 6 वर्षों में राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। श्री शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और लक्षित प्रचार प्रसार के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार भी स्वदेश दर्शन, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता तथा तीर्थ यात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन जैसी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में पर्यटन विकास को सहयोग दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे मुख्य अतिथि के रूप में समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर 3000 से अधिक स्नातकों और 587 PhD शोधार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मेधावी विद्यार्थियों को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक, शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक और परफेक्ट 10 स्वर्ण पदक सहित संस्थान के प्रमुख सम्मान भी प्रदान करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित AI सक्षम उच्च क्षमता वाली सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि प्रदेश में वर्ष 2047 तक हर परिवार को बीमा सुरक्षा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। ये बात उन्होंने राज्य बीमा गवर्निंग काउंसिल की दूसरी बैठक में कल कही। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीमा एजेंसियों को कवरेज बढ़ाने और समयबद्ध कार्य योजना के साथ काम करना चाहिए। मुख्य सचिव ने अलवर जिले की देशूला ग्राम पंचायत के 100% बीमा मॉडल को अन्य ग्राम पंचायतों में भी लागू करने के निर्देश दिए। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मध्यम से भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर जिले के पहाड़ी में सबसे

0: से अधिक 16 सेंटीमीटर बरसात हुई। इसके अलावा जयपुर के शाहपुरा में 9, सीकर के नीम का थाना और भरतपुर के नगर में 8-8 सेंटीमीटर पानी बरसा। अलवर, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, दौसा और बारा सहित कई जिलों में भी अच्छी बरसात हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। अच्छी वर्षा का असर अब बांधों पर भी दिखाई देने लगा है। शिवालिक की पहाड़ियों में बारिश के कारण घग्गर नदी में पानी की आवक बढ़ी है। हनुमानगढ़ में गुल्ला चिक्का हेड पर आज करीब 21,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। इससे धान उत्पादक किसानों में सिंचाई को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: ऋतु नहीं हृदय की वह अवस्था है जहां हर बूंद किसी अनकहे नाम का उच्चारण करती है। झूलों की रुनझुन, भीगी रातों की नमी, दर्पण में उभरती छवि और आंखों में सजती ख्वाबों की महफिल, सब मिलकर उस प्रेम की कहानी कहते हैं जो पहले एहसास बनकर उतरता है, फिर विश्वास बनकर दिल में ठहर जाता है। यहां विरह भी मधुर है, प्रतीक्षा भी सुंदर, क्योंकि प्रेम का सबसे उजला रूप उसी धैर्य में जन्म लेता है जहां मिलन से पहले स्मृतियां साथ निभाती हैं। अंततः यह इबारत बताती है कि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, भीतर धीरे धीरे बरसते सावन से पहचाना जाता है। एक ऐसा सावन जो जीवन को भीगने के साथ साथ महकाता भी है, यानी कि महकना सिखा देता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो श्रोताओं, सबसे पहला गीत आ रहा है इस सफर का आपके लिए, जुर्माना फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा।
3: वो कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
3: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
3: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
3: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: गीत के साथ हमने आपको संदेश भी सुना दिए हैं। श्रोताओं, आज हमारी जो इबारत यानी टेक्स्ट जो था वो बड़ी ही सरलता के साथ आपके सामने आज हमने रख दिया था। इसमें गाने पहचानना शायद बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा होगा, है ना? सावन की झूले पड़े ये गीत अभी आपने सुना। सचमुच सावन का नाम आते ही मन जैसे अपने आप गुनगुनाने लगता है। झूलों की पिंगे हो, सखियों की हंसी ठिठोली हो या फिर अपने प्रिय के आने की मीठी सी प्रतीक्षा, सावन हर एक एहसास को और भी गहरा बना देता है। इसलिए इस मौसम में प्रेम का भी तो महत्व अधिक बढ़ जाता है ना। प्रेम का रूप इस मौसम में और भी हरा हो जाता है, यानी खिल जाता है, हरियाली छा जाती है। तो प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, मुस्कानों में, आंखों की चमक में और गीतों की मिठास में भी महसूस होने लगता है। सावन दिलों को एक दूसरे के और भी करीब ले आता है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि सावन के झूले और भीगी भीगी रातों की बातें आज के सुरीले सफर से भाव विभोर करने वाली है, लेकिन बादल हैं कि बरसना ही नहीं चाहते। सुना है पुराने समय से मेघ मल्हार गाते थे और बादल बरस जाते थे। उम्मीद है कि आज की गीतावली यानी सुरीला सफर की गीतावली से ही आज सावन की फुहार बरसेगी। क्यों ना उन्हीं फुहारों का मजा लिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ करना होगा। और हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि आज सुरीला का सफर झूले में बैठकर सुनने का दिल कर रहा है, लेकिन हमारे फ्लैट में झूला नहीं है और हमारे शहर जामनगर में बारिश भी नहीं हो रही। ओहो, तो रात भीगी भीगी कहां से नसीब होगी। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, लेकिन आज दोपहर में विविध भारती पर सुरीले और सदाबहार गीतों की बारिश होगी, तो तय है कि सुरीले सफर में भीगने का बेसब्री से

इंतजार है, क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। गीतों को सुनते हुए ही सावन का आनंद आप उठा रहे हैं, ऐसी ही हमारी अगली श्रोता कहती है कि सावन आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, फिर मन इस हरियाली से कैसे अछूता रह पाता। यह महीना ढेर सारी यादें लेकर आता है, झूले, चूड़ियां और मेहंदी के रंग में रंगा। यह मौसम तब और भी खिल उठता है जब प्रियतम आने को हो, गीतों की फुहार के साथ कुछ पिंगे झूले की उड़ा ले आती है। श्रोताओं, आप बताइए कि क्या आपके गांव, मोहल्ले या आंगन में भी कभी सावन के झूले पड़ते थे, या कि अब शहरों में भी आप ऐसा किया करते हैं? क्या आपको भी याद है कि वो दिन जब बारिश की पहली फुहार पड़ते ही मन यूं ही बाहर निकल जाने को मचल उठता था, या फिर कोई ऐसा गीत जिसे सुनते ही आपको अपना बचपन, अपनी सहेलियां, अपने अपने कोई लोग, कोई बहुत खास पल याद आ जाता हो? तो ये सब हमें आप संदेश के माध्यम से बताइए। तो आइए सावन के महीने में आज के कार्यक्रम में अपने मन को टटोलते हुए खोलिए उन यादों का पिटारा। बता दीजिए कि आज का कौन सा गीत आपकी प्यारी याद को ताजा करता है। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल हैं।

अब देखिए सावन की भीगी भीगी रातें प्रेम की दिल में दस्तक दे रही हैं। ये दस्तक सुनकर किसी का साथ याद आने लगता है तो कभी किसी से हुई प्यारी सी मुलाकात याद हो आती है। हमारे एक श्रोता कहते हैं, आज का सुरीला सफर ऐसे लग रहा है जैसे किसी खुली गाड़ी में हवाओं के साथ बातें करते हुए फर्राटा भरते हुए चले जा रहे हों। गानों के मुखड़ों को इबारत के रूप में हमारे सामने रख दिया गया है, इसमें दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है, गाने सबके सामने रखे हुए हैं, बस इन गानों के बजने का इंतजार था। जी बिल्कुल, ये गाने हमने आपको सुनाना शुरू कर दिया।

में हमारे सामने रख दिया गया है, इसमें दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है, गाने सबके सामने रखे हुए हैं, बस इन गानों के बजने का इंतजार था। जी बिल्कुल, ये गाने हमने आपको सुनाना शुरू कर दिया है। इतना जरूर है कि सभी गाने सभी के पसंद के होंगे, तो आज गाने सुनने का दिल, तन मन प्रफुल्लित हो उठता है, चारों ओर मानो धरती ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है ऐसा लगता है। और ऐसे में हम जैसे संगीत प्रेमियों के मन में सावन के कई गीत उमड़ने लगते हैं। तो इन्होंने एक गीत लिखा है, सावन का मेरा प्रिय गीत है, रिमझिम के गीत सावन गाए। क्या बात है, अभी तो ये गीत हमने आपको सुनवाया। एक श्रोता कहते हैं कि लगता है कि घटाओं से सजे मेघालय में रिमझिम फुहारों वाली गीतों की मालाओं से हो रही है आज हमारी मुलाकात। पिया मिलन की उत्कंठा और मनमीत की प्रतीक्षा करने वाले गीतों की चमकीली बूंदें इबारत में दिखाई दे रही हैं, और उन्होंने कुछ गीत भी हमें लिखे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि प्रेमिका कह रही है, सावन के झूले पड़े तुम चले आओ, लेकिन पिया अनजान है कि कभी जल सकता है जिया भीगी भीगी रातों में। ये तो पता तब पता चलेगा जब दो नयन ख्वाबों की महफिल सजाएंगे, तब वो भी गुनगुनाने लगेंगे, नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखूं तुझे जिसे सुबह शाम, ऐसे ही कुछ कहता है ये सावन। क्या कहता है? यही कि शाम सवेरे दिल में तू रहता है, फिर क्या बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, दोपहर 1 बजे सुरीला सफर में जुड़ जाने का समय होते ही पास आ गए हम। क्या बात है। एक और श्रोता है जिन्होंने हमारी ही इबारत को अपने अंदाज में लिख दिया है, और सावन में रिमझिम फुहारों की बूंद में जब पिया की याद आती है और हसीन ख्वाबों में डूब जाते हैं, मिलन की आस जाग उठती है कि तुम आ जाओ और फिर जुदा ना होंगे। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन के सुहावने मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच पिया मिलन की आस और उनसे जुदाई का एहसास दिल को बहुत तड़पाते हैं, और हर पल अपने पिया के पास होने की इच्छा और तीव्र हो जाती है, जिससे दो दिलों की दूरियां दिल में बेचैनी और तड़प को और बढ़ा देती है, जिससे बारिश की बूंदे मन में ठंडक की बजाय सुरीली उदासी से भर देती है। सावन के सुहावने मौसम में अपना पिया मिलन की पुरानी यादों को ये मौसम जगाता है, जिससे भीगी हुई धरती और उमड़ते घुमड़ते काले बादल मन को अत्यधिक भावुक बना देते हैं। बिल्कुल, ये मौसम है ही प्यार का। श्रोताओं, जो सवाल हमने आपसे पूछे थे उन्हें याद रखते हुए आप हमें संदेश भेजते रहिए, हमें आपके संदेशों का बेसब्री से रहता है इंतजार। आपकी ये अनमोल यादें हम तक उस वक्त की भीनी भीनी सौंधी सी खुशबू पहुंचा रही है, सावन की फुहारों के साथ।

और अब आ रहा है अगला गीत। स्वामी फिल्म से लता मंगेशकर का गाया, अमित खन्ना ने इस गीत को लिखा, राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया।

0: इसी गीत के साथ लेते हैं कुछ संदेश।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
3: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: हाय हाय।
0: श्रोताओं, प्रेम की कोमल अनुभूतियों को हम शब्दों में कह नहीं पाते, पर ये गीत सब कुछ कह जाते हैं। गीत कितना अच्छा माध्यम है ना प्रेम को व्यक्त करने का। अच्छा बताइए, अगर गीत ना होते तो कैसा होता जीवन, प्रेम का इजहार कैसे होता? और सावन के मौसम में गीत ही नहीं सुने सुनाए जाते तो कैसा होता सावन, ये बताते चलिए। फिलहाल हम लेते हैं हमारे श्रोताओं के संदेश। एक श्रोता कहते हैं कि आज अनूठे पद्यांश को पिया मिलन की आस के साथ पिरोया गया है। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जब पिया मिलन की आस जागती है तो मन का हर कोना पुलकित हो उठता है। प्रकृति जहां ठंडी बूंदों से भीग रही होती है, वहीं प्रेमी का मन मिलन की उत्कंठा में सुलग रहा होता है। बरसती बूंदों में छुपा है सदियों का इंतजार, बाहर सावन की फुहार है, भीतर विरह की आग। ये कजरारी रातें और ये रिमझिम सा सावन, सावन तो आ गया बस तुम रह गए हो जाने कहां, क्या बात है। ऐसे ही अगले श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत एक गजब इबारत है, कभी सावन से पिया अनजान है तो कभी भीगी रात तो कभी सूखी फुलवारी। इस तरह से उन्होंने हमारी ही इबारत को अपने शब्दों में पिरोया है। और हमारे और श्रोता जो कह रहे हैं कि दिलचस्प संदेशों से सजे विविध भारती के सबसे लोकप्रिय सुपरहिट सुरीला सफर कार्यक्रम ये चल रहा है। और एक श्रोता ने इतनी प्यारी बात कही है कि मेरी प्यारी प्यारी विविध भारती को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद दूर, यूं तो हमने लाख चैनल सुने हैं विविध भारती सा नहीं सुना। ये बारिश तो सिर्फ 4 महीने होगी, क्या बात है। बस सावन के गीत आपको विविध भारती पर सुनने को मिलते ही रहेंगे, है ना।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि सावन का मौसम बड़ा अनोखा होता है। बाहर पेड़ों पर झूले पड़ते हैं तो मन भी यादों और ख्वाबों के झूलों पर झूलने लगता है। कभी कोई अपना याद आता है, कभी दर्पण में कोई सपना मुस्कुरा देता है। दिल बार बार उसी का नाम लेता है जिससे शायद अभी तक कुछ कहा भी नहीं गया। यही तो पुराने फिल्मी गीतों की खूबसूरती है। वे हमारे मन की उन अनकही भावनाओं को भी सुर दे देते हैं जिन्हें हम अक्सर शब्दों में नहीं कह पाते। क्या बात है।

हमारे कुछ श्रोता ये भी कह रहे हैं कि रिमझिम की फुहार बरस रही है और रिमझिम के बीच में अपनी कविता आपसे साझा करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप कविता पढ़ेंगे। अच्छा, तो कविता तो बहुत बड़ी है, हम शायद इसे नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम इसे देख जरूर रहे हैं।

विविध भारती का सुरीला सफर है, कैसा सफर, हर कोई जाना है, हर कोई माना है, होती रहती है बातें, प्यार मोहब्बत भरी, मौसम पहाड़ों नदियों से भरी, बातें जब होती लगती हैं खूब सुंदर न्यारी, होती है बड़ी सुहानी सुरीली, सुनकर दिल को होती है तसल्ली, ये श्रोता कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि गांव हमारा बहुत सूखा पड़ा था, फिर कुछ ही दिनों में बरसात की फुहार आई और फिर जमकर बरसा सावन, फिर हम मन हमारा खुशी से झूम उठा और बोल पड़ा आया सावन झूम के, फिर सावन के झूले पड़े और झूले देखकर होंठ गुनगुनाने लगे कि सावन के झूलों ने मुझको पुकारा, मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। क्या बात। लेते हैं अब अगला गीत, भोला भाला इस फिल्म से लता मंगेशकर ने और किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है। आनंद बख्शी के बोल हैं, आजी बर्मन का संगीत, सुनिए ये गीत।

हमारी एक श्रोता कहती हैं कि मुझे लगता है कि आज की इबारत का मुख्य रंग सावन, प्यार, ख्वाब, दिल और मिलन है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और एक श्रोता कहते हैं कि इस वक्त हम बाबा अमरनाथ

कश्मीर के पवित्र स्थान के बेस कैंप में हैं। और ठीक है, आप ये हमें बता रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि बारिश में भीगना हमारे लिए कष्टकारी होता है, इसलिए हम तो वर्षा का आनंद घर के अंदर बैठकर ही लेते हैं, विशेषकर अपने टेरेस के झूले पर गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों के साथ। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि हमें तो कॉलेज का समय याद आता है, हम सब दोस्त कैंटीन में गरम गरम समोसे पैटीज खाया करते थे। ओह, एक और श्रोता कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो पापा यही सब सॉन्ग सुनते थे तो मुझे बहुत गुस्सा उठता था, लेकिन आज बड़ा होने के बाद यही सब सॉन्ग मुझे दिल को सुकून दे रहे हैं। क्या बात कही है आपने। पुराने गीत इतने सुकून भरे होते हैं, सुनना जरूर चाहिए आज की जनरेशन को भी। देखिए, हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि बचपन में हमारे गांव से थोड़ी दूर हरा भरा वन था और वहां शिवजी का मंदिर था, वहां सावन की अमावस को मेला लगता था, वहां वड़ का बहुत ही विशाल वृक्ष था, वड़ की लंबी डाली लटकी हुई रहती थी, उसी डाली को लटक कर हम झूला झूलते थे और बहुत ही आनंद आता था। बिल्कुल आता रहा होगा। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन की पहली बारिश में जवान होते थे तब भीगने का मजा और ही था, लेकिन अब इस उम्र में अंगूर खट्टे हैं, सिर्फ याद ही काफी है। हमारे एक श्रोता और कहते हैं कि सावन की फुहार और प्रेम का संबंध प्रकृति और मनुष्य के बीच का सबसे कोमल समझौता है। बारिश धरती को सींचती है और प्रेम दिल को, दोनों ही बिना मांगे आते हैं और जब चले जाते हैं तो कुछ गीला कुछ यादगार छोड़ जाते हैं। सावन अगर बारिश हो तो भीगने से मत डरना, और अगर कोई याद आए तो उसे भी भीगने देना है ना, लेकिन अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि अगर उम्र ज्यादा है तो और छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा हमें देखभाल करनी ही होती है, थोड़ा बच के ही भीगना होगा, है ना। श्रोता ने ये कहा था कि और अगर कोई याद आए तो उसे भी भीगने देना, क्योंकि सावन का असली जादू यही है कि वह सब कुछ गीला कर देता है और गीले दिल सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। एक और श्रोता कहती है कि धड़कनों में बस गया है सांवरा, रूह में तन्हाई की राहें सजाया है, हर लम्हा उसकी यादों का पहला, दिल ने ख्वाबों में उसे अपना बनाया है, अब तो शाम सवेरे बस एक ही दुआ, प्यार के सफर में भी वो ही मिले। एक और श्रोता कहते हैं कि बाहर चल रही सावन की बरसात, साथ में विविध भारती का संग, हाथ में गरम कॉफी का कप, सामने प्लेट में गर्मा गर्म पकौड़े, क्या बात है। आप तो असल मजा ले रहे हैं इन गीतों को सुनते हुए सुरीले सफर का, क्या बात है। एक और श्रोता कहती है कि हमें तो सावन इसलिए अच्छा लगता है, एक तो चारों तरफ हरियाली और फूल बहुत ही प्यारे खिल जाते हैं, छोटे छोटे सब रंग के फूल और पक्षी भी इतने खुश नजर आते हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन का पावन महीना, विविध भारती, मुंबई की मेरी दीवानगी और आज सुरीला सफर प्रोग्राम, और मैं हूँ कश्मीर में, क्या बात है। वहीं से आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए बिल्कुल, और वहां पर है सुहाना मौसम, ऐसा भी वो बता रहे हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूं, मैं वो गुजरे जमाने की एक राह हूं, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूं। फिलहाल आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत, चश्मे बद्दूर फिल्म से येसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज में, इंदु जैन का लिखा गीत, राजकमल का संगीत।

हमारे एक श्रोता ने कहा कि बहुत सालों बाद भोला भाला फिल्म का गाना सुना, क्या बात है, यह VBS पर ही संभव है। शुक्रिया। अब सुनिए।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि पूजा जी, हमारे भोपाल में तो केवल बादल छाए हुए हैं, पानी तो सावन के महीने में भी तरसा रहा है, अब तो केवल विविध भारती का ही सहारा है। एक श्रोता कहते हैं कि वह क्या बात है, लता दीदी की सुरीली आवाज में मेरी पसंद का एक सदाबहार बेमिसाल गीत यहाँ बज गया है। उस समय हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब कार्यक्रम में अधिकतर गीत हमारी पसंद के आ जाते हैं। जी धन्यवाद। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन आते ही मन मयूर नाचने लगता है, फूलों पर पानी की बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे शबनम की बूंदें गिर रही हैं। ऐसे माहौल में काम करने में भी दिल नहीं लगता, दिल करता है बस ऐसे मौसम को देखते ही रहें। एक और श्रोता कहती हैं कि मौसम की पहली बारिश अपने साथ पुरानी स्मृतियों की एक पूरी किताब खोल देती है। वह चेहरा, वह बातें और उनके साथ बिताए हुए पल जो वक्त की धूल के नीचे छिप गए थे, अचानक धुले धुले से साफ नजर आने लगते हैं। बूंदों की छुअन उस स्पर्श की याद दिलाती है जो कभी रूह को छू गया था। यह याद कितनी गहरी होती है कि इंसान चाहकर भी इससे मुंह नहीं मोड़ पाता। यह महज एक इत्तेफाक नहीं है, सदियों से सावन को प्रेम, विरह और मिलन का महीना माना गया है। हम चाहे अपनी मसरूफियतों में कितने भी आगे निकल चुके हों, दिल के किसी कोने में आज भी वह मोहब्बत और उसकी कसक उतनी ही महफूज है। श्रोता कहती हैं कि सावन की ठंडी बौछारें जब जिस्म को छूती है तो रूह में सुलगती हुई किसी की यादें ताजा हो जाती हैं। बरसात का यह हसीन मौसम जहां एक तरफ प्यार की बेताबी बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ महबूब की दूरी सीने में एक मीठा मगर गहरा दर्द जगा देती है। एक और श्रोता कहते हैं कि बहुत सुंदर गीत स्वामी फिल्म से, क्या बात है, आपको अच्छा लगा, ये बहुत ही बढ़िया है। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन के महीने में ऐसा लगता है जैसे कहीं मोर नाच रहे हो, पंछी चहचहा रहे हो। ऐसे मौसम में दिल करता है कि कागज और कलम उठाएं और कोई कविता लिखें। ठंडी ठंडी हवाओं में कलम रुकती ही नहीं है, क्या बात। एक और श्रोता कहते हैं कि 50 बरस पहले की बात होगी, गांव में झूले पर झूलते सब मस्ती में कजरी गा रहे थे कि झूला टूटा और दूसरी ओर बैठे दो लोग कीचड़ में गिरे जो पहचान भी नहीं आ रहे थे, और इस ओर के 3 लोग नीचे इधर गिरे और चोटिल हो गए। सावन का मजा किरकिरा हो गया। लीजिए अब आपको सुनवा देते हैं अगला गीत, समाधि फिल्म से आशा भोसले की आवाज में, मजदूर सुल्तानपुरी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म अनजाना का यह रिमझिम के गीत सावन गीत में सावन की रिमझिम और दिल की तड़प एक साथ बोलती है। राजेंद्र कुमार की सादगी और बबीता की मासूम अदा इसे और भी खूबसूरत बना देती है। जी हाँ, प्यार जब बरसात में भीगता है तो हर बूंद एक गीत बनकर बन जाती है। वही बूंद रिमझिम के गीत सावन गायिका जादू बिखेर देती है। बिल्कुल सही। एक और श्रोता कहते हैं कि इस बरसात के मौसम में तो चाय और पकोड़े का स्वाद बढ़ जाता है और आपके प्रोग्राम सुरीला सफर का स्वाद भी और बढ़ जाता है। दिल करता है कि गीत आते ही रहें और सावन की झड़ी लगी हुई रहे। एक और श्रोता कहते हैं कि पुरानी फिल्मों में सावन पर बने गाने बहुत ही सुमधुर होते थे। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। सावन के गीतों में सबसे पसंदीदा गाना उनका आया आया सावन झूम के। एक श्रोता कहती हैं कि मुझे आज भी याद है कि मैं और मेरा भाई स्कूल से लौट रहे थे और बहुत जोर की बरसात आ गई। वह पूरी सड़कों पे पानी पानी भर गया और हमें घर आने में बड़ी दिक्कत हुई। हाँ, बरसात के मौसम में ये दिक्कतें तो हमें देखना ही होती। एक श्रोता कहते हैं कि हमारे नागपुर में पिछले हफ्ते बहुत बारिश हुई लेकिन अब रुक गई है तो फिर से गर्मी बढ़ गई है। एक श्रोता कहते हैं कभी कभी मैं सोचता हूं अगर मैं कोमा में चला जाऊं और कुछ भी सुनाई ना पड़े तो मुझे लगता है यही वो गाना है माँ सरस्वती का होगा जो मुझे होश मिला सकता है। अरे अरे, ऐसे तो नहीं कहिए। एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म जुर्माना का यह गीत सावन के झूले पड़े तुम चले आओ आनंद बख्शी द्वारा रचित, और जी हाँ, ये तो हमने आपको बता दिया है, एक अमर गीत है जो राग पहाड़ी पर आधारित है। और यह गीत सावन के मौसम में प्रेयसी के अकेलेपन और अपने प्रेमी के प्रति अघात प्रेम व पुकार को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। क्या बात है, वाह क्या बात है। लता दीदी की सुरीली आवाज में मेरी पसंद का सदाबहार बेहतरीन गीत शानदार है। बहुत धन्यवाद इस गीत को सुनवाने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद संदेश के लिए। तुम चले आओ, तुम जो चले गए हो तो होगी बड़ी खराबी। यादों की महफिल कार्यक्रम में इस मजेदार गीत के लिए आप सभी का धन्यवाद। विविध भारती को ये धन्यवाद दे रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं ये मौसम आया है इतने सालों में, आजा के खो जाएं ख्वाबों ख्यालों में। फिल्म का जय ओम प्रकाश जी के सुपरहिट गाने आज उन्होंने सुने यादों की महफिल में और उन्हें बड़ा आनंद आया। एक और श्रोता कहते हैं कि पिया का नाम आते ही सांसों में एक सरगम सी बजने लगती है। बेचैनी और सुकून का मिला जुला रूप इस पल को जादुई बनाता है। पल के बिछाए रास्ते को देखना और हर आहट पर यह सोचना कि प्रिय आ गया है इस रुत की सबसे हसीन सच्चाई है। जब सावन की यह रुत आती है तो प्रकृति भी श्रृंगार करती है। ठंडी हवाएं, खिले हुए फूल और फिजा का नशा प्रेमियों के दिल की धड़कन बढ़ा देता है। लंबे इंतजार के बाद प्रेमी से मिलने की घड़ी जब पास आती है तो मन का कोना कोना खुशी से झूम उठता है। क्या बात है, इसी बात पे आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत। आरोप फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में माया गोविंद का लिखा गीत है। भूपेन हजारिका का संगीत पर

हमारी श्रोता कह रही है कि आज की सुंदर सी इबारत, सावन की रूमानी फुहारों, झूलों की मस्ती, किसी अपने की याद, आंखों में बसे सपनों और प्रेम के अटूट विश्वास का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती हैं। इसमें प्रकृति और प्रेम का ऐसा संगम है जो हर दिल को भीगा भीगा सा एहसास देते हैं। और उन्होंने ये गीत लिखा है, अब आपको सुनवा देते हैं।

श्रोताओं, समय की कमी रहते हुए कार्यक्रम अब समाप्त होने की ओर है, तो ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन इन्हीं गीतों के साथ आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करने की दीजिए आज्ञा पूजा नारानिया को। लेती हूँ आपसे विदा। जी नमस्कार।

भारतीय राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 40वीं कड़ी।

0: बंगाल के विभाजन का विरोध करने हेतु पूरे देश में सभाएं होने लगी। इस आंदोलन की अधिकतर सभाओं का आरंभ या समापन वंदे मातरम से होने लगा। पढ़े लिखे लोग जब भी आपस में मिलते तो नमस्कार की जगह वंदे मातरम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते। वंदे मातरम इस गीत की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ उसका दुष्प्रचार भी हुआ। वंदे मातरम की तुलना अन्य भाषाओं की कविता से करके उसमें कमियां दिखाने के प्रयास तत्कालीन कुछ लेखकों और संपादकों ने किए।
1: ১৯০৭ में लंदन के टाइम्स समाचार पत्र में हैदराबाद के दक्खन पोस्ट के संपादक सिद्ध मोहन मित्र ने वंदे मातरम के बारे में ऐसा ही भ्रमित करने वाला लेख लिखा था। फ्रांस के राष्ट्रीय गीत ला मार्सलेज का वंदे मातरम बंगाली संस्करण है और इसमें कुछ उत्तेजक शब्द जोड़कर लोगों को प्रेरित करने का कवि का प्रयास है, ऐसा उस लेख में लिखा गया था। इस लेख का भारत में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य समीक्षकों ने भी खंडन किया। पायोनियर के अंक में लिखा था, कविता की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से वंदे मातरम गीत अधिक अच्छा है। ला मार्सलेज में कवि का हृदय दिखाई नहीं देता, परंतु वंदे मातरम में कवि ने अपनी आत्मा समर्पित की है। फ्रांस और हिंदुस्तान के इन राष्ट्रीय गीतों में बहुत बड़ा अंतर है। वंदे मातरम एक प्रार्थना है। इसमें स्वदेश के आधार पर आद्य शक्ति को मां कहकर संबोधित किया गया है। मातृभूमि को केवल मां कहकर कवि रुका नहीं है, बल्कि मां के समान ही प्रेम और श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाया है। जो गीत देशवासियों को अपनी जन्मभूमि से मां के समान प्रेम करना सिखाता है, उस गीत की तुलना ला मार्सलेज गीत से कैसे हो सकती है।
0: वंदे मातरम शब्द अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंच गए। वंदे मातरम शब्द का उच्चारण करते हुए फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बाद अनेक क्रांतिकारी वंदे मातरम कहते हुए शहादत स्वीकार करने लगे। लंदन में ही वीर सावरकर, सेनापति बापट, निरंजन पाल, मदनलाल ढींगरा जैसे युवा क्रांतिकारियों के गुरुतुल्य श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा और मादाम कामा के साथ थे। अंग्रेजों की राजधानी लंदन में कर्जन वाइली नामक अंग्रेज अधिकारी पर गोलियां चलाने वाले मदनलाल ढींगरा को फांसी की सजा सुनाई गई। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को पेंटनविले जेल में फांसी दी गई, पर उससे पहले उनका लिखा हुआ पत्र अंग्रेजों ने छुपा दिया था। सावरकर और ज्ञानचंद वर्मा ने भाग दौड़ करके फांसी से एक दिन पहले डेली न्यूज समाचार पत्र में मदनलाल ढींगरा का चैलेंज नामक पत्र छपवाया और लंदन में सामान्य जनता से लेकर पुलिस तक सभी को धक्का लगा। इस पत्र की भाषा अत्यंत ओजस्वी तो थी ही, पर इस पत्र का अंत वंदे मातरम शब्दों से किया गया था।

0: शब्दों के कारण केवल दो दिनों में इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक कई बड़े समाचार पत्रों ने इस पत्र को प्रसिद्धि दी, जिसके कारण भारतीय क्रांतिकारियों का आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों का दमन और वंदे मातरम शब्द दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए। मदनलाल ढींगरा लिखते हैं,
1: आत्म बलिदान कैसे करना चाहिए, यही एकमात्र शिक्षा इस समय हिंदुस्तान में देने योग्य है। यह शिक्षा देने का एक ही मार्ग है, स्वयं का बलिदान करना। इस भावना से प्रेरित होकर मैं प्राणार्पण कर रहा हूं और मुझे अपने बलिदान पर गर्व है। इस भारत माता की संतान के रूप में मेरा पुनर्जन्म हो और इसी पवित्र कार्य में मेरा शरीर, मेरा जीवन मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो जाए, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। भारतीय स्वाधीनता का पक्ष विजयी हो, मानव जाति के कल्याण और ईश्वर के वैभव का समर्थन करने वाला स्वतंत्र भारतवर्ष संसार में आत्म तेज से चमकने लगे, तब तक मेरे जन्म मृत्यु का चक्र ऐसे ही चलता रहे, ऐसी मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। वंदे मातरम।
0: १९१४ के आसपास प्रथम विश्व युद्ध की हवाएं चलने लगी। उन दिनों कोमागाता मारू जहाज का किस्सा विशेष रूप से चर्चित रहा। इस जहाज के ध्वज पर वंदे मातरम, सत श्री अकाल और अल्लाह अकबर शब्द अंकित थे। बाबा गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में 360 भारतीय यात्रियों को लेकर कोमागाता मारू नामक जापानी जहाज 4 अप्रैल 1914 को हांगकांग से रवाना हुआ। 23 मई को ये जहाज जापान होते हुए कनाडा पहुंचा। ब्रिटिश सरकार के इशारों पर नाचने वाली कनाडा सरकार ने इस जहाज को बंदरगाह पर लगाने की अनुमति नहीं दी। 15 दिनों तक समुद्र में खड़े इस जहाज पर अन्न जल समाप्त हो गया। युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, अंततः सरकार को झुकना पड़ा। आगे वहां से निकला जहाज 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा और वहां हुई मुठभेड़ में 18 यात्री शहीद हो गए। इस पूरे प्रकरण के मुख्य नेता बाबा गुरुदत्त सिंह को वंदे मातरम शब्द अत्यंत प्रिय थे, इसीलिए इस जहाज के ध्वज पर भी वंदे मातरम शब्द थे।
1: विदेशों में बसे भारतीयों में वंदे मातरम शब्द के प्रति अत्यंत आदर भाव उत्पन्न हो गया था। वंदे मातरम के प्रति उनका प्रेम कई प्रसंगों से व्यक्त होता था। इसी दौरान वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने आयरलैंड में वंदे मातरम मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी। अफ्रीका में 22 अक्टूबर 1912 को गोपाल कृष्ण गोखले केपटाउन और फिर जोहान्सबर्ग गए थे। हर जगह उनका वंदे मातरम के नारों से स्वागत हुआ।
0: १९१२ को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। उस समय इस षड्यंत्र के सूत्रधार लाला हरदयाल बरकले में थे। ये समाचार सुनने पर लाला हरदयाल सहित भारतीय छात्रों ने एक सभा की, जिसमें वंदे मातरम गीत गाया गया। एक साल बाद इस घटना की वर्षगांठ पर 23 दिसंबर 1913 को लाला हरदयाल ने भारतीयों के लिए एक पर्चा बांटा, जिसका नाम था शाबाश। इस पर्चे में लिखा था, गुलामों, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करोगे? हम कहते हैं बम की सहायता से। बम विद्रोह का संदेश वाहक है। शस्त्र की पूजा करो, शस्त्रों का अभिवादन करो। उस पर्चे के पहले भाग में बम बनाने की प्रक्रिया, दूसरे में उसकी उपयोगिता और तीसरे में बम की प्रार्थना दी गई थी। पत्र का अंत वंदे मातरम शब्दों से किया गया था।
1: केवल कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका में ही नहीं, बल्कि जहां भारतीय नागरिक मुस्लिम देशों में थे, वहां भी वंदे मातरम पहुंच गया। विश्व यात्री रामनाथ विश्वास ने उस समय घटी घटनाओं को लिखा।

है। तुर्कस्तान में अदम नामक स्थान की मस्जिद पर तुर्की भाषा में वंदे मातरम शब्द लिखे थे, साथ ही हिंदुस्तान का झंडा भी था। शुक्रवार को सफाई के बाद नमाज के समय वंदे मातरम का उच्चारण होता था। वियना में अमेरिकन एसोसिएशन में रामनाथ के भाषण के बाद हिंदी लोगों ने वंदे मातरम का जय जयकार किया। बगदाद, तेहरान, इराक में हिंदी लोगों का वंदे मातरम के प्रति प्रेम उन्होंने अनुभव किया। भारत के बाहर वंदे मातरम पहुंच तो गया ही था, परंतु भारत में बंगाल विभाजन को लेकर जनमानस में भड़की आग अभी भी जल ही रही थी। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 40वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बद्दू।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: 2:15 का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
3: वेलकम तो है ये के साथ जो जो है और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
4: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
4: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलबती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
1: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
4: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
1: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुँचे।
5: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूँ।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परम्परा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परम्पराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
6: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा

0: दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
2: इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर आया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा की आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
3: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आरजू फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है। इस गीत की रचना की है हसरत जयपुरी ने और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी अनगिनत

0: आ रही हैं विविध भारती पर। बारह अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम चलते रे पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
2: ओ केटिको बर्फ बदन है।
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
3: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
1: जी,
3: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
1: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
2: मैं निकला गड्डी लेके
1: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, भीगी रात फिल्म का गीत है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल है रोशन का संगीत।

0: आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वो कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत दो बदन फिल्म से, आशा भोसले की आवाज है, शकील बदायूनी की रचना, रवि का संगीत।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
3: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
3: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सावन की घटा फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में, SH बिहारी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
2: सदाबहार नगमे की ये आखिरी प्रस्तुति है। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है आया सावन झूम के। इस फिल्म से आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हेलो सहेली कार्यक्रम का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सभी सखियों को मंत्री वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सावन मनभावन मौसम जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन झूम के गाता इकलाता सबको अपने रंगों में रंग देता है, अपने साथ लाता है उमंग उत्साह से भरे पर्व तीज त्योहार। हरियाली तीज, कजरी तीज और प्रेम का बंधन रक्षाबंधन, जिसमें बसी होती है भाई बहन के प्यार की सुगंध। सावन में झूला झूलना, कजरी गीतों के मीठी तान। सावन में लगते हैं मेले जहां जाते नहीं हम अकेले। संग होती हैं सखियां सहेलियां, यादों वादों और मायके जाने का मौसम, जहां से जुड़ी बचपन की हर याद ताजा हो जाती है। बहनों के सजने सवरने श्रृंगार करने का मौसम। आप इस मौसम में क्या खास तैयारी करती हैं और क्या करती हैं मेलों से खरीदारी? हेलो सहेली में अपनी यादों को साझा कीजिए हमारे साथ। फोन की घंटी बज उठी और देखते हैं कौन सी सखी होंगी जो करेंगी हमसे आज अपने मन की बात। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं बिया माँ मुल्ला बात कर रही हूँ मैडम।
0: जी,
1: पहलगाम जिला गोकाक तालुक
0: जी
1: गांव कुंदरगी से।
0: जी,
1: और मैं कर्नाटका से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अरे वाह, आप कर्नाटका से बात कर रही हैं। वहाँ की तो बहुत खास बात है, वहाँ पर बहुत घूमने वाली जगह है, बहुत अच्छी सी जगह है ना वहाँ पर?
1: बहुत अच्छी है मैडम, हरियाली वगैरह बहुत है यहाँ, आप आएंगी तो बहुत मजा आएगा।
0: आपको क्या क्या अच्छा लगता है वहाँ पर कर्नाटक की खास चीजों को घूमना देखना?
1: यहाँ गार्डन वगैरह है ना मैडम, वो हिड़कल बोल के गांव है,
0: जी
1: और बेलगाम भी हमारा बहुत अच्छा है, वहाँ हम घूमने जाते हैं साल में एक मरतबा या दो मरतबा।
0: जी दिया जी, देखिए ना, सावन का जो मौसम चल रहा है, सावन आ गया है, झूमकर इठलाता बलखाता, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए, सुनकर बहुत अच्छा लगेगा।
1: सावन की यादें मैडम बहुत अच्छा है, बरसात है, रिमझिम बारिश है,
0: और सावन में झूला झूलना, ये कैसा लगता है आपको?
1: बहुत मजा आता है मैडम। हमारे इधर मेला लगता था ना मैडम साल में एक बार,
0: हाँ जी,
1: तो हम अपने सखियों के साथ झूला झूलते थे
0: अच्छा,
1: और
0: और
1: बहुत मजा आता था।
0: जी अच्छा, मेले में आप जब जाती हैं ना, सावन के जो मेले होते हैं, वहाँ पर क्या क्या चीजें खरीदती हैं?
1: वहाँ मैडम मैं और मेरी कानों में की बाली और मेरा मेकअप का सामान।
0: अच्छा अच्छा दिया जी, आप बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं रंग फिल्म से सुनना पसंद करूंगी मैडम, तुम ही देखिए मेरी आंखें।
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बताइए आपका क्या नाम है?
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ, प्रेम
0: कहाँ से?
1: झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: बहुत प्यारा सा नाम है पूनम जी आपका। बिल्कुल, आपकी आवाज भी इतनी मीठी है कि लग रहा है कि पूरी चांदनी बिखर गई है हमारे प्रोग्राम में। जी, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा बोला आपने। तो देखिए, सावन का जो ये प्यारा सा मौसम चल रहा है, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए।
1: जैसे सावन महीना हो गया आ गया, तो मैडम जी आपको त्योहार व्रत जो है वो सब तैयारियां कर रहे हैं हम लोग। कभी तो स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही सावन आ जाता है तो एक मन में उमंग और तरंग आ जाता है मैडम जी, एक खुशी सी छा जाती है सभी के दिलो दिमाग में और बहुत ही अच्छा लगता है। हमका
0: तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: नाम है मंजिल,
0: जी
1: उसमें लता मंगेशकर जी का गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा गीत है मेरे। यदि आप इजाजत दे तो थोड़ा मैं गुनगुना सकती हूँ।
0: बिल्कुल, आप गा के सुनाइए।
1: सावन तुलक तुलक जाए मन, भीगी आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, ला ला ला ला ला ला लगी स्मिटन जी।
0: बहुत प्यारा सा आपने गीत गाया, तो चलिए आपको सुनवाते हैं पूनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: चंदा मामा से प्यारा वो करते हुए पिक्चर में
3: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, हम इंदौर से बोल रहे हैं, शीतल भाटी।
0: शीतल जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शीतल जी, क्या आपने कभी सावन के मेलों को जा करके देखा है?
1: जी जी बिल्कुल देखा है, पर अभी नहीं। जैसे हम छोटे छोटे थे, हमारी मम्मी वगैरह हमको मेले में ले जाया करती थी। सावन के यहाँ पर झूले डलते थे, सावन के जो आज भी डलते हैं, पर अभी काफी टाइम से हमने देखा नहीं है। और जो पहले डलते थे उस प्रकार के अब नहीं डलते हैं।
0: तो आप झूलती थी झूला?
1: जी, मैं बहुत छोटी थी। जी
0: अच्छा, तो ये बताइए, और आप क्या करती हैं, क्या शौक हैं आपके?
1: मैं तो अभी फादर का बिजनेस है, वो संभालते हैं।
0: जी, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटा रहे हैं, और बचपन की यादें भी आपने थोड़ी सी बताई हैं। तो
1: जी,
0: बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज हमारी मम्मी का फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहेंगे हम, आया सावन झूम के।
0: चलिए, आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो, मैं नांदेड़ से बात कर रही हूँ, प्रगति मुळे।
0: प्रगति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ।
0: गृहिणी हैं। तो गृहिणी हैं तो इसमें बहुत सारे काम भी होते हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं गृहिणी होने में। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है कि सबसे पहले हम कौन सा घर में काम कर लें?
1: काम हम तो सभी रोज करते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, वो तो करते ही है।
0: जी। अच्छा, ये बताइए प्रगति जी, जैसे सावन का जो महीना चल रहा है, तो आपको किस रंग की साड़ियां पहनना पसंद है, खासकर सावन के मौसम में?
1: सावन के मौसम में हरी।
0: हरी। वाह, क्या बात है। यानी कि हरी साड़ी, हरी हरी मेहंदी हाथों में लगाती होंगी, हरी चूड़ियां,
1: हाँ
0: है ना, बालों में गजरा। किस तरह के फूलों का गजरा आपको अच्छा लगता है बालों में लगाना?
1: मोगरा।
0: क्या बात है, मोगरे की खुशबू तो बहुत अच्छी होती है ना।
1: हाँ,
0: और आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं?
1: गुलाब, मोगरा, जाई जुई।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है सखी सहेली जो है आज मोगरे के फूलों से महक गया है ना प्रगति जी?
1: हाँ,
0: अच्छा बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: हम आपके हैं कौन में से हम आपके हैं कौन, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
0: क्या बात है, तो चलिए प्रगति जी, हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, हम आपके हैं कौन फिल्म से।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: शांति भाई बोल रही हूँ भोपाल से। सहेली
0: शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। ये बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं, उसके कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: सब प्रॉब्लम अच्छा लगता है, जो भी आता है ना वो सब अच्छा लगता है।
0: अच्छा शांति जी, हम बात करने वाले हैं सावन के बारे में। ये बताइए कि बचपन में आपने कभी झूला झूला?
1: हाँ झूला ना,
0: जी
1: बहुत झूला झूला बचपन में, तो इतना झूला झूला के वो ही चेंज बता ही नहीं सकते
0: आपने
1: जी।
0: अपनी सखियों के साथ जब झूला झूला, तो उसकी कुछ यादें हो तो बताइए आप मुझे।
1: बहुत अच्छा लगता था, सखियों के साथ रहती थी, हर चीज की नॉलेज होती थी और बहुत साथ में रहती थी, ऐसा लगता था कि जीवन भर साथ में रहे तो अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, सखियों का साथ ऐसा होता ही है कि हम साथ में रहें। अच्छा, मेले में बहुत सारी दिखती ना चीजें, कि हरी हरी चूड़ियां, लाल हरी चूड़ियां दिखती
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: है ना
1: दिखती थी ना, जो पसंद आती थी हरी चूड़ी ज्यादा पहनती थी, क्यों हरी हरी टाइम रहती है ना, तो
0: जी।
1: हरियाली में वो ही अच्छी लगती थी।
0: अच्छा ये बताइए शांति जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: झिल मिल सितारों का आंगन होगा, यही मेरे को गाना सुनना है।
0: शांति जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, झिलमिल सितारों का आंगन होगा।

0: अंतराल के बाद सखियों से बातें करने आ गई है मंजरी वर्मा। कार्यक्रम चल रहा है हेलो सहेली। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सुचिका सुमित ततानी बोल रही हूँ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: सुचिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। नमस्कार, कैसा लग रहा है? आपने आज फोन लगाया है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका प्रोग्राम सुनती भी रहती हूँ और बहुत प्यारी प्यारी बातें, मीठी बातें, कुछ यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी,
0: जी
1: तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: आप रेडियो बहुत ध्यान से सुनती हैं लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बचपन की आदत है ना, हम लोग 1970s वाले हैं ना,
0: क्या बात है, मतलब
1: तो
0: 1970s
1: रेडियो
0: की तो बहुत प्यारी प्यारी सी यादें भी होंगी आपकी।
1: बिल्कुल, रेडियो तो उस टाइम के ऐसा है कि स्कूल सुबह विविध भारती से पूरा सुनना और स्कूल जाना वापस आना, अलग अलग पिक्चरों का गाना सुनना, रात तक देखना, और वो लाइव क्रिकेट मैच का जो टेलीकास्ट होता था और
0: जी
1: 26 जनवरी का परेड,
0: जी
1: तो एक बहुत प्यारी, मतलब एक अटैचमेंट तरीके का है रेडियो से।
0: जी तो बहुत अच्छी सी यादें आपने साझा करी। और ये बताइए कि सुचिका जी, हम बात करने वाले हैं आज सावन के बारे में, कि सावन का जो मौसम चल रहा है तो इसमें आप क्या क्या खास तरह से करती हैं घर में तैयारियां, और जो सावन के जो मेले लगते हैं ना, उनको देखा है
1: हाँ
0: आपने कभी जा करके?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बुढ़िया का मेला तो बचपन में, मतलब ये तो हमारे घर के बाहर ही, हम लखनऊ के बिलोंग करते हैं नरही से,
0: जी
1: तो बहुत बड़ा हमारे घर के बाहर ही गुड़िया का मेला लगता है, और वो अनर्सी की गोली तो मतलब बचपन को तरोताजा कर देती है, आज भी बिल्कुल सब कुछ नया नया लगता है, और वो झूले तेंगे मिट्टी के खिलौने, सौंधी सौंधी खुशबू, और मेरे बाबा का चीजें लाना,
0: जी
1: क्योंकि हम लोग ज्वाइंट फैमिली में से है
0: जी
1: तो बहुत मजा आता था, इतने भाई बहन, वो बात ही अलग है, छत पे सोना, बारिश में खेलना,
0: क्या
1: अलग
0: बात
1: ही मजा है वो।
0: है। और सावन में जो झूला झूलते हैं उसकी भी बड़ी यादें, जब पैंग दिया जाता है, पैंग दे देकर झूलते हैं, तो आपने कभी इस
1: बिल्कुल
0: तरह के झूलों को झूला है कि पैंग दी हो आपने भर भर के?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर के बाहर ही एक बहुत बड़ा पार्क होता था, हम लोग जितनी भी सहेलियां होती थी झूला लगाते थे, और बिल्कुल जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, उसको फूलों से सजा कर और एक एक करके पेंग लगाते थे इस तरीके से, और भीड़ बाहर होती थी, मम्मी मेरी माँ लोग चाची लोग उन लोग सब, हरी हरी चूड़ियां
0: जी
1: और साड़ी तैयार, और सब सावन का सेज हरा लाल, मतलब एक
0: क्या
1: अलग ही
0: बात,
1: छवि उभर के आती है।
0: क्या बात है, आपने इतनी अच्छी सी बातें करी। जो सावन के झूले की बात करी आपने कि फूलों से सजा होता था, तो बिल्कुल राधा और कृष्ण का वो झूला याद आ गया है ना?
1: कुछ कुछ वैसे ही हम लोग करते थे एक्चुअली, सारी
0: जी
1: बदमाश लड़की लड़कियां सब भाई बहन मिलके, मोहल्लों के बच्चे जो खेलते थे, क्योंकि तब
0: जी
1: तो ये गैजेट्स और ये सब तो होता नहीं था, तो वही आनंद और कि आज शाम को मिलेंगे तो आज ये, और सावन में जो ब्रेक होता था, हम लोग की छुट्टियां भी होती थी, तो बहुत मजा, और रेनी डे तो शायद आपने भी इंजॉय किया
0: जी
1: होगा,
0: बिल्कुल, हमने भी
1: मतलब
0: इंजॉय किया है रेनी डे का।
1: बिल्कुल, तो बहुत, मतलब आपने ऐसा टॉपिक लिया है कि मैं तो बोलती ही जा सकती हूँ।

0: अच्छा भी लग रहा है कि आप इतनी सारी बातें, इतनी यादें ताजा कर रही हैं। तो जो सावन में बहुत सारे त्योहार होते हैं, हरियाली तीज, कद्री तीज, और बाद में रक्षाबंधन आता है, तो
1: हाँ
0: भाई
1: हाँ
0: बहन से जुड़ा ये प्यारा सा त्योहार होता है, तो आप क्या तैयारी करती हैं? अभी से तैयारी करेंगी या जब रक्षाबंधन आएगा उसके पहले कुछ दिन पहले तैयारी करेंगी? अपने हाथ से राखी बनाएंगी भाई के लिए या
1: बिल्कुल
0: खरीदेंगी?
1: बिल्कुल, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और हमारे जॉइंट फैमिली में कजन शब्द बोलना मना है, मतलब हमने कभी यूज नहीं किया। तो हम
0: जी
1: लोग टोटल 13 भाई बहने हैं,
0: क्या बात है।
1: और आप सोच नहीं सकते। और मेरी एकलौती बुआ होती थी, वो दिल्ली से आती थी, पूरा पकवान बनता था मतलब। और हम लोग सब साड़ी पहनते थे और खाना बनता था, पूरा सजाया जाता था।
0: क्या
1: राखियां
0: बात है।
1: हमने रेशम के धागों से, वो गाना नहीं है रेशम
0: जी
1: के धागों से,
0: हाँ जी
1: तो उसी में प्यार पिरो के भाइयों के लिए हम सारी बहनें बनाते थे राखियां।
0: जी
1: और हमारे जो सबसे बड़े ताऊजी थे, वो कंपटीशन करते थे कि किसका बेस्ट राखी होगा, तो
0: क्या
1: उसको
0: बात है,
1: प्राइज मिलता था।
0: क्या बात है।
1: हम लोग एक डाइनिंग टेबल के ऊपर मिनी कॉन्सर्ट भी करते थे, आप यकीन नहीं करोगे। डांस होता था, प्रोग्राम होता था, बच्चों हम लोग सारे जो चिल्लड़ पार्टी होते थे।
0: क्या बात है, यानी कि बचपन की आपने इतनी सारी यादें ताजा कर दी कि मेरी भी यादें ताजा हो गई है। अच्छा सा माहौल बन जाता है जब सब लोग एक साथ होते हैं परिवार में। जब बड़ा
1: बिल्कुल,
0: परिवार होता है तो उसकी रौनक ही अलग होती है।
1: बहुत बहुत
0: जी
1: मजा आता था, क्योंकि हमारे बाबा लोग 7 भाई और एक बहन, तो आप सोच सकती है क्या धमाल होता होगा।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, क्योंकि आजकल तो परिवार सिमटते से जा रहे हैं, छोटे से होते
1: हाँ
0: जा रहे हैं। सुचिका जी ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में ससुराल में सास ससुर हैं,
0: जी
1: और देवर देवरानी लोग अभी दिल्ली में, मतलब वो भी गाजियाबाद की तरफ ही रहते हैं। तो बस हम लोग 4-5 जो ना, मेरा बेटा है वो अभी लॉ
0: जी
1: कर चुका है, अभी अभी हाल ही में कृपा है ठाकुर जी की नौकरी पे लगा है। तो
0: क्या बात
1: बस
0: है,
1: छोटा सा प्यारा सा परिवार है।
0: बहुत अच्छा लगा सुन करके। अच्छा बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं सावन के महीने में सजना को याद ना करूं ऐसा तो हो नहीं सकता,
0: नहीं बिल्कुल,
1: और
0: आप याद
1: सावन है
0: कीजिए।
1: तो सजना भी है और उनके लिए निखरना भी है।
0: जी
1: तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपको अनुरोध करूंगी, सजना है मुझे साजन के लिए, ये वाला गाना आप चला दीजिए। यस
0: सजना है मुझे सजना के लिए, फिल्म सौदागर का ये गाना।
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। आप ऐसे ही अपने सजना के लिए सजती संवरती रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अर्चना गुप्ता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: अर्चना जी, आपने हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन लगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपका फोन लगा?
1: अरे आपको तो मैं जनवरी से ट्राई कर रही हूँ। मैं सोची थी मैं विश करूंगी हैप्पी न्यू ईयर,
0: जी
1: उससे करते करते सावन आ गया, अब तो पलका मिल ही गया।
0: मिल गई ना, तो देखिए सावन चल रहा है ना, तो पहले तो हम लोग एक दूसरे को सावन की ही शुभकामनाएं देते हैं, है ना?
1: आपको भी, जी,
0: तो अर्चना जी,
1: आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सावन की
0: अर्चना
1: जिंदगी हरी भरी रहे आपकी।
0: जी, अर्चना जी, ऐसी ही बहुत प्यारी सी शुभकामनाएं आपने मुझे दी, और हम भी देना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में हरी भरी खुशियां रंग बिखेरे तरह तरह के, और
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: सुखमय जीवन हो आपका। बताइए अर्चना जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ और घर से मैं थोड़ा सा मिक्सचर, नमकीन और गुजिया इसका काम करती हूँ,
0: अच्छा,
1: जो
0: ये
1: बहुत अच्छा चलता है।
0: बहुत
1: अभी फेस्टिव सीजन है ना, तो अभी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। ये रक्षाबंधन से शुरू होके दिवाली तक मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, बाकी समय तो चलता ही है,
0: जी
1: बट अभी त्योहार बहुत ज्यादा रहते हैं ना, तो स्पेशली गुजिया का मेरा बहुत डिमांड रहता है।
0: अच्छा, तो गुजिया आप किस तरह की बनाती हैं, सूजी की
1: मावे
0: या
1: की?
0: मावे की?
1: नहीं, मावे की,
0: उसमें कुछ भी
1: मावे
0: मिलाती नहीं है,
1: की
0: सूजी भी नहीं मिलाती है ना?
1: नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शक्कर, मावा और ड्राई फ्रूट्स रहता है।
0: क्या बात है। जो आप नमकीन बनाती हैं, उसमें कौन सी खास नमकीन आप बनाती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है और सबसे ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं?
1: चाकोली है, वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि मेरा थोड़ा डिफरेंट रहता है।
0: जी बहुत,
1: हाँ, तो वो बहुत ज्यादा चलता है, पसंद किया जाता है।
0: ये खाना जो बनाने का शौक है, ये आपको बचपन से था या बाद में आपको हुआ?
1: अरे नहीं, मैं तो किस उम्र से खाना बना रही हूँ मेरे को ये भी नहीं मालूम। मेरी मम्मी बचपन से
0: जी
1: ही काम करवाती थी, तो वो आदत पड़ गया था, और
0: जी
1: खाना खाने का शौक और बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो
0: क्या
1: वो फिर हमारी हॉबी बन गई।
0: क्या बात है।
1: और
0: यानी
1: फिर
0: देखिए,
1: बड़े हो गए हैं, उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया है, और भगवान की दया है कि बहुत अच्छा चल रहा है।
0: देखिए माता पिता का जो भी सिखाया हुआ होता है ना काम, बच्चों को जो बचपन में
1: जी
0: सिखाते हैं, वो अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि
1: हाँ
0: शादी होगी, दूसरे घर जाएंगी, तो वहां पर उनको किसी काम में दिक्कत ना हो। तो देखिए, उनका जो सिखाया हुआ था आपको हुनर, वो आज आपके काम आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है।
1: काम आ रहा है ये चीज।
0: तो आपने अपने परिवार में अपने बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा दी?
1: नहीं, बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं, पर हाँ अभी जैसे गुजिया का टाइम है, तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि
0: जी
1: उसमें जब तक दो तीन लोग नहीं लगेंगे ना, तो नहीं हो पाता। एक एक दिन में 10 किलो 15 किलो बनाना रहता है।
0: बिल्कुल
1: दो
0: सही बात
1: लेडीज भी
0: है।
1: हैं, हाँ दो लेडीज भी हैं, तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है, मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं।
0: क्या बात है, यानी सावन में आपने गुझियों की याद दिला दी, महक हमारे यहाँ तक आ गई है उड़ करके। अर्चना जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, और
1: मेरा तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग की आवाज इतनी मीठी
0: जी
1: लगती है ना, कि
0: जी
1: मैं क्या बोलूँ, ये
0: जी
1: पूछिए मत।
0: धन्यवाद। अच्छा ये बताइए अर्चना जी, सावन की कौन कौन सी यादें हैं जो आप मुझे बताना चाहेंगी?
1: ऐसे तो बहुत सारी हैं, पर हमको अपने शादी के बाद का पहला सावन याद है, जब मैं
0: जी
1: मायके गई थी, अपने हाथ से भाई को राखी बांधी थी।
0: जी
1: 30 साल शादी को हो गए, उसके बाद ये चांस दोबारा नहीं मिला, तो वो यादगार रहा है मेरे लिए।
0: जी आप फिर से वापस अपने मायके जाइए और अपनी यादों को फिर से ताजा कीजिए, तो वो बहुत ही अच्छी सी यादें
1: बिल्कुल,
0: होती हैं, है ना?
1: वो यादें होती हैं, पर अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को देखना है।

0: हो नहीं पाता है।
1: जी बिल्कुल, हम समझ सकते हैं ये चीज। तो सावन में जब मेले लगते हैं, वो मेले आपने जाकर देखे हैं?
0: बहुत देखे हैं, बहुत मजा आता है। उसके लिए तो स्पेशली समय निकालती हूँ कि नहीं मेरे को जाना है। उसमें जाने से ऐसा लगता है मेरा बचपना आ गया वापिस।
1: और वहां पर
0: और कुछ नहीं रहता
1: जी
0: था तो मेला देखना है, कोई भी मेला लगाओ कहीं भी लगाओ तो जाना है देखने, मेला देखने जाना है, प्रदर्शनी देखने जाना है। और जो झूले वगैरह रहते थे, झूलने का जो आनंद आता था ना, वो सब चीजें तो अब याद करके ही रह जाते हैं, पर लगता है तो मैं तो जरूर जाती हूँ।
1: अच्छा, मेले में जो दुकानें लगती है, वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं जो घरों में उपयोग की जाती, बच्चों के खिलौने होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है, हार माले चूड़ियां सब होती हैं। तो आप उनमें से क्या क्या चीजें ज्यादा खरीदा करती थी उस समय?
0: मैं किचन का सामान ज्यादा देखती थी, ध्यान उसी पे ज्यादा जाता
1: क्या
0: था।
1: बात है, हम समझ सकते हैं कि आपका शौक बचपन से जो किचन में आपने काम किया है,
0: किचन में
1: तो
0: हाँ,
1: जी
0: क्या है क्या नहीं है, अच्छा इस बार ये चीज नया आया है पकड़ कर। वो जो पहले तो बड़े बड़े हम लोग के यहाँ अदरक वगैरह घिसने वाले
1: जी
0: आते थे,
1: जी
0: अब ये छोटे छोटे मिलने लगे हैं, तो वो सारी चीजें जैसे मेले में दिखती थी ना तो तुरंत खरीदते थे। और अभी भी किसी भी मेले में जाएंगे तो कुछ मैं नहीं देखूंगी, सबसे पहले गुजिया का सांचा ढूंढती हूँ।
1: क्या बात है, यानी डिजाइनर सांचे आप ढूंढती हैं गुजिया बनाने के लिए, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा ध्यान उसी पे जाता है।
1: बड़ा अच्छा लगा अर्चना जी आपसे बातें करके, खूब सारी यादें ताजा हो गई। तो चलिए बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
0: बरसात मूवी का, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में।
1: बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने चुना है मौसम के अनुरूप, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
1: पूनम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए पूनम जी, आपके कौन कौन से शौक हैं?
0: म्यूजिक मेरा सबसे पहला शौक है, मुझे
1: जी
0: गाने गाना सुनना बहुत पसंद है, साथ में मुझे कुकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है।
1: क्या बात है। और पूनम जी आपको रेडियो सुनना पसंद है?
0: जी बिल्कुल, बहुत पसंद है।
1: और आपके परिवार में कौन कौन है?
0: मेरे दो बेटे हैं, दोनों लॉयर हैं,
1: जी
0: मेरे हस्बैंड, और बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, एक बिटिया है, मेरी डॉटर इन लॉ।
1: जी क्या बात है। पूनम जी ये बताइए, जो सावन का महीना है, इसकी यादें आपके जीवन में किस तरह से जुड़ी हुई हैं?
0: सावन का महीना मेरे लिए सिर्फ महीना नहीं है, ये भावनाओं का त्योहार है।
1: जी
0: चारों तरफ हरियाली, झूले, मेहंदी, गीत और भगवान शिव की भक्ति।
1: जी
0: सावन के आते ही मन में उमंग भर जाती है। जैसे अब तो खैर नहीं होता, लेकिन पहले सावन में हमेशा प्रेयर जाती थी, वहाँ पर सबके साथ, मम्मी पापा भाई बहनों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता था।
1: और जयपुर में किस तरह से सावन आप सभी सखियां मिलकर के मनाती हैं?
0: सावन का महत्व मतलब झूले की तरह है, झूला सावन की पहचान है। कहते हैं ना, झूला झूलने से मन हल्का होता है, प्रकृति से जुड़ाव होता है,
1: जी।
0: पेड़ों पर रंगीन झूले और उन पर सहेलियों के साथ गाना, यही तो सावन की खूबसूरती है।
1: और वहां की क्या खास डिश होती है जयपुर की?
0: खरीद के तो जैसे हम घेवर लाते हैं, यहाँ के फेमस है सावन में घेवर, और गुलाब जामुन, पूरे
1: जी
0: खीरी बनती है, और घर में हम दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। सावन मतलब दाल बाटी चूरमा का बहुत है जयपुर के अंदर ना, दाल
1: जी
0: बाटी चूरमा बहुत फेमस है।
1: दाल बाटी चूरमा जो है, जो बाटी होती है वो तो कई तरह की बनती है ना?
0: हाँ, मसाले वाली बाटी बनती है, आलू की बाटी बनती है, सादा बाटी बनती है। हाँ
1: जी, और मेवे वाली बाटी भी तो बनती है वहां पर?
0: हाँ बिल्कुल, अंदर ड्राई फ्रूट डाल के, मेवा डाल के वो भी बनती है।
1: जी पूनम जी, आपने कभी वहां पर जो मेले लगते हैं वहां पर जाके आपने देखा, एंजॉय किया सखियों संग?
0: जी बिल्कुल, यहाँ पर जयपुर में तीज माता की सवारी निकलती है,
1: जी
0: बहुत भव्य सवारी निकलती है, बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह, तो उसको हम देखने जाते हैं सिटी में।
1: क्या बात है, उसकी खूबसूरती देखते बनती होगी, है ना?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: बताइए पूनम जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
0: ये गीत सुना दीजिए, अब के सजन सावन में, ये मुझे बहुत पसंद है।
1: पूनम जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: मधुमक्खियों से बातें करते हुए वक्त तो पंख लगाकर उड़ गया और दे गया बहुत सारी यादें। चलते चलते आपको बता देते हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से 12 बजे तक रिकॉर्डिंग होती है। प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे हेलो सहेली कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली कार्यक्रम। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002466 2, एसटीडी 022। अब इसका दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 2867-0288, एसटीडी कोड है 022। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। और जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग। हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, स्वीकार कीजिए मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, गीतों भरी कहानी, बस कुछ ही पलों के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह।
1: स्वाति की सुबह हमेशा जैसी सुंदर थी। जाते हुए भादों ने उसे सुबह की सैर पर भिगो दिया था। उसके पसंदीदा मौसम के आखिरी कुछ दिन बचे थे, जिसे वो अगली बारिश तक खुद में समेट लेना चाहती थी। भीगी भीगी स्वाति जब अपने कॉलोनी के अंदर पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। टाइम देखकर वो हड़बड़ा गई। बच्चों की बस आने वाली होगी, देर हो गई आज, सोचती हुई वो घर के अंदर घुसी और सीधे ही किचन में जाकर बच्चों का टिफिन पैक करने लगी। कान्हा और वृंदा को अभिनव ने पहले ही तैयार कर दिया था। टिफिन भी उसकी महाराजिन मंजू बना चुकी थी। हर काम अपने समय से हो चुका था।

लेकिन मां का दिल है ना, जब तक खुद काम में हाथ न लगाए उसे चैन ही नहीं पड़ता। बच्चों को भेजकर वो भी गुनगुनाती हुई नहाने चल पड़ी। टाइम पर ऑफिस भी तो पहुंचना था। क्या बात है, आज तो कोई मूड में लग रहा है। आईने के आगे संवरती स्वाति के गीले बालों में तौलिया बंधा था। उसे गुनगुनाते देखकर अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। अभी देर हो जाएगी यार, छोड़ो मुझे। अभिनव को प्यार से झिड़कती हुई स्वाति के चेहरे पर एक लालिमा तैर गई। एक तो इस घर में प्राइवेसी कम मिलती है, उस पर तुम हो कि मौके का फायदा भी नहीं उठाने देती, अभिनव ने शिकायत की। अच्छा जी, 10 साल की शादी है और आप अब भी नौशे मियां बने हुए हैं। अभिनव को चिढ़ाती हुई स्वाति तैयार हो चुकी थी। हां भाई, पुराने पति की किसको परवाह होती है, चलो तुम्हारा नया प्रेमी बन जाता हूं। अभिनव ने नई पेशकश की। ये सही आइडिया है, पुरानी शादी में नए प्यार का तड़का। स्वाति हंसती हुई घर का ताला बंद करने लगी। रोज ही दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकलते थे। स्वाति पहले अभिनव को उसके ऑफिस पर ड्रॉप करती, फिर अपने ऑफिस चली जाती। रोज की तरह दोनों साथ निकले और अपने अपने ऑफिस चले गए। दिन की शुरुआत जितनी अच्छी थी, ऑफिस पहुंचते ही स्वाति

रहे थे। अचानक हुई इस दुर्घटना से स्वाति स्तब्ध रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो आलोक कल दिन भर अपनी तरक्की को लेकर खुश था, जो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, उसके साथ ऐसा कैसे हुआ होगा। वो न सिर्फ दुखी थी बल्कि बहुत बेचैन भी थी। इसी उधेड़बुन में वो गलती से लाइव न्यूज करते रिपोर्टर्स के फ्रेम में आ गई। हड़बड़ाई हुई स्वाति ने संकोच में खुद को लेडीज बाथरूम में बंद कर लिया। आलोक ने ऑफिस में नशा कैसे किया? आखिर कौन था उसके साथ? उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं सवालों के जवाब बाहर मीडिया और पुलिस भी ढूंढ रही थी। जिंदगी किसी भी पल बदल सकती है, इसका वाकई कोई भरोसा नहीं।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: स्वाति ने अपने चेहरे को धोया और बाहर की तरफ बढ़ी कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन उठा लिया। हेलो, तुम ठीक हो? कौन? स्वाति? स्वाति वत्स बोल रही हो ना? हाँ, मैं स्वाति ही बोल रही हूं। आप कौन? पहचाना नहीं? मैं निमिष राठौड़। निमिष? दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले निमिष? बिल्कुल सही। तो तुम्हें याद हूं मैं। कैसी बात कर रहे हो, हम फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। अरे ऐसे जुड़ने का क्या फायदा जब बस जन्मदिन और नए साल की शुभकामना ही देती हूं। आलोक की मौत का सदमा स्वाति को कई दिन तक रहा, लेकिन निमिष के रूप में उसे उस वक्त एक फौरी आराम मिल गया। निमिष और स्वाति ने 15 साल पहले साथ में ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। दोनों के बीच कभी ज्यादा दोस्ती नहीं थी। फेसबुक के आने के बाद सभी लोगों ने अपने पुराने दोस्तों और सहपाठियों को ढूंढ लिया था, और तभी से स्वाति और निमिष भी वहां जुड़े थे। निमिष एक नामी न्यूज चैनल का हेड था और स्वाति को अपने चैनल की लाइव न्यूज के फ्रेम में देखकर ही उसे कॉल किया था। हालांकि

0: कॉलेज में भी दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं थी, लेकिन स्वाति को कॉलेज में भी उसका इंटेलिजेंस अच्छा लगता था। उसकी वाणी और स्वभाव में हमेशा ही नरमी रहती। कुछ देर निमिष से बात करके उसका दिमागी बोझ थोड़ा हल्का हुआ। अब जबकि निमिष ने स्वाति के चेहरे की परेशानी कुछ सेकंड्स के वीडियो में ही समझ ली थी, तो उसे निमिष की परवाह अच्छी लग रही थी। शायद ये परवाह भी उसके स्वभाव का ही हिस्सा थी। कुछ दिन के बाद लगभग हर हफ्ते 10 दिन में निमिष का फोन आता या वो उसे कॉल करके आलोक के केस के बारे में पूछ लेती। धीरे धीरे पुराने सहपाठियों के बीच उनके वर्तमान की जानकारी साझा होने लगी। दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स के बारे में एक दूसरे को बताया।
1: भाई, तुम्हारी और अभिनय की लव मैरिज है? निमिष ने पूछा।
0: उससे भी बढ़िया, हमारी फ्रेंडशिप मैरिज है, स्वाति ने उसे नया टर्म बताया।
1: यानी तुम्हें किसी से अब तक प्यार नहीं हुआ? निमिष ने उत्सुकता से पूछा।
0: स्वाति ने गर्व से कहा, मित्रता प्रेम की पराकाष्ठा होती है।
1: और ये किस महापुरुष ने कहा है?
0: निमिष ने झट से पूछा। ये एक महान स्त्री ने कहा है, स्वाति ने खिलखिला के जवाब दिया।
1: हाँ, होगी कोई तुम जैसी स्त्री जिसने प्रेम को सही से जाना ही नहीं।
0: निमिष संपादक था, शब्दों के जाल को बुनना उसे खूब आता था। अच्छा, सबकी प्रेम की परिभाषा अलग भी तो हो सकती है। मुझे अभिनव जैसा जीवन साथी मिला जिसने मुझे सहज रहने दिया, कभी बदलने की कोशिश नहीं की, उससे प्रेम अपने आप होता चला गया।
1: अच्छा, और तुम्हें कैसे पता वो दोस्ती नहीं प्रेम है?
0: निमिष ने फिर से सवाल किया। अब स्वाति ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी प्रेम कहानी और शादी अमर रहे, इतना ही मानवता के लिए काफी है।
1: भाई, मेरी तो अरेंज मैरिज है,
0: निमिष ने बताया तो स्वाति ने झुंझला के कहा,
2: वाह, और ये प्रेम पर तब से ज्ञान दे रहे हैं?
1: नहीं, प्रेम बार बार नहीं होता।
0: निमिष कुछ बोलते बोलते चुप हो गया।
2: मतलब तुम्हें किसी और से प्यार,
0: तो शादी क्यों नहीं की?
1: स्वाति ने उत्सुकता से पूछा। हां, किया था, पर उससे कह नहीं पाया। कई साल उसे ढूंढा, उसका इंतजार किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उम्र निकल रही थी, फिर पूजा का रिश्ता आया और पेरेंट्स ने पक्का कर दिया। इसलिए समझता हूं कि बिना प्यार की शादी कैसे होती है। उसकी शादी को 3 साल हुए थे, जबकि स्वाति की शादी को 11 साल होने को थे। स्वाति आगे पूछना चाहती थी, लेकिन अपने रिश्ते की मर्यादा में उसके और उसकी पत्नी के विषय में कुछ पूछ न सकी। लेकिन उसका दिमाग अब यह जानना चाहता था कि निमिष को किससे प्रेम हुआ था। क्या वो उस लड़की को जानती है? कहीं साथ में पढ़ने वाली कोई लड़की तो नहीं थी?

हफ्ते 10 दिनों में होने वाली कॉल अब रोज होने वाली बातों में बदल गई। निविश को सही सवाल पूछना आता था। स्वाति बेखटके हर जवाब देती। उसके मन की हर परत अब निमिष को पता थी। निमिष कम बोलता था। जब भी स्वाति खुद से पूछे सवाल का रुख उसकी तरफ कर देती तो वो उदास हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसकी शादी बस एक बंधन, एक जिम्मेदारी हो। उल्टे स्वाति और अभिनव की शादी और सामंजस्य वो सराहता, लेकिन बूझे स्वर में। ऐसे में स्वाति ने उससे अपने पति और रिश्ते की बात करना बंद कर दिया। अब वो बाकी विषयों पर बातें करते, जैसे राजनीति, देश, दुनिया, फिल्म, गाने और खाना भी। स्वाति और निमिष के बीच फोन पर बातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। जब निमिष अपने ऑफिस के लिए निकलता था, उस वक्त तक स्वाति अपने ऑफिस पहुंच चुकी होती थी। वो जब घर से निकलता तो उसे फोन मिला लेता और जब तक अपने ऑफिस पहुंचता तब तक स्वाति से बात करता रहता। कई बार तो वो रास्ते में ही होती और निमिष का फोन आ जाता। स्वाति ने अभिनव को निमिष के बारे में बता दिया था। उससे बात करके जो भी पुराने यादें लौटती, उनकी कहानी वो अभिनव को रोज सुनाती। अभिनव को स्वाति के दोस्तों से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। कॉलेज के दिनों की पुरानी बातें हो या रोजमर्रा की बातें, निमिष और स्वाति के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। एक दिन निमिष ने स्वाति को बताया कि जितनी बातें वो उससे करता है, उतनी बातें उसने कभी भी किसी और से भी नहीं की है, ना अपने परिवार में, ना ही पत्नी के साथ। सच में यार, पति पत्नी की क्या बात कर रही हो? मुझे तो लगता है मैंने कभी भी किसी से इतनी बातें नहीं करी जितनी मैं तुमसे करता हूं। कभी सोचा है कि कैसे तुमसे इतना सहज हूं कि बिना किसी लाग लपेट के हर बात कह पाता हूं? निमिष जानना चाहता था कि स्वाति उसकी जिंदगी में अपनी खास जगह को पहचान रही है या नहीं। अच्छा, लेकिन मैं तो हमेशा से इतनी बातूनी हूं। मैं तो रोज की बात रोज ना करूं तो पेट में दर्द होने लगे। वो हंसने लगी। स्वाति तो स्वाति थी, अल्लड़ और हिंट न देने वाली। हां, तुम तो कॉलेज के जमाने से ऐसी ही हो, लेकिन तुम्हारी संगत मुझे बदल रही है, वरना मैं अपने मन की बात किसी से नहीं बांटता। उसने एक बार फिर से अपनी जिंदगी में स्वाति की अहमियत और बदलाव को रेखांकित किया। घुटन नहीं होती? स्वाति ने उससे अचानक पूछा। निमिष तैयार नहीं था। उसे लगा कि स्वाति पूछेगी कि ऐसा क्यों है कि निमिष उसके साथ इतना सहज है, या शायद ये कि उसकी संगत के निमिष पर और क्या असर हो रहे हैं। लेकिन उसने पूछा उसके ना बात करने की घुटन के बारे में। सवाल से

निमिष ने यह तो जाना कि स्वाति को उसके स्वभाव को लेकर उत्सुकता भी है और उसकी चिंता भी। उसने थोड़ा सोच के जवाब दिया, आदत है सब अपने अंदर रखने की, खुशी हो या परेशानी, सब बस हमेशा अंदर ही रहा। इसीलिए मैं तुम्हारे जैसा एक्सप्रेसिव नहीं हूं। चलो तुम्हारे बंद ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या निकलेगा। स्वाति ने पूरे जोश से निमिष की जिंदगी के बारे में जानने और उसके अकेलेपन को दूर करने का बीड़ा उठा लिया। उस रोज एक लंबी मुस्कान ने निमिष की आंखों को प्रदीप्त कर दिया। स्वाति को अब स्पेशल फील हो रहा था। निमिष वाकई मितभाषी था और वो अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कर पाता था, जबकि स्वाति के साथ वो हर बात बिना किसी तकल्लुफ के साझा कर लेता था। उसे खुद पर थोड़ा नाज हुआ, लेकिन जब भी निमिष इस बात पर जोर देता, स्वाति ऐसा दिखाती जैसे ये कोई खास बात नहीं है। दिल ही दिल में उसे यह एहसास था कि उन दोनों के बीच कुछ तो बदल गया था। आखिर उनका आपस में गजब का सामंजस्य था। इतने सालों के बाद वो संपर्क में आए थे। सिर्फ फोन और चैट पर बात करते हुए कुछ ही हफ्तों में वो दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात, यहां तक कि भाव भी समझ जाते। स्वाति को जो अब तक रोमांचक लग रहा था, वो अब उसे अजीब लगने लगा। वो जानना चाहती थी कि क्या ये वाकई अटपटा है या स्त्री कंडीशनिंग है जो उसे ये आत्मीयता और अंडरस्टैंडिंग गलत लग रही है। वो जानना चाहती थी कि क्या उसकी तरह निमिष को भी उनका मेलजोल इतनी तेजी से बढ़ना अटपटा लग रहा है। लेकिन निमिष ने उसे फिजूल बातों पर मंथन करने से मना किया। वो किसी भी रूढ़िवादी सोच के चलते अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहता था।

0: निमिष जानता था कि स्वाति के प्रति बढ़ता लगाव दरअसल उसका खोया हुआ प्रेम ही है। वो स्वाति को कॉलेज के जमाने से पसंद करता था, लेकिन संकोच में उसे बता नहीं सका। ग्रेजुएशन के बाद स्वाति आगे पढ़ने दूसरे शहर चली गई और वो कभी उसे ढूंढ नहीं सका। 8 साल बाद जब फेसबुक पर स्वाति मिली तो उसकी शादी हो चुकी थी और परिवार में एक बेटी भी थी। फेसबुक पर स्वाति से इतनी बात करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। उस दिन घबराई हुई स्वाति को अपने चैनल की स्क्रीन पर देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने कॉलेज ग्रुप से लिए हुए उसके नंबर पर पहली बार कॉल किया था। उसे पता नहीं था कि बातों का सिलसिला उसके अंदर की चाहत को फिर भड़का देगा। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, निमिष ने कहा। अचानक? ठीक तो हो? स्वाति को चिंता हुई। बोलो ना, मिलोगी? उसने विनती के स्वर में पूछा। हां, क्यों नहीं, इस इतवार को घर पे आ जाओ। स्वाति ने सहज ही निमंत्रण दे दिया। घर पर नहीं, निमिष ने साफ मना कर दिया। क्यों, अभिनव से नहीं मिलना, बल्कि पूजा को भी लेते आना, स्वाति ने फिर से समझाया। नहीं यार, तुमसे मिलना है, किसी और से नहीं मिलना। अभी परिवार को दोस्ती के बीच में मत लाओ ना, निमिष ने झुंझला कर कहा। अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों मिलते हैं, स्वाति उसकी मनोस्थिति समझना चाहती थी। करीब 6 हफ्ते फोन पर बात करने के बाद निमिष और स्वाति कॉलेज के बाद पहली बार रूबरू मिले। निमिष आज भी वैसा ही था, जबकि कॉलेज के जमाने में सीख सी दिखने वाली स्वाति अब भरी पूरी महिला हो गई थी। उसका वजन उस पर फबता था, उनका साथ कपूर और आग जैसा था। स्वाति की हंसी की खनक और बातों की खुशबू से निमिष का मन महक रहा था। स्वाति से मिलकर वो जान गया था कि अपने दिल की बात बताना या पुरानी चाहत का राज खोलना स्वाति को दोबारा खो देने जैसा होगा, क्योंकि वो जितनी बात करती उसमें आधे से ज्यादा बातें या उदाहरण उसके पति अभिनव के बारे में होते। स्वाति अभिनव के साथ खुश थी। निमिष उसके दिल में अपनी छोटी सी जगह को खोना नहीं चाहता था। उनकी बातचीत की तरह उनके मिलने का सिलसिला भी बढ़ता गया। कभी निमिष उसके ऑफिस की तरफ आ जाता और उसके साथ कॉफी पी लेता, कभी लंच पैक करवा के साथ ही ले आता और दोनों गाड़ी में ही बोलते बतियाते लंच करते। ऐसा लग रहा था कि अपनी भावनाओं और परिस्थितियों दोनों पर अब उनका कोई बस न रह गया हो। जितनी देर वो स्वाति के साथ रहता उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक कायम रहते। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो पूरी तरह से स्वाति के प्यार में डूबा है। दूर से देखने वाले भी उनके बीच का स्पार्क महसूस कर सकते थे। ऐसे में ये बात उन दोनों को खुद महसूस न हो रही हो, यह संभव नहीं था। बकौल निमिष, वो इस अनाम से प्यारे रिश्ते में कोई सवाल नहीं चाहता था और अपने बीच तेजी से बदलती भावनाओं को वो जानबूझकर अनदेखा करने लगा। स्वाति को निमिष की आंखों का प्यार और आकांक्षाएं साफ दिख रही थीं। मजाक मजाक में वो उसे कई बार प्यार में न पड़ने की चेता चुकी थी। निमिष भी उसकी चेतावनी को हर बार काश ऐसा ही हो जाए बोलकर हंसी में उड़ा देता। वो जानता था कि स्वाति को जिस प्यार के होने का डर सता रहा था वो पहले से ही उसके जीवन का सच था। शायद उसे खुद भी प्यार में पड़ जाने का डर हो।
1: गीतों भरी कहानी जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: आप सुन रहे हैं गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह। आइए सुनते हैं आगे की कहानी।
1: निमिष का शक सही था। स्वाति समझ रही थी कि दोस्ती और उनके वर्तमान समीकरण के बीच बहुत फर्क आ चुका है, और ऐसा सिर्फ निमिष की तरफ से नहीं था। उसने स्वयं भी यह समझ लिया था कि अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति बढ़ता उनका आकर्षण भी है। ऐसे में वो इस बढ़ती लत को यहीं रोक देना चाहती थी। निमिष, हम दोनों खुशहाल परिवार में रहते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए कि इस दोस्ती से अभिनव या पूजा को इनसिक्योरिटी ना हो।
2: तुम ना ओवरथिंकिंग की दुकान हो यार, बेवजह परेशान होती रहती हो, इतना मत सोचो।
1: निमिष ने समझाया कि उनकी दोस्ती में उनके पार्टनर्स के लिए उसे कोई धोखा नहीं दिख रहा है।
2: यार तुम सोचती बहुत ज्यादा हो, अगर दोस्ती से ज्यादा है तब भी ये कोई चीटिंग नहीं है, हमें भी खुश रहने का हक है।
1: अपने पसंदीदा इंसान के साथ समय बिताना अगर किसी को धोखा लगे तो लगा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
2: निमिष, ये दोस्ती नहीं है, ये जो तुम्हारी आंखों में दिखता है उससे मुझे घबराहट होती है, मैं अभिनव को धोखा नहीं दे सकती।
1: बात को समझो, हमें मिलना फौरन बंद करना होगा, प्यार व्यार में पड़ जाओगे तो बस, हमें बात भी कम करनी चाहिए।
2: स्वाति के लहजे में चिंता थी।
3: तुम्हें मुझसे प्यार हुआ क्या?
2: नहीं ना,
3: क्या ही फायदा तब इतना सोचने का।
1: निमिष कह नहीं रहा था बल्कि पूछ रहा था।
2: फिर भी ये ठीक नहीं है, किसी से मानसिक लगाव भी इमोशनल चीटिंग ही है। स्वाति ने अपना स्टैंड क्लियर किया।
3: पागल मत बनो स्वाति, ये जो वक्त मैं तुम्हारे साथ जीता हूं वो मेरे पूरे दिन की खुराक है। मुझे नहीं पता तुमसे मिलने से पहले मैं कैसे जिया, मुझे बस इतना पता है कि मेरे नीरस जीवन में जो भी रंग है उसकी वजह यही समय है जो मैं तुमसे बात करते हुए, तुम्हें देखते हुए बिताता हूं।
1: निमिष ने कातर आंखों से स्वाति से उसका चैन न छीनने की गुजारिश की।
4: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: स्वाति समझ रही थी निमिष उससे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहता है, लेकिन स्वाति से दूर होने का डर उसे रोक रहा था। उस रोज स्वाति जब उससे मिलकर अपने घर के लिए निकली तो उसने निमिष को कोई वादा नहीं किया, बल्कि उसे सांत्वना देकर चली गई। धीरे धीरे उसने निमिष के कॉल उठाना कम कर दिया। जब भी वो मिलने को कहता, स्वाति कोई न कोई बहाना बना देती। वो ऑफिस तक आ जाता, तब भी वो मीटिंग का बहाना करके उससे नहीं मिलती। ऐसा नहीं था कि उसके इस व्यवहार से सिर्फ निमिष दुखी था, दुखी तो वो खुद भी थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी ही तरह निमिष भी शादीशुदा है। वो जितना अपने और निमिष के रिश्ते को पड़ताल करती, उसे अपना कदम सही लगता। स्वाति अभिनव से प्यार करती थी, उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी और वो साथ में खुशहाल भी थे। फिर क्यों उसने निमिष को इतना आगे बढ़ने दिया? मुझे न प्यार की तलाश है न प्रेमी की, कैसे संभव है एक इंसान के प्रेम में होते हुए किसी दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाना? क्या मैं आकर्षित हूं या मुझे भी निमिष से प्रेम हो रहा है? वो जितना खुद को मथ रही थी, उतने ही अलग अलग जवाब उसके जहन में आ रहे थे। नहीं, मुझे निमिष से प्यार नहीं है, मुझे बस ये एहसास अच्छा लग रहा है कि कोई मेरी परवाह करता है। निमिष मुझसे बात करता है और मुझे अपने जीवन की प्राथमिकता मानता है, मुझे सिर्फ इस एहसास से प्यार है। उसे लगा कि जब से निमिष ने अपने और अपनी पत्नी पूजा के बीच के संबंधों के विषय में बताया, तब से उसे निमिष की ज्यादा फिक्र होने लगी थी। निमिष और पूजा के संबंध किसी बुजुर्ग जोड़े से भी ज्यादा नीरस थे। उनके बीच न तो संवाद था न ही दैहिक संबंध, कम से कम निमिष का तो यही कहना था। उसके जीवन के बारे में सुनने के बाद स्वाति को उससे सहानुभूति होने लगी थी। उस जैसा सुलझा हुआ और प्यारा इंसान अपने जीवन में हर खुशी का हकदार था, प्यार का भी। स्वाति अपनी सोच की परतों से खुद ही घबरा रही थी। कोई भी तर्क, कोई भी वजह इस बात को सही नहीं ठहरा सकती कि मैं एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रही हूं और ऐसे में अपने 15 साल पुराने एक सहपाठी के लिए मेरा दिल पिघल रहा है। स्वाति ग्लानि से भर गई और उसने निमिष से हर संवाद खत्म करने का फैसला लिया। उसे निमिष के साथ बिताया हुआ हर पल अभिनव के साथ की हुई बेवफाई लग रहा था। वो अभिनव से कुछ छुपाती नहीं थी, लेकिन निमिष के बदले हुए व्यवहार को उसने अभिनव के सामने जाहिर नहीं किया था। वो जानती थी कि अभिनव पजेसिव या कंट्रोलिंग पति नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे पूरी बात बता न सकी। ये भी उसके अपने मन का चोर था शायद। वो निमिष को दिए हुए समय की भरपाई अभिनव के साथ अच्छा वक्त गुजार के करना चाहती थी। स्वाति ने दीपावली की पुरानी लाइट्स को स्टोर से निकाल के अपनी हरी भरी बालकनी में लगाया। सुनहरी लाइट्स में पौधों की खूबसूरती और निखर गई। बेत के सोफे पर नए चढ़ाए कुशन कवर सज रहे थे। अभिनव घर में घुसा तो स्वाति ने तैयार होकर उसका स्वागत किया। अभिनव के लिए ये सुखद आश्चर्य था। बालकनी में गर्मा गर्म कॉफी के मग उसका इंतजार कर रहे थे।
1: क्या बात है, अभी से दिवाली की सजावट शुरू हो गई?
2: हट, शादी के कई साल बीत जाएं तो यही होता है, स्पेशल फील कराने की कोशिश का अंजाम तो देखो जरा।
0: उसने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया। सॉरी बाबा, मजाक कर रहा था। जीवन में रस बना रहे उसके लिए प्यार में ये सब छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। देर रात तक दोनों वहीं बैठकर बातें करते रहे। घर और नौकरी की भागदौड़ में दोनों को आपस में बातें करने का मौका कम मिलता था। हालांकि स्वाति अपने हिस्से की बात रोज अभिनव से बोल ही देती थी, लेकिन वो एक तरफा संवाद था। अभिनव ने डिसाइड किया कि अब से हर शाम वो दोनों साथ में कॉफी पिएंगे और हर हफ्ते में कम से कम एक बार साथ में अपने दफ्तर से अलग कहीं जाएंगे। स्वाति को अब हल्का महसूस हो रहा था। हवा में घुले संगीत के साथ उसके जहन में एक चेहरा बार बार उभर रहा था, लेकिन उसने खुद को कड़ाई से रोक लिया और अभिनव को निहारने लगी। कितनी समानता है अभिनव और निमिष में, दोनों कम बोलते हैं, दोनों को मेरी परवाह है, काश हम दोस्त बनके रहते।
2: काश उसे मुझसे प्यार न होता। मुझे उसकी कमी कितनी खल रही है, लेकिन निमिष ने मुझसे संवाद की अपनी कोशिश कुछ दिनों में ही बंद कर दी। प्यार तो नहीं ही रहा होगा उसे, शायद बस पसंद हो या बस आदत हो गई हो बात करने की। शायद कल किसी और की आदत हो जाएगी उसे। स्वाति सोच ही रही थी कि अभिनव ने पूछा, अरे सुनो, वो तुम्हारे ड्राइव टाइम कॉल का क्या हाल है? अभिनव ने उससे निमिष का हाल पूछा था, लेकिन उसकी आवाज के साथ ही स्वाति के दिल में कुछ झन्ना के बिखर गया। क्या मैं सिर्फ उसकी ड्राइव टाइम कॉल थी?

इन सब से दूर निमिष ने अपने दिल के शोर को न्यूज रूम के शोर में दबा दिया। अब वो पहले से ज्यादा खामोश, पहले से ज्यादा अकेला था। प्यार का इजहार न करके वो इतना अकेला तब भी नहीं था जब 15 साल पहले स्वाति चली गई थी। उसको ढूंढना, अपने दिल में बुने सपनों में खोए रहना उसका पसंदीदा काम था। फेसबुक पर स्वाति का मिल जाना उसके लिए किसी त्योहार जैसा बड़ा दिन था। वो उसे वर्चुअल दुनिया में देखकर खुश रहता। इन दिनों उसकी हर पोस्ट दसियों बार पढ़ता और उसकी तस्वीरों को अपने फोन के फोल्डर में छुपा के रखना उसके प्रिय शगल थे। निमिष के हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे। उसके चैनल की टीआरपी ने उसे फिर से नंबर वन बना दिया था। न्यूज रूम में जश्न जैसा माहौल था। पूरे साल हर हफ्ते नंबर वन रहना आसान नहीं था, लेकिन निमिष ने यह जीत हासिल की थी। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि निमिष का अधीनस्थ प्रोड्यूसर राकेश उसके पास आया। सर, इस साल आपको यूरोप की कपल ट्रिप के वाउचर मिलने वाले हैं, उसने निमिष को बताया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? निमिष ने ऐसे जताया जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। सर, अंदर की खबर है। आप अपने साथ किसे ले जाएंगे? राकेश ने हिम्मत करके पूछा। क्यों? निमिष ने आंखें उचका के पूछा। सर, मुझे ले चलिएगा ना, इस बार आप किसी को वाउचर दीजिएगा मत। राकेश ने फिर से खुशामद की। तुम क्या मेरे जीवन साथी बनने की फिराक में हो? निमिष ने हंसते हुए उसकी मौज ली। नहीं सर, आप कपल वाले ट्रिप, कॉन्सर्ट टिकट, मूवी और डिनर वाउचर सबको बांट देते हैं। इस बार चलिए ना, साथ चलते हैं। राकेश ने अपनी अर्जी का कारण स्पष्ट किया। जाओ अपना काम करो, निमिष ने उसे ठेल के वापस उसके डेस्क पर भेज दिया। राकेश को उसके 2-3 साथियों ने घेर लिया। अबे तुम क्यों जाओगे? हम जाएंगे, एक ने कहा। अरे भाई, मेरी ना शादी हुई है, मेरा हनीमून हो जाएगा, मुझे और मेरी बीवी को जाने दो, दूसरे ने विनती की। अरे यार, तुम्हारे हनीमून का खर्चा चैनल थोड़ी ना देगा, राकेश ने उसको डपटा। राकेश भाई, तुम उनसे कह दो ना कि तुम्हें गोद ले ले, पहले ने सुझाव दिया। ये सही है, निमिष सर को पापा बना लो, उनके जीवन में नौकरी के सिवा कुछ है भी नहीं, एक रेडीमेड बेटा ही मिल जाएगा। सर सिंगल हैं? नई एंकर नैना ने अचरज से पूछा। तुमको नहीं पता? सब कहते हैं सर अपने जमाने के दिल जले आशिक हैं, शायद प्रेमिका मिली नहीं या मर गई हो, क्या पता, दूसरे ने बताया। कितना गॉसिप करते हो यार, जाओ अपना काम करो सब। राकेश ने अपने डेस्क से भीड़ को भगाया और ग्लास केबिन में काम करते शांत निमिष की ओर देखा और सोचने लगा। कोई कह सकता है कि ये इतने अकेले हैं? शायद तभी पूरा पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, छुट्टी नहीं लेते, घूमने नहीं जाते। बीच में कुछ महीने चेहरे की रंगत बदली थी, खुश रहते थे, अब फिर से पहले जैसे बुत बन गए हैं। कांच की दीवार के उस पार निमिष सोच रहा था कि स्वाति से बात शुरू हुई तो वो खुद नहीं जानता था कि पुरानी भावनाएं उस पर यूं हावी हो जाएंगी। किसी को प्यार से दूर करना कितना आसान था, न जवाब का इंतजार, न रूठने का खौफ। ग्रेजुएशन के 3 साल मिलाकर करीब 18 सालों से उसने स्वाति को चाहा था। इतने सालों में उसने इस तड़प को कभी महसूस नहीं किया था। पिछले 1 महीने से स्वाति से उसकी बात बंद है। स्वाति के पीछे भागते 2 हफ्तों में उसने तिरस्कार को समझा था। वो समझता था कि स्वाति अभिनव से ही प्रेम करती है और उसे अपने बारे में आश्वस्त रखने के लिए ही तो निमिष ने पूजा के नाम का झूठ गढ़ा था। वो स्वाति की जिंदगी में अपनी छोटी सी जगह से खुश था। शायद उसे अपनी आकांक्षाओं का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। काश दोस्ती ही

नहीं रहती, लेकिन पीछे लौटना संभव नहीं था। इसलिए उसने स्वाति से कोई संपर्क न रखने का निश्चय किया और उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया ताकि भूले से भी वो उसकी जिंदगी में झांकने ना जाए।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह, वाचन स्वर जयंत पात्रिकर का, संपादन सहयोग स्नेहल भिसे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
4: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
3: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
5: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 103.7 MHz पर। इस समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

बीत गई जो बातें उन्हें कभी ना रखना पकड़ कर, नरमी रखो व्यवहार में ना रहना कभी अकड़ कर, औरों की बदलने की तुम कोशिश भी ना करना, बदलना पड़े स्वयं को तो बिल्कुल भी ना डरना। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युवाणी, मैं हूँ कंचन रोशन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से। दोस्तों, अपने देश में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के हथकरघा बुनकरों के सम्मान और स्वदेशी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। निश्चित रूप से आज की बहुत सी अलग अलग समस्याओं और मशीनीकरण के इस दौड़ भाग वाले दौर में ये सारी चीज़ें जो हाथ से तैयार होती है, जो हमारे स्वदेशी वस्त्र उद्योग हैं या किसी भी प्रकार के उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देना, उनके लिए जो भी हो सके हमारे द्वारा किया जाना, प्रशासन द्वारा किया जाना, बहुत सी योजनाओं के तहत इस प्रकार के कार्य चल भी रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर हम कहें तो उनकी सफलता भी है, लेकिन

0: वास्तविकता में हम सब युवाओं की आहुति भी इसमें लगनी चाहिए, तभी इनका जो हम यूँ कहते हैं कि जो सक्सेस है वो परसेंटेज बढ़ सकेंगे। इस दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री जी द्वारा 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में की गई थी, उसी समय से इस दिवस को हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ये दिन वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 7 अगस्त को ही हुई थी। इस आंदोलन ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर देश में बने वस्त्रों को अपनाने पर जोर दिया था, और इसी प्रकार से ये आंदोलन चल पड़ा और इतने लोगों के जुड़ने से एक मुहिम बन गई और उसको आज हम इस रूप में देख सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है हथकरघा बुनकर समुदाय की कला को पहचान दिलाना। निश्चित रूप से अगर उनकी कलाएं पहचान पाएगी तो उनका जो डेवलपमेंट होगा, जो उनके परिवार का डेवलपमेंट होगा, वो एक देश के निर्माण के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी अलग ही प्रकार का योगदान सामने आएगा, और उनका जो रोजगार संपन्न बनना है वो उनको बेरोजगारी के दलदल से बाहर भी ले जाएगा। ये क्षेत्र भारत में लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए समर्पित है। हथकरघा से बना कपड़ा पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होता है, तो इसमें जो हमारा नेचर है उसकी भी सुरक्षा शामिल हो जाएगी। दोस्तों, बनारसी साड़ी, कांजीवरम और विभिन्न राज्यों के जो पारंपरिक हाथ से बुने हुए वस्त्र हैं, वो भारत की सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखते हैं। इस प्रकार से जो हमारी संस्कृति है उसको बनाए रखने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से ये अपनी अलग पहचान रखता है, और जो बाहर से आए विदेशी लोग हैं, जो पर्यटन के उद्देश्य से आते हैं, उनके पर्यटन को भी बढ़ाने वाला साबित होता है। इस प्रकार से बहुत से बेनिफिट्स एक हथकरघा उद्योग के अगर हम कहें कि उन्नति, प्रगति और डेवलपमेंट के साथ हमारे देश के लिए जुड़े हैं। ये तो बात हुई हथकरघा दिवस विशेष की, अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।
1: को ऊंचा दर्जा देते हैं, जुदा रहकर प्यार की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। हर प्यार मिलन तो नहीं, जुदाई भी तो एक प्यार है।

0: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, वर्तमान में खादी और हथकरघा यानी कि हैंडलूम के प्रति भारतीय युवाओं का जो आकर्षण है वो निश्चित रूप से तेज़ी से बढ़ रहा है। जो आज की हम सब युवा पीढ़ियां हैं, इसे केवल एक पारंपरिक पोशाक नहीं बल्कि एक फैशन स्टेटमेंट और पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली विकल्प के रूप में भी देख रही हैं, और निश्चित रूप से देखना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है उसकी मांग बदलती है, जैसे जैसे अनुकूलता प्रतिकूलता चलती रहती है। दोस्तों, अब खादी और हैंडलूम सिर्फ कुर्ता पायजामा तक सीमित नहीं है। आज के डिजाइनर्स इसमें आधुनिक जैकेट, क्रॉप टॉप, जंप सूट, शॉर्ट्स और ट्रेंडी ड्रेसेस जैसे भी तैयार कर रहे हैं। युवा खादी के शर्ट को जींस के साथ या हथकरघा की साड़ियों को स्नीकर्स और डेनिम जैकेट के साथ पहनकर नया स्टाइल बना रहे हैं, और इसे ही हम इनोवेशन

या नवाचार भी कह सकते हैं। दोस्तों, आज का युवा पर्यावरण को लेकर संवेदनशील है। खादी और हैंडलूम कपड़े हाथ से बनते हैं, जिससे कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है। केमिकल मुक्त और प्राकृतिक रेशों से बने होने के कारण ये कपड़े गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं, जो युवाओं को आराम देने लायक भी होते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अक्सर एयरपोर्ट लुक या फिर त्योहारों पर खादी और हैंडलूम के कपड़ों में नज़र आते हैं। इंस्टाग्राम और पिंट्रेस्ट पर लोकल फॉर वोकल और सस्टेनेबल फैशन जैसे हैशटैग के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करके भी जो युवा आबादी है वो काफ़ी हद तक अपना ट्रेंड बना पा रही है, और इस प्रकार से जो इसका फैशन है वो चल पड़ा है। खादी के फॉर्मल शर्ट और हैंडलूम के सूट अब कॉरपोरेट ऑफिसों में युवाओं की पहली पसंद बन रहे हैं। ये उन्हें गंभीर और शालीन लुक देता है। कॉलेज जाने वाले छात्र खादी के झोले और हल्के सूती कपड़ों को दैनिक इस्तेमाल में शामिल कर रहे हैं, जिससे भी काफ़ी हद तक एक अलग प्रकार का विकल्प देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सरकार ने खादी स्टोर्स को आधुनिक मॉल जैसा लुक दिया है, जिससे युवा वहां जाना पसंद करें और इस प्रकार से इसकी जो प्रोग्रेस है वो और अधिक हो सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेड इन इंडिया उत्पादों की बढ़ती मांग ने युवाओं के मन में इसके प्रति जो गर्व है उसकी भावना को और अधिक बढ़ाया है। दोस्तों, निश्चित रूप से हमें इस मुहिम में शामिल होना चाहिए और इन्हें आगे बढ़ाने में अब गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। अब यहाँ सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण और युवा, निश्चित रूप से जल को बचाने से लेकर बिजली संरक्षण तक कर्तव्य पालन, अधिकारों की रक्षा सब युवाओं के ही जिम्मे हैं, क्योंकि सबसे हाई एनर्जी का सोर्स हम सब युवाओं में ही हैं। दोस्तों, बचपन से ही हम सब में पानी बचाना, बिजली बचाना, पेड़ लगाना जैसे संस्कारों से ओतप्रोत हमारी जो संस्कृति है वो रही है। यही संस्कार आज वापस प्रकाशमान करने जरूरी है, जिससे कि ना केवल संस्कृति को जीवित रख सकें, अपने जो अमूल्य संसाधन हैं, वन्य जीव हैं, वन्य अभयारण्य हैं, उनको भी संरक्षण करते हुए उनकी सुरक्षा का भी बीड़ा उठा सकें, हम प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रख सकें, नवीकरणीय ऊर्जा को भी आगे बढ़ा सकें, प्रमोट कर सकें, पर्यावरण को इस रूप में बेहतर बना सकते हैं। अधिक से अधिक वृक्षारोपण में युवा भूमिका स्वयं सिद्ध है। दोस्तों, वर्षा जल को संरक्षित करने में भी अलग अलग प्रकार की मुहिम के तहत हमारा योगदान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो कार्य हैं वो हमारी प्रकृति को लेकर हैं, जो हमें वापस निश्चित रूप से लौट कर मिलते हैं। अगर हमारी प्रकृति अच्छी होगी, हमारा नेचर सुरक्षित होगा, उसे हम बचाने में कुछ अपना योगदान दे सकेंगे, तो निश्चित रूप से उसका फायदा, उसका लाभ आने वाले समय में हम सबको ही उठाना है। और आज जो सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से उपलब्ध हैं, वो सब इसी रूप में उपलब्ध रहें, इसके लिए हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो प्रदूषण है, उसके स्तर को बढ़ाने वाले जहाँ हम हैं, तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी भी हम सब की है। प्लास्टिक है, उसको कम से कम यूज़ करके किस प्रकार से उसका विकल्प तैयार किया जा सकता है, इसके बारे में सोचना, इसके बारे में अनुसंधान करना, उसको क्रियान्वित करना, उसको ज़मीनी स्तर पर लाना और इस प्रकार से उसको हम यूँ कहें कि उन्मूलित करना, कि जो उसकी समस्या है वो अलग अलग प्रकार के जीवों से लेकर जो हमारी भूमि है उसमें, पानी है उसमें, उस रूप में ना रहे। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं की भूमिका के बारे में हमारी बातें आगे भी रहेगी। पहले सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे पर्यावरण, उसके संरक्षण को लेकर। युवाओं की गो ग्रीन मुहिम एक ऐसा वैश्विक और राष्ट्रीय जन आंदोलन है जिसका उद्देश्य पृथ्वी को हरा भरा, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना है। इसमें युवा पौधे लगाना, प्लास्टिक हटाना, ऊर्जा बचाना और समाज में जागरूकता फैलाना, इस प्रकार के कार्यों में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, युवा देश भर में पौधे लगाकर और सीड बॉम्ब यानी बीज गोले का उपयोग करके हरित आवरण बढ़ाने में जुटे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकना और उसकी जगह कपड़े या कागज के थैलों का इस्तेमाल बढ़ाना, इस प्रकार की प्लास्टिक के बहिष्कार की मुहिम भी जोरों पर है। कचरे को गीले और सूखे श्रेणियों में अलग-अलग करना और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, जो बहुत ही जरूरी है और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी एक अच्छा कदम। बिजली की जो अनावश्यक खपत है उसको रोकना, वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लोगों को प्रेरित करना, इस प्रकार के कार्यों से ऊर्जा और जल संरक्षण हो पाएगा। दोस्तों, निश्चित रूप से ये सारी मुहिम हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य करके हम वायु और जल प्रदूषण

पोषण के स्तर में सुधार ला सकते हैं। अच्छी हवा में सांस लेने के लिए जो आवश्यक है, शुद्ध हवा और हरियाली से मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता की भी रक्षा होगी। यानी कि ये सारी चीज़ें हमें ही लौट कर मिलनी हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग, जिससे कि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधन सुरक्षित रह सकें, इस प्रकार का कार्य भी अच्छा कार्य हो सकेगा। ये तो बात हुई पर्यावरण और वो ग्रीन मुहिम को लेकर। अब हम यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा इस हफ्ते की। तो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ऑपरेशन सफ़ेद सागर, मुसाफिर कैफे और आदर्श बाल विद्यालय जैसी देशभक्ति, रोमांस और ड्रामा से भरपूर बेहतरीन फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं। दोस्तों, मुसाफिर कैफे 24 जुलाई को रिलीज हुई, जो प्राइम वीडियो पर चल रही है। विक्रांत मैसी की ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म तीन अजनबियों की अनियोजित यात्रा और मुलाकातों पर आधारित है। साथ ही आदर्श बाल विद्यालय 24 जुलाई को ही रिलीज हुई के मेनन अभिनीत ये सीरीज प्राइम वीडियो पर आई, जिसमें एक हेडमास्टर की अनूठी कहानी दिखाई गई है। ऑपरेशन सफ़ेद सागर भी 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसको कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस को दर्शाती है। दोस्तों, ये तो बात हुई हमारे अभी इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म्स की। अब समय हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। आपकी दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

मिले जगत सुन सभी सखियों को, रेडियो सखी डॉक्टर सुनीता का प्यार भरा नमस्कार। सखियों हाजिर हैं लेकर आपका अपना मन भावन कार्यक्रम, और आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं चर्चा से। सखियों आज है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। यह दिन भारत के हथकरघा बुनकर समुदाय के सम्मान, पारंपरिक वस्त्र विरासत के संरक्षण, और ये जो दिन है ये हमने 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ हमारा जो ऐतिहासिक आंदोलन था, जो स्वदेशी आंदोलन के नाम से हम मनाते हैं, इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई विधिवत राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, और हमारे अपने देश में बने हुए जो हाथ से जो करघों से जो हम खादी बनाते थे उस खादी को अपनाने पर जोर दिया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया। ये क्षेत्र जो है ये ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों में आजीविका का भी बहुत बड़ा साधन है। इसमें 70% से अधिक कामगार जो हैं बुनकर हैं वो महिलाएं हैं, और महिला सशक्तिकरण का भी ये बहुत बड़ा स्रोत है। इसके अलावा ये जो कपड़ा हम बनाते हैं ये सुंदर होने के साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहता है। बनारसी, कांजीवरम, पटोला, इक्कत, फुलकारी, टसर सिल्क जैसी हमने जो ये बहनें सब पहनती हैं ये सब हथकरघा से ही बनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो 2026 में हम मना रहे हैं, इस दिन भारतीय हथकरघा उद्योग बुनकरों और स्वदेशी वस्त्र परंपरा का सम्मान किया जाता है, और यह जो दिन है ये आंदोलन स्वदेशी आंदोलन की हमें याद दिलाता ही दिलाता है। पर्यावरण अनुकूल फैशन को बढ़ावा देना ये भी हथकरघा का ही संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके हथकरघा दिवस पर भारतीय बुनकरों की सराहना की और इस खास दिन की शुभकामनाएं भी दी। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इसका जो इतिहास क्या है, इसका थीम क्या है, तो हम चर्चा जारी रखते हैं। हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है, और 2026 को जो थीम रखा हुआ है उसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि देश के जो लाखों बुनकर हैं उनको सम्मान भी देना है, और इसके साथ साथ जो है इसका जो नाम रखा गया है वो वीव्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल तथा हैंडलूम हैकथन 2026 जैसे कार्यक्रम आज के दिन आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के अवसर पर सरकार का जो हमारा मुख्य फोकस है वो यही है कि हथकरघा विरासत की तरफ ध्यान दिया जाए, इसमें नवाचार लाया जाए ताकि नए नए जो वस्त्र हैं, नए जो आजकल के परिधान हैं उनसे वो मेल खाए और टिकाऊ फैशन को बढ़ावा भी मिले। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य भी रहते हैं। इनमें सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि बुनकरों के योगदान को सम्मान देना है, और दूसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि पारंपरिक बुनाई कला को संरक्षण देना है, और तीसरा जो है वो है स्थानीय उत्पाद को भी बढ़ावा देना है। हथकरघा का जितना भी कपड़ा रहता है वो हर जगह का अपना एक अलग रहता है। पूरे भारत में तरह तरह का हमें जो हथकरघा से बुनाया हुआ कपड़ा है वो मिलता है, तो इससे वैरायटी भी मिलती है। ग्रामीण रोजगार और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी इससे मजबूत होती है, और सबसे बड़ी बात जो आज की ज़रूरत है वो है पर्यावरण अनुकूल, और फैशन के अकॉर्डिंग तो हम इसको बना ही सकते हैं। हमारे बुनकर जो हैं वो निरंतर लगे हुए हैं, और वो निरंतर समय के साथ चल के जो है हथकरघा से उत्पादन कपड़ों का कर रहे हैं। युवाओं को भी भारतीय वस्त्र संस्कृति से जोड़ना इसका एक उद्देश्य
रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हथकरघा दिवस मनाना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमें हमारी संस्कृति से भी जोड़े रखता है और नवाचार की तरफ भी हमें बढ़ाता है। इसके साथ साथ जो परंपरागत जो बुनाई है उसको हम आधुनिक तकनीक से भी जोड़ सकते हैं और युवाओं का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है कि वो भी कुछ इस दिशा में काम कर सकते हैं। और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र होने की वजह से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये अनुकूल हैं। तो आज का जो दिन है वो हमारे लाखों बुनकरों के लिए बहुत ही सम्मान का दिन है। आइए अब कराते हैं आपका मनोरंजन और सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखियो, अब हम चर्चा करेंगे उज्ज्वला योजना। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब बात महिलाओं की आती है तो कुकिंग से नाम जुड़ता ही जुड़ता है, और जब गैस कभी हमारे पास नहीं होता है तो हमें बड़ी समस्या होती है। तो इसी संदर्भ में कुछ ऐसे परिवार भी थे जो गैस नहीं खरीद सकते थे, उन्हीं के लिए ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इसकी शुरुआत की गई। और इसका जो उद्देश्य यही रखा गया कि जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनके चेहरों पर भी खुशी हो और उनको जो गैस सिलेंडर है वो सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उनको दिया जाता है। तो ये जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 मई 2016 को हुई थी। हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष इस योजना को चलते हुए हो गए हैं और अभी तक ये योजना चल ही रही है। केंद्र सरकार की इस योजना से गरीब महिलाओं को बहुत ही अच्छी तरह से जो मिट्टी का चूल्हा है, जो धुआं है, उससे आज़ादी मिल रही है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है। इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है, क्योंकि गैस से जो काम बहुत समय में होता है वो तुरंत हो जाता है और बहनों के पास समय होता है और काम करने का। तो इस तरह से ना केवल उनका समय बचा है बल्कि उनके स्वास्थ्य की भी सुरक्षा हुई है, और अब उनकी आंखें धुएं से खराब नहीं होती हैं। तो गरीब परिवार की महिला सदस्य हैं, इनको मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन मुहैया जो है ये मंत्रिमंडल कराता है, और 8,000 करोड़ रुपए की योजना की इसको मंजूरी मिली है। सरकार ने ईंधन के दाम बढ़ने पर मई 2022 में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कम रुपयों में सिलेंडर सब्सिडी भी दी। तो 2023 में इस सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया। तो एक कनेक्शन देना ही नहीं बल्कि कनेक्शन देने के बाद उस गैस के उपयोग में भी जो सरकार है वो ज़रूरतमंदों को जो है वो योगदान दे रही है, और यही है हमारी उज्ज्वला योजना। तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित जो एलपीजी की कीमतों को कम करने का जो निर्णय लिया गया है वो यही इसीलिए लिया गया है कि जो गरीब परिवार हैं उनका तनाव कम हो और उनका कल्याण हो, और इस तरह से जो हैं बहनें हैं वो परेशान ना हो। इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ की अगर हम बात करें तो सबसे पहला लाभ तो यही है कि धुआं के असर से जो मृत्यु दर थी उसमें कमी हुई है, और इस योजना से छोटे बच्चे के स्वास्थ्य की समस्या है वह भी कम हुई है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रारंभ होने से शुद्ध जल के प्रयोग से महिलाओं का स्वास्थ्य भी सुधरा है, और अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के प्रयोग करने वाले वातावरण में जो प्रदूषण होता था वह भी अब नहीं होता है। तो इस योजना से सबसे बड़ा लाभ एक और भी है कि जंगलों की कटाई भी कम हुई है। और आप सब जानते हो सखियों कि आज के समय में वृक्षों की क्या कीमत है। तो वृक्षों की कटाई कम होने से हमारे जो संसाधन हैं वो भी बचे हैं, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी नहीं झेलना पड़ता है, और साथ में जो है पेड़ों को भी हमने बचा लिया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस योजना से लाभ ही लाभ है। आइए कराते हैं आपका फिर से मनोरंजन और सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखियो, अब हम चर्चा करते हैं मॉनसून में हम कैसे रखें अपनी स्किन का ध्यान। जैसे ही मॉनसून आता है हमारी जो त्वचा है वो चिपचिपी हो जाती है, और सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है फंगल इन्फेक्शन की। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो चेहरा है हमें साफ रखना है, और हमें जो है पीएच लेवल हमारी स्किन का है उसको संतुलित रखना है। अगर तेलीय त्वचा है तो हमें पाउडर लगाने से भी बचना है, क्योंकि पाउडर लगाने से रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और जो हमारी समस्या है स्किन की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें भारी क्रीम और ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट की जगह हमें जो है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र को चुनना है, और शरीर में पानी की कमी हमें नहीं होने देनी है। पर्याप्त मात्रा में अगर हम पानी पीते हैं तो इस मौसम में भी हम हमारी स्किन का ध्यान रख सकते हैं। आइए कराते हैं आपका मनोरंजन और सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

क्यों घड़ी की सुइयां कार्यक्रम समाप्ति के समय की ओर इशारा कर रही हैं, तो रेडियो सखी डॉक्टर सुनीता को दीजिए इजाजत। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में आज ये बात कही।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
1: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच टेलीफोन पर पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत और इसराइल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराज

0: जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। सरकार ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। लोकसभा में आज विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत परिषद में स्थायी और अस्थायी श्रेणियों के विस्तार और विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेज वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खातों को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों से एक ही तरह की घटनाएं सामने आई हैं। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वेब बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों की भी घोषणा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार के अरावली के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाकर उल्लेखनीय कार्य किया है। केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोईकोट, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी है। इसके अलावा 4 अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिन्ह चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं चंद फिल्मी नगमे। यह है प्रोग्राम का पहला नगमा। जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाजों में फिल्म का नाम सावन को आने दो।

लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेती बाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए। हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।

लता मंगेशकर और मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिएगा कालूराम प्रजापति का गाया ये लोकगीत।

0: कोहिनूर लंगा और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर का समय अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हथकरघा केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि विकास का एक सशक्त माध्यम। प्रदेश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कई आयोजन। जयपुर में ब्रिक्स देशों के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक का समापन। किसानों और एमएसएमई के हितों को बढ़ावा देने संबंधी कई निर्णयों पर सहमति। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने युवाओं से नशे से दूर रहकर सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मानसून की सक्रियता से वर्षा का दौर जारी। कल झुंझुनू और सीकर में अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। आज नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखने के साथ साथ रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति के प्रति प्रेम को बढ़ावा दिया है।
1: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता

0: सफलता दिखाई देती है। खुद खुदा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बुनकर बरीगा राम को खास किस्म वाली पट्टू साड़ी की उत्कृष्ट शिल्पकला, पारंपरिक बुनाई तकनीक और बेहतरीन डिजाइन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इधर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में बुनकर सेवा केंद्र की ओर से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि हाथ से बने प्रत्येक वस्त्र की अपनी अलग पहचान होती है और उसके प्रत्येक रेशे के साथ एक प्रेरक कहानी जुड़ी होती है। यही कारण है कि आज विश्व के प्रतिष्ठित ब्रांड भी भारतीय बुनकरों के साथ जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में उत्कृष्ट बुनकरों को राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस अवसर पर जयपुर के नेशनल हैंडलूम में पहुंचे और हथकरघा उत्पादों का अवलोकन करते हुए खरीदारी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से वोकल फॉर लोकल के तहत हथकरघा उत्पादों की खरीद करने का आह्वान किया।
2: देखिए, आज हैंडलूम डे है और राजस्थान में हैंडलूम का बहुत बड़ा काम है। हथकरघा के माध्यम से जिस तरह से राजस्थान में काम होता है और राजस्थान का हैंडलूम पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये हैंडलूम राजस्थान के अंदर बहुत सारे जिलों में काम होता है और इसकी मांग बहुत अत्यधिक रहती है और ये देश और दुनिया में सभी जगह जाता है। और मैं आज राजस्थान के सभी जन से कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में वोकल फॉर लोकल जो हमारे प्रोडक्ट हैं, निश्चित रूप से उसको अपनाने का काम करेंगे।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत आज जयपुर में 16वीं ब्रिक्स वाणिज्य मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के व्यापार मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। बैठक में बदलती वैश्विक व्यापार व्यवस्था, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत बनाने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को अधिक लचीला बनाने, एमएसएमई के अंतर्राष्ट्रीयकरण, व्यापार वित्त तक उनकी पहुंच बढ़ाने तथा डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए विकासोन्मुख, नियम आधारित और सर्वसम्मति पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। साथ ही खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक भंडारण से जुड़े विकासशील देशों के हितों की रक्षा पर भी जोर दिया गया। बैठक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि किसानों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के हितों को बढ़ावा देने वाले कई निर्णय रहे। बैठक में ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति 2030 को भी अंतिम रूप दिया गया। इस रणनीति को सितंबर 2026 में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतम राम मांझी ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के भुगतान में होने वाली देरी को दूर करना और विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में अब से कुछ देर पहले राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन बैठकों में किए गए फैसलों की जानकारी मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया है। श्री बागड़े आज बांसवाड़ा जिले के गोविंदगुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी

0: गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है और केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं से शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़कर समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इससे पहले राज्यपाल ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग की ओर से कोटपुतली बहरोड के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में 154 युवाओं को प्राथमिक स्तर पर रोजगार के लिए चयन किया गया। उधर हनुमानगढ़ जिला प्रशासन और उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय की ओर से 14 अगस्त को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित होने वाले मेले में 30 से अधिक प्रतिष्ठित निजी कंपनियां भाग लेंगी, जो इच्छुक युवाओं को रोजगार के अवसर देगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशाल यादव ने मेले में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए QR कोड जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को जयपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। अभियान के प्रदेश संयोजक और भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर मिथिलेश गौतम ने बताया कि तिरंगा यात्रा सुबह 9 बजे अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर बड़ी चौपड़ तक जाएगी। तिरंगा यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल होंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे 9 से 17 अगस्त तक सभी मंडलों, कार्यशालाओं, स्टेशनों और रेलवे प्रतिष्ठानों में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित करेगा। अभियान के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के ज्यादातर भागों में आज भी मौसम सक्रिय रहने से कई इलाकों में भारी वर्षा दर्ज की गई। भरतपुर और जयपुर संभागों में कहीं कहीं तेज वर्षा हुई, वहीं कोटा, अजमेर और बीकानेर संभागों में मध्यम से हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। राजधानी जयपुर में दिनभर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। सवाईमाधोपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, टोंक, चूरू सहित कई जिलों में मध्यम से तेज बरसात हुई। डीग से हमारी संवाददाता ने बताया कि जिले में भारी वर्षा के चलते जलभराव की स्थिति पैदा हुई है।
1: डीग जिले में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली है। साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि इस बार की अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही कई निचले स्थानों पर जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है, जिसे लेकर जिला प्रशासन तत्परता से कार्य कर रहा है। पहाड़ी कस्बे और उसके आसपास के कई इलाकों के लिए सिविल डिफेंस टीम को सक्रिय रखा जा रहा है, साथ ही डिजास्टर क्विक रिस्पॉन्स टीम भी स्थापित की गई है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी।
0: मौसम विभाग ने कल झुंझुनू और सीकर में अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कई अन्य जिलों के लिए भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक राज्य के पूर्वी इलाकों में मॉनसून सक्रिय बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली अरुंधति चौधरी का कोटा पहुंचने पर स्वागत किया गया। स्वर्ण पदक विजेता ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों में अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि से प्रदेश में बेटियों के प्रति लोगों का नजरिया बदलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हथकरघा केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि विकास का एक सशक्त माध्यम। प्रदेश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कई आयोजन। जयपुर में ब्रिक्स देशों के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक का समापन। किसानों और MSME के हितों को बढ़ावा देने संबंधी कई निर्णयों पर सहमति। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने युवाओं से नशे से दूर रहकर सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मॉनसून की सक्रियता से वर्षा का दौर जारी। कल झुंझुनू और सीकर में अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख गौरव शर्मा ने तैयार किया है। प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने

0: जुलाई महीने में धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मनिया कस्बे का दौरा किया। फूलपुर स्टेडियम में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने लगभग 176 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें बिजली, चिकित्सा, खेल और पार्वती बांध से जुड़े काम शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले भर में गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर संतों, महंतों और गुरुओं का सम्मान किया गया। तीर्थराज मचकुंड में विशेष धार्मिक आयोजन और भंडारों का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर गुरु शिष्य परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिले में मन दर्पण 2 अभियान शुरू किया गया है। अभियान के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और आत्महत्या रोकथाम के लिए 5 विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर की 4 बालिका कैडेट्स ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित अखिल भारतीय बालिका राष्ट्रीय एकता एवं ट्रैकिंग शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय की टीम ने 11 में से 9 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। कैडेट्स ने कई कठिन हिमालयी ट्रैक सफलतापूर्वक पूरे किए। चंबल नदी के कटरा घाट पर इन दिनों नन्हे घड़ियाल प्रकृति प्रेमियों का आकर्षण बने हुए हैं। हालांकि अंडों से निकलने के बाद मॉनसून के दौरान चंबल नदी का तेज बहाव इनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश घड़ियाल शावक मॉनसून की पहली तेज बरसात में ही बह जाते हैं। उधर मचकुंड क्षेत्र के लोंगपुर पहाड़ पर पैंथर की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसके बाद वन विभाग ने निगरानी चौकी स्थापित की है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में जिले में मॉनसून की पहली अच्छी बारिश दर्ज की गई। धौलपुर शहर में लगभग 45 मिलीमीटर और जिले में औसतन 70 मिलीमीटर बरसात हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली और किसानों ने खरीफ फसलों के लिए इसे लाभदायक बताया। जिले में इन दिनों ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों के फॉलो अप शिविर लगाए गए हैं। इससे पहले लगाए गए ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा जिला कलेक्ट्रेट में की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और आमजन को दिए जा रहे लाभों की समीक्षा की गई और शिविरों के प्रभावी संचालन पर जोर दिया गया। राजस्थान समान नागरिक संहिता समिति की ओर से भरतपुर में संभाग स्तरीय जनसुनवाई में धौलपुर जिले के जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने समिति के सामने अपने कई सुझाव रखे। आगरा रेल मंडल की मेरी सहेली योजना के तहत अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले 3 महीनों में इस योजना के माध्यम से लगभग 64,800 महिला यात्रियों को सहायता प्रदान की गई। चंबल नदी में अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए केंद्रीय अधिकारिता प्राप्त समिति ने धौलपुर और मुरैना क्षेत्र की निगरानी चौकियों का निरीक्षण किया। समिति ने निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए हाई रेंज CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे अभियान के तहत विद्यालयों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें विद्यार्थियों को तंबाकू, शराब और अन्य मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बालिका जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला तसीमो के फुटबॉल ग्राउंड पर खेला गया। फाइनल मुकाबला धौलपुर और उदयपुर के बीच हुआ। धौलपुर ने पेनल्टी शूट के बाद मिले सडन डेथ में 1-0 से उदयपुर को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो हथकरघा केवल काम धंधा रो साधन नहीं है बल्कि विकास रो मजबूत जरियो है। प्रदेश में आई राष्ट्रीय हथकरघा दिवस रे मौके के आयोजन। जयपुर माए ब्रिक्स देशारा वाणिज्य मंत्रियां री मीटिंग पूरी भी किसाना और एमएसएमई रा भला ने बढ़ावो देवणु जुड़िया कई फैसला माथे सहमति। राज्यपाल हरिभाव बागड़े नौजवानों नशाओं दूर रहर सकारात्मक जिंदगी जीवन बाबत कहो और प्रदेश का घनखर हल्का माए चौमासा री चोखी बिरखा काल झुंझुनू और सीकर माए घनी जोरदार बारिश सारू चेताई चियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो है कि हथकरघा हलको केवल कमाई रो जरियो नहीं है बल्कि सगला रा विकास रो मजबूत माध्यम है। वे आज नई दिल्ली में राखी जिया 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कार्यक्रम में बोल रही हैं। राष्ट्रपति कहो कि हजारा बरसाओं हथकरघो भारत री संस्कृति और सभ्यता रो अटूट हिस्सो रहो है। वे कहो कि ओ हलको देश री समृद्ध विरासत न हेर राखण सागे नौकरी धंधा महिलावां ने मजबूत बनावण कला संस्कृति और कुदरतों प्रेम नई बधावो दिनो है।
2: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
1: कार्यक्रम में राष्ट्रपति साल 2025 रा संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार देर कारीगरा ने नवाजा। बाड़मेर जिला रा बुनकर बरीगा राम नई खास किस्म वाली पट्टू साड़ी री बेहतरीन बुनाई और डिजाइन सारू राष्ट्रीय पुरस्कार देर नवाजी चियो। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस रे मौके बुनकर सेवा केंद्र री ओर राज्य स्तर रो कार्यक्रम जयपुर रा जवाहर कला केंद्र माए राखी चियो। इन माए उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ कहो के हाथ री कारीगरी बनाई जा हर कपड़ा री न्यारी पहचान वे है। वे बेहतरीन काम करण वाला बुनकरा ने राज्य स्तर रा बुनकर पुरस्कार देर नवाजा। ई मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा नेशनल हैंडलूम माए हथकरघा माथे बनाई जा कपड़ा ने निरख्या और खरीददारी कीनी। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका वे जनताओं वोकल फॉर लोकल रातेत हथकरघा रे जरिए बनाई जा सामान री खरीदी री अरज कीनी।
3: देखिए आज हैंडलूम डे है और राजस्थान में हैंडलूम का बहुत बड़ा काम है। हथकरघा के माध्यम से जिस तरह से राजस्थान में काम होता है और राजस्थान का हैंडलूम पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये हैंडलूम राजस्थान के अंदर बहुत सारे जिलों में काम होता है और इसकी मांग बहुत अत्यधिक रहती है और ये देश और दुनिया में सभी जगह जाता है। और मैं आज राजस्थान के सभी जन से कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में वोकल फॉर लोकल जो हमारे प्रोडक्ट हैं निश्चित रूप से उसको अपनाने का काम करेंगे।
1: ब्रिक्स देशां री भारत री सदारत माए वेवण वाली मीटिंग उ पहली आ देशां रा वाणिज्य मंत्रियां री 16वीं मीटिंग आज जयपुर माए पूरी थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल री सदारत माए वी मीटिंग माए ब्रिक्स सदस्य देशां रा व्यापार मंत्रियां और प्रतिनिधिमंडल दुनिया री बदलती कारोबारी व्यवस्था बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली ने मजबूत बनावण वैश्विक मूल्य श्रृंखला ने बत्ती लचीली बनावण एमएसएमई इकाइयां ने दुनिया रो बाजार मुहैया करावण व्यापार वित्त ताई वारी पहुंच और डिजिटल सेवावां ने बढ़ावो देवण सरीखा खास मुद्दा माथे चर्चा कीनी। मीटिंग माए विश्व व्यापार संगठन ने केंद्र माए राखता थका विकास वाली नियम आधारित और सगणा ने एक राय माथे आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली री प्रतिबद्धता दोहराई ची। मीटिंग री खास उपलब्धि किसाना और एमएसएमई कारोबारियां रा भला ने बधावो देवन वाला फैसला रही। मीटिंग माए एमएसएमई सारू व्यापार वित्त ने आसान बनावण वैश्विक मूल्य श्रृंखला माए मदद बधावण कारोबार नु जुड़िया कागजात ने डिजिटल बनावण और सरहद पार डिजिटल सेवावां ने बधावो देवण जुड़ी कार्य योजनावां ने मंजूरी दी री जी। इस आगे ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति 2030 नई अंतिम रूप दियो चियो जिन्हें आवता महीना नई दिल्ली माए फेवन वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन माए नेतावारी मंजूरी सारू पेश करी चावेला। संसद सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल 2026 पास करती नो है। ओ बिल राज्यसभा सोमवार न पास करती नो हो। लोकसभा री कार्रवाई एक बार टण्या पाछे पाछे शुरू है ताई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ओ बिल पेश की नो। इनरो मकसद एमएसएमई इकाइया ने चुकारा माए मोड़ो भेवण ने दूर करनो और झगड़ा ना निपटारा रा काम ने आसान बनावनो है। आज जयपुर माए राज्य मंत्रिमंडल री मीटिंग भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा री सदारत माए भी मीटिंग माए के खास फैसला करी चिया। आ फैसला री जानकारी मंत्रिमंडल रा सदस्य खबर नवीसा ने देवेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े नौजवानों नशाओं दूर रहर स्वस्थ और सकारात्मक जिंदगी जीवन बाबत कहो है। वह आज बांसवाड़ा जिला रा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय माए राखी जी राष्ट्रीय संगोष्ठी माए बोल रहा है। श्री बागड़े खास तौर जनजातीय हलका रा नौजवानों बनाई लिखाई खेल और रचनात्मक कामाओं जोड़र समाज और देश बनावन रा काम माए योगदान देवन बाबत कहो। इनु पहली राज्यपाल जिला कलेक्टर एसपी और दूजा अहलकारा सागे मीटिंग की नी। वह नशा मुक्ति टीबी री बीमारी खत्म करण और विकास और जनता रा भलाऊं जुड़िया मुद्दा माथे चर्चा की नी। इनु पहली राज्यपाल सर्किट हाउस माए एक पेड़ माँ के नाम अभियान रा तहत पौधा रोपया। भारतीय जनता पार्टी कानून चलाई चिया हर घर तिरंगा अभियान राते जयपुर माए ई दीतवार ने तिरंगा यात्रा निकाली जावेला। अभियान रा प्रदेश संयोजक और भाजपा रा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर मिथिलेश गौतम बतायो कि तिरंगा यात्रा समारे 9 बजे ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल बड़ी चौपड़ ताई निकाली जावेला। तिरंगा यात्रा माए भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत जनता रा नुमाइंदा और जनता शामिल फैला। उत्तर पश्चिम रेलवे री ओर 9-17 अगस्त ताई सगला मंडला टेसना और रेलवे रा प्रतिष्ठाना माए हर घर तिरंगा कार्यक्रम रख्या जावेला। अरब मौसम प्रदेश रा घनखर हलका माए आज ही चोखो में बरसियो। भरतपुर और जयपुर संभाग माए कठे कठे तेज बारिश हुई। कोटा अजमेर और बीकानेर संभाग माए हल्की बारिश दर्ज करी ची। राजधानी जयपुर माए आखा दिन रिमझिम बारिश चलती रही। सवाई माधोपुर दौसा भरतपुर अलवर टोंक और चूरू समेत कई जिला माए बरसात रा समाचार है। माणी डीग खबर नवीस बतायो कि जिला माए फिया चोखा में कई ठोणा पानी भर गयो।
4: डीग जिले में इन दिनों भारी बारिश हो रही है जिससे मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली है। साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं क्योंकि इस बार की अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही कई निचले स्थानों पर जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है जिसे लेकर जिला प्रशासन तत्परता से कार्य कर रहा है। पहाड़ी कस्बे और उसके आसपास के कई इलाकों के लिए सिविल डिफेंस टीम को सक्रिय रखा जा रहा है। साथ ही डिजास्टर क्विक रिस्पॉन्स टीम भी स्थापित की गई है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी।
1: मौसम विभाग काल झुंझुनू और सीकर माए जोरदार बिरखा वेवन सारू चेतायो है जबकि दूजा जिला सारू भारी बारिश रो अनुमान है। महकमा रे मुजब आवता एक सप्ताह ताई राज्य रा उगनी हलका माए चौमासारी बिरखा चालती रहवन रा आसार है। लाडला दिना पूरा फिया राष्ट्रमंडल खेला री मुक्केबाजी होड़ माए भारत ने सोना रो तमगो दिरावन वाली अरुंधति चौधरी रो वाना शहर कोटा पुगण पर जोरदार स्वागत करी चियो। अरुंधति दूरदर्शन सागे बातचीत करता थका कहो के एक बेटी रे सोनारो तमगो जीतनु महिलावां रा मान नु जुड़ी सोच बदल रही है।
5: मुझे ये था कि पहला कॉमनवेल्थ है मेरा और मैं पहला ही गोल्ड लेकर आऊंगी और मेरी 3 फाइट हुई। तीनों ओपोनेंट मेरी बहुत अच्छी थी। 2 मेरे लिए थोड़ी टफ रही क्योंकि वो मेरे गेम के ऑपोजिट थी तो उनसे खेलना मेरे लिए एक चैलेंज रहा। लेकिन जो फाइनल बाउट जिनसे हुई इंग्लैंड से उनका गेम काफी टेक्निकल था और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ खेल के। राजस्थान के लिए ऐसा बोला जाता है कि यहाँ लड़कियों पे बंदिश है पर अगर आप देखेंगे कि पिछले 2 दिन से जयपुर से कोटा तक का जो मेरा सफर था उसमें एक लड़की के मेडल का ही जश्न मनाया जा रहा था तो मुझे खुशी है कि लोगों की सोच बदल रही है और गेम्स को भी इम्पोर्टेंस मिल रही है।
1: चूरू माए आज स्कूल बसारी औचक जांच करी ची। इन दौरान स्कूल बसा

0: इणु सीकर अर आर एस आर हलकान जनता ने आधार नामांकन समेत बायोमेट्रिक अपडेट सेवा एक ही ठौर मिल सकेला। कोटपुतली बहरोड री सरकारी आईटीआई में कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग री ओर रोजगार मेलो लगाइचियो। मेला में 154 नौजवानों ने नौकरी रा प्रस्ताव तियाचिया। हनुमानगढ़ में जिला प्रशासन और उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय री ओर 14 अगस्त ने रोजगार मेलो लगायो जावेला। राजीव गांधी स्टेडियम में रखा जावन वाला ई मेला में 30-32 कंपनियां नौजवानों ने नौकरी रा मौका देवेला। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव मेला में ऑनलाइन पंजीकरण सारू क्यूआर कोड जारी कीनो है। भारत आवता साल पहला ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव री मेजबानी करेला। आज मुंबई में ब्रिक्स वेव्स बाजार रे दौरान इनो ऐलान करीचियो। फिल्म और मनोरंजन हलका में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने मजबूत बनावन रा मकसद कई करार रोई ऐलान करीचियो। आखिर में खास समाचार एक फेर सुन ली रहो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो हथकरघा केवल काम धंधा रो साधन नहीं है बल्कि विकास रो मजबूत जरियो है। प्रदेश में आई राष्ट्रीय हथकरघा दिवस रे मौके कई आयोजन। जयपुर में ब्रिक्स देशाना वाणिज्य मंत्रियों ने मीटिंग पूरी हुई। किसाना और एमएसएमई रा भला ने बधावो देवणु जुड़िया कई फैसला माथे सहमति। राज्यपाल हरिभाव बागड़े नौजवानों नशाओं दूर रह सकारात्मक जिंदगी जीवन बाबत कहो। और प्रदेश रा घणखर हलका माए चौमासा री चोखी बिरखा काल झुंझुनू और सीकर माए घनी जोरदार बारिश सारू चेताईचियो। ऐसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के ठीक 7 बजे हैं। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कोई भी जगह अपन फायदो जरूर मिल जाए। जी हम बात फसलां रही जिन टाइम गहूँ बावा भी टाइम बांगसा चीणा पायदा खेती है खेती खाता तो देखो गायें पाल लें गाय नहीं तो मुर्गियाँ पाल लें अड़ो जो काम कर ला तो आपने जो जो हरदम जो घाटो लागे कि भी एक फसल अब की वीक होनी बा वो घाटो अपन नहीं लागे को घणकरा लाभ मिलवा खेती रहा है वो मोटी बात है कि जोखम कम रहे। जे एक फसल बरसातों खराब हो जाए या कीड़ा है जगह खराब कर दे खा जाए तो दूजी फसल है भी आमदनी हो जाए और आमदनी यूँ है जी पूरे साल रहे साल इं रहे भाई जिया जिन टाइम आप मान लो गेहूं की फसल पावा या आप रायड़ो पावा जीरो पावा हमार जी आप बाजरी पावा जवार पावा कोई भी मान लो मूंग मोट पावा तो ए तो मैं 2-4 महीना में अपन ठीक है आमदनी मिले। सब्जी है सब्जी हर 2 महीना में आमदनी दूध जे आप पशुपालन करियो दूध जो रोजिना की कमाई देवे तो किसान भाइया ने पैसा की कोई दिक्कत को ना रोजिना रोजिना आमदनी वे बोकरे एको फायदो एक फायदो है जकी माटी है बीनी उर्वरता है जकी बनी रहे बी दलहन की फसल माए जी चीणा है मूंग है ये माटी के मायने ए है जगह नाइट्रोजन बढ़ावे और गोबर की खाद भी मिल जाए रासायनिक खाद है जकी कम लागे तो वो फायदो हो जाए और कीड़ा बीमारियां है जकी भी मिलवा खेती के मायने कम लागे कमियाँ लागे एक ही फसल बार बार जे अपन लगावा तो कीड़ा है जगह बदन रुक जाए जे अपन मिलवा खेती कर लिया नहीं तो बे है जगह कीड़ा है जगह थालचूक हो जाए कि कणी तो आ भावे कणी आ भावे की खावा की नहीं खावा बे है जगह गैला उजू हो जाए तो है जो ओ फायदो है और मजदूर और संसाधन रो सही है जो उपयोग हो जी इं हो जी कि खेत है जो खाली कौन रहे खाली नहीं रही परिवार का हगड़ा लोग है पूरे साल जगह काम में लगे उड़ रही काम में लगे उड़ रहे तो हमारा शरीर भी निरोग रही और आमदनी भी रही। अब है जे आप पशुपालन कर रही हैं खेती बाड़ी कर रही हैं तो पशुओं के वास्ते चारों है जो पूरे साल मिल जाए हम हर दम है जो चारों ले सका दूध है जो मिल जी फसल दूध फसल दोनों मिल जाए तो दोनों अपन आमदनी मिल जावे। और भी देखो खाउन के मायने आप भात मात्री चीज़ा जे घर के माए अनाज ले लियो दाणा ले ली सब्जी आएगी दूध आएगो आप बाजार है जो अपन कम जाऊन पड़ी और हेंगो मोटी बात है अपने रिपिया टकारी आर्थिक सुरक्षा जिकी के दा बाजार के मायने कोई एक फसल को भाव जी गिर जाए कम हो जाए कि भाई अबकी मूंग तो जगह कम हुआ तो मोटा को भाव आ जाए मोट के कम हुए तो क्या बाजरी छोकी तिल छोका भी आ तो बारो भाव है जगह छोका है तो आप नुकसान की जगह भरपाई है जगह वह कर सका तो ए अगली चीज़ा जो कि आप ध्यान में रख ला नहीं तो ये अपने फायदो मिलेगा। और सरकार है जो कि आप घणकरी योजनावा चलावे खेती बाड़ी जुड़ियोड़ी पशुपालन जुड़ियोड़ी तो एक योजना जो कि राजस्थान सरकार चला रही है कृषि यंत्र अनुदान योजना तो इनके मायने कहीं आराम कोई भी जो भी अपन खेती बाड़ी रे मायने ट्रैक्टर के लारे जूतन वाला जका भी साधन के दो जका भी आप औजार के दो बे जका बे वास्ते अनुदान देवे सरकार। अब आधुनिक कृषि यंत्र जका है बमन दो 40-50% तक सब्सिडी है सरकार दे रही है अब अनुदान मिल गो। अब वो किन मिले जगह SC ST का लघु सीमांत किसान है या महिला किसान है नहीं बाने तो लागत को घणो घणो 50% मिले दूजा जगह किसान है बाने लागत को घणो घणो 40%। अब किस यंत्र है जका माता पा अनुदान ले सका ट्रैक्टर के लारे जगह जोतन वाला जिया रोटावेटर है कल्टीवेटर है सीड ड्रिल है मल्टी क्रॉप थ्रेसर है रिपर है हैप्पी सीडर है सुपर सीडर है लेजर लैंड लेवलर है पावर टिलर है स्प्रेयर है आ यंत्र माते जो अनुदान मिल जी। अब बात आवे कि भाई आप यंत्र लेवा तो इनकी पात्रता कहीं भी कोई भी फार्म भरे जन कहें फौज पुलिस में 10वीं 12वीं पास होनो तो इनकी वास्ते पात्रता आ है कि खुद की ये जी जमीन होनी चाहिए और राजस्व रिकॉर्ड के मायने ना होनो चाहिए और ट्रैक्टर वाला यंत्र के वास्ते ट्रैक्टर की RC आप ना होनी जरूरी है जन आधार है आधार लिंक होनो बैंक खाता हूँ मोबाइल नंबर जरूरी है और माटी को जो कार्ड बढ़िया करे मृदा स्वास्थ्य कार्ड वो भी मांगी जा करे 3 साल के माने एक ही बार एक प्रकार को आप यंत्र अनुदान ले सका। लघु सीमांत किसान ने जन आधार में श्रेणी है जगह दर्ज करवानी भी जरूरी है। अब आवेदन किया कहीं करा तो राज किसान साथी पोर्टल भी ऑनलाइन आवेदन वे नज़दीक जो भी आप ई मित्र है भी जा रहा ऑनलाइन करो दस्तावेज बात करो जन आधार कार्ड है जमा मंदी की नकल है ट्रैक्टर की RC है और किस यंत्र माते आप ले तो कोटेशन कच्चो बिल बैंक की पासबुक वगैरह ए अगला ले जावा तो आपने जो कि ओ अनुदान है जो को मिल जाए। खास बात आ है योजना में पहले पाओगा दर पर और खेती में लागत ने कम करना और समय ने बचाना उत्पादन बढ़ाना आई है जो कि सरकार की मंशा है तो आप खेती बड़ी के साथ साथ वो अनुदान भी ले सका। बाकी री बात भी सुना एक दो और सुन ला दूजी काम री बात।
1: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: तो भैया नित नो गाँव तरह कर हर गाँव तरह मायने भाई बहन मिले और जका खेती कर रही है, दाव दना ने जका पाल रहा है, वे किन तरह कर रही है, वह शू फायदो मिल रहा है या कई तरह की समस्या जकी आ रही है, वे भी आप तई पूर्ति करा। तो आज कठिन कहीं गया और किन सु वी बंतल लौसा सुनो। भैया नित नुई जानकारी लेर चौपाल माते हाजिर वहां नुआ नुआ गाँव त्रो कर हार भाई मिले और बंतल करा। आज देखो जो को गाँव त्रो करियो, हाँ उनमें देखा तो बादरी बैडी हेर फवारा चाल रिया है और एक भाई रुखाली कर रिया है, भाई जी काम काज कर रिया है। करा बंतल, राम राम सा।
3: राम राम सा, राम राम सा।
0: शुभ नाम आपको?
3: जगदीश।
0: जगदीश जी के गाँव री कांकड़?
3: मुंडवाई कांकड़े सा।
0: मुंडवा की कांकड़े। तो जगदीश जी पचे ट्यूबवेल माती रो?
3: नहीं, गम में रेवा आनो जानो करा सा।
0: अच्छा, रेवो तो गम में?
3: रेवा गम में।
0: अच्छा, अटे जी की ट्यूबवेल है?
3: हां, ट्यूबवेल है। शाम को पाचा जाओ मामा गेरवा टाबर बे घर में गराला और गमी रेवे।
0: अच्छा, तो थे पज रुकाली वास्ते पाचाओ?
3: रुकाली वास आनो पड़े सा।
0: तो कहीं अबार कहीं बाय राखियो?
3: अबार बाजरी जुवार बैडी सा।
0: अच्छा, कत्ता बीघा खेत है?
3: आमने 10-12 बीघा खेत है। 12 बीघा
0: में आधा आधा में बाजरी?
3: हां, आधा बाजरी और आधा ज्वार है।
0: बाजरी ज्वार दिखे छोकी है?
3: हां दिखे ठीक है, पर बरसात को नहीं हाल।
0: कम है बरसात?
3: हां बरसात बिल्कुल कम है, बरसात नहीं अब।
0: भाई मन फसल तो ना भांतरी
3: फसल तो ट्यूबवेल को पानी पीणो है सा।
0: अच्छा, ट्यूबवेल लो पानी पाओ जो
3: ट्यूबवेल को फुवारा चलाए जन वा।
0: अच्छा, 30 है जे की
3: मीडिया अपन बाबा है, पालर पानी की होड नहीं करे सा, बरसात का पानी की होड नहीं करे।
0: तो कत्ता दिन पहली बरसात हुई जगदीश जी? घना दिन का बरसात ने?
3: 10-15 दिन हुआ सा बरसात ने।
0: तो जन 30 करन लागी?
3: 25-30 करन लागी।
0: तो जन है देखो आज फुहारा चला जाओ?
3: फुहारा पाचा चल रहा हूँ, मादे का देखा थोड़ा थोड़ा चला आई जो 30 तो मीठे एकर की।
0: तो ओ ट्यूबवेल वाला पानी केड़ो कहीं?
3: ट्यूबवेल वाला मीठो है सा पानी आपने तो।
0: ठीक है।
3: हाँ ठीक है, बढ़िया है।
0: कत्ता साल लिया ट्यूबवेल कराए?
3: ट्यूबवेल कराए हुएगा माने 10-11 साल सा।
0: 10 साल में पानी की नीचो गियो?
3: हाँ पानी नीचो गियो सा।
0: पहली कत्ता फुट मा तो?
3: पहली तो जान मांगे 450 माते 500 मात चालती।
0: ठीक है,
3: अब 600-700 माते लोर है।
0: तो कई जगह 600-700 मात खारो आज हो था कौन?
3: मांगे खारो कौन है? एलन कहे गए कि मांगे आवी है सा जान, कोई कोई के मांगे जान आ पहली खुजड़ी है 2016-17 में। इमे मांगाड़ी में हाल खारो पानी कोनी। एक बार दूसरी खुदाई बिंग महीने फीको पानी है, मीठो तो कोनी बने खारो ही कोनी, फीको पानी है।
0: भाई किस्मत हारो है?
3: किस्मत हारो भाई, बीती खुजड़ी और भाई बीती है।
0: कई जगह खारो है?
3: कई जगह खा रहे
0: तो और दो ही फसल बैठी है, दूसरी कांकड़ में दूसरी और फसल भी।
3: हाँ और गुआर लोग सबको बैठा है, मूंग है, गुआर है।
0: तो अब की चौमा से हाव है जो किसी फसल को लागे?
3: तो अब तो बाजरी को ऐसा ज्यादा
0: लगे तो बढ़िया चाउर में था खेत के देखा तो
3: बाजरी बहुत बढ़िया है आपकी बार।
0: बाजरी बाजरी देखे कत्ता महीना की होगी बाजरी?
3: 2 महीना की होगी सर।
0: 2 महीना की?
3: 2-2.5 महीना। यहाँ
0: तो अब और कितो टाइम ले?
3: अब देख लो थे ई महीना के महीने सिंटिया काट दे, बरसात उजे ना आजकल में तो 15-20 दिन महीने हिंटे हिंटिया निकल जे। बरसात माते ऐसा खेल हकड़ो?
0: बरसात माते
3: बरसात नहीं हूँ जनवा छिदी मारी हिंटी काटो बनी पूरी बाजरी हिंटी नहीं काटे।
0: तो जगदीश जी पते ओ बनाएडो नाडो आडो?
3: हाँ वो तो बनाएडो ने सा।
0: तो यूं कहीं आपा के देखो सरकार जितनी भी आवे घनी घनी योजना चलावे कई बात कहवे, तो मोदी जी कहो भाई बरसात को पानी है जो भेड़ो करा जन ठीक रहे।
3: हाँ क्यों
0: थे की करो?
3: हाँ माई करा सा जान डिग्गी बनाई आमने।
0: ठीक है,
3: आमने तो सब्सिडी वाली कोने, आमने घरा घर बनाई है।
0: ठीक है,
3: 60x60 की है
0: जो
3: बरसात को पानी भेड़ो कर लिया।
0: पानी
3: आनी तो खराब कौन करा
0: कौन करो बिल्कुल
3: बिल्कुल ही कौन करा
0: पूरा काम मिलो
3: पूरा काम मिलो
0: तो डिगी हमारे तो पचा ट्यूबवेल चलती दी के
3: ट्यूबवेल चल बरसात पूरी भरी है कोनी पाजो बरसात को ज्यादा पानी इकट्ठो जी जन एक महीना गाल दिया हिंसा फसल खेच ले
0: बरसात हुए थे पचा पचा आंगल सो सो आंगल या गड़ी दो गड़ी जना भरी जाए
3: तो देखो हमने तो छोटी कही गया फूल मोटी है जान मैंने पूरा खेत भर तो पानी
0: बरसात भरी जे तो पचे बाजरी जुआर में घणो पानी
3: हाँ पानी घणो बनी पचे ज्यान ज्यादा पानी उची उठा डिगी में गाल दे मोटी बाजरी देखो पांच पांच छह छह फूट है तो पानी खेच ले
0: पानी खेच ले और बरसात आप भरी जी पचे बाजरी के बाद में की और सब्जियां या दूजी की फसल
3: जीरा और मेथी और बे लगावा सा सियालो फसल
0: तो भी मैं तो आ फसल पचे ओ पानी काम आजे भी
3: हां काम आजे पानी बरसात वालो पानी और पाचो मिक्स जुड़ो चाल बोकर
0: अच्छा मिक्स जुड़ो पाचो की ट्यूबवेल कोई गालो
3: की ट्यूबवेल को की पालर पानी हो डिगी भरी रहना और कहया गया जान पूरी डिगी भरी जुड़ रहे पालर पानी की ट्यूबवेल नहीं है तो बे भी जीरा और भावी है बहुत ज्यादा जमी पी है
0: जमी ज्यादा पिए घणो पानी भेड़ो वे
3: सो भाई सो की डिगी हो ना जकी थे देख लो दस पंद्रह बीघा ने जीरो पाई देवे
0: तो कुल मिलार भाई बरसात को पानी है तो खराब कौन हो
3: खराब कौन जैसे गाल दिया पाचो डिगी में गाल दिया
0: तो थकाल जी दूजा था के पड़ोसी है या घर का जगह पड़ोसी है वे भी बरसात को पानी भरो कर
3: हां सब ओदम गांव के मैंने ओदम में गाल ही है ओद के मैंने गाल है अट जान हारे ट्यूबवेल है जो कोई डिगी में गाल ले हां
0: हां
3: ओ बा डिगी बनवाई है जो डिगी में गाल है
0: अच्छा
3: डिगी में गाल है जगह नहीं डिगी है जगह बाबा थोड़ी बहुत फसल ही गल जी वो पानी पड़ो रहे
0: डिकी नहीं बनाई जगह
3: डिकी नहीं बनाई जगह
0: और क्या रे देखा जगदीश जी मोटा मोटा हो दे जगह बनाया खेतांग माने बाम ये ढाल करियोड़ी बे भी
3: पानी बे बे पानी इकट्ठो कर ले सा नहीं टैंकर कुडना पड़िया जान काला उनाल पानी पीऊ न काम आजे
0: भाई सब के काम आजे
3: हार ला खेताला पी ले बाबार जान निनान करे बरसात नहीं हुई ना
0: हां हां
3: तो भाई पानी ले जाई बोकरो ओदमू लोग घर घर होद ग्राउंड हर खेत में होद बनावे
0: समझन लाग
3: समझन लाग
0: पानी की मेहता समझन लाग
3: मेहता समझन लाग
0: और बात करें जी गांव के मायने तलाव तो थांग मोटा मोटा है मुंडवा
3: तलाव मोटा है
0: तो वो अंगोर अंगोर साफ सुथरो रहकर पानी भेड़ो करो
3: ये तलाव को पानी बहुत साफ सुथरो है जान कोई खराब हो सुगली वालो
0: पूरी सुविधा
3: खेरी है
0: तो अबारा लारले दस पंद्रह दिन पहले बिरखा भी तो यूं की पानी आयो
3: हाँ थोड़ा बहुत पानी आयो कल्डो तो कोनी आयो हिसाब को पानी आयो है
0: गांव के यहाँ चारा कानी तालाब है पूरा
3: हाँ तालाब है सर जान वो मोटो तालाब ही है ज्यादा फिर भी को काम और छोटी मोटी नाडिया है ना तो बे भी सब कटे कटे जो डाणियाला हराने सब आप अंगोरा की ध्यान रखे
0: हाँ।
3: पानी गल
0: कई जगह देखा देखो मारा तो कहीं रही जगह नहीं लोभ लाल चुकाई बा जकी जमीन वे आप हाँ। पड़त देख लो अंगोर देख लो बा दाबन में रहे तो की तो कोनी
3: नहीं तो कोनी कमी है
0: भाई कटी कटी से
3: कटी से भूरियो सा जान ज्यादा कोनी है
0: ज्यादा कोनी भाई पानी वास्ते जगह जगह पूरी साफ सुथरी
3: साफ सुथरी है
0: तो हमारे बाजरी में कोई रोग होग तो कौन लगे
3: नहीं
0: निरोगी फसल
3: हाल निरोगी है
0: और जुआर में
3: जुआर ही रेडी है जुआर एक की स्टार्टिंग में कहानी हुई दवाई छंटिया में रेडी है
0: तो दवाई कहीं भाई दूजा देखा देख अंग्रेजी के की जैविक करो
3: नहीं अब तो अंग्रेजी ने की सर जैविक कौन करी
0: कौन करी जैविक किया नाको तो
3: जैविक नेका मेथी के महीने नेक दिया
0: अच्छा
3: जान सियाला की फसल में जीरा फिरा के महीने बैंक महीने जान जित फिर जा वहाँ जब बना ले वहाँ
0: बनाओ खुद ही
3: बना ले
0: बनाओ क्या बनाओ
3: जान तांगे गुड़ है बेसन है
0: ठीक है
3: ट्राइकोडर में मिल जाए अगर लिक्विड डाली वो गोबर के महीने मिला वो खाद बना लिया
0: बनो किया जी बात करा विधि के सब पहले कहीं करो
3: सब पहले ड्रम रखा
0: ठीक है
3: ड्रम के महीने धागे दो किलो बेसन गाल दिया
0: ठीक है
3: दो एक किलो गुड़ और वो कम महीना बरते भी ने पड़ियो रखा
0: पड़ियो रखो
3: पता हिला डंडो
0: अच्छा गोबर

0: भेड़ो कर दियो।
1: इनका आइटम में दो चार जगह नेक दिया
0: हाँ हाँ
1: तो वो बाद में फसल ना चाहते पाई बोगरा।
0: अच्छा 2 महीना जिया गोड़
1: महीना
0: तैयार
1: दो
0: कर
1: महीना भी
0: पाचो
1: पड़ियो रखा
0: पड़ियो
1: पचो
0: रखो।
1: पचो यानी इस पर ग्रां हर टंकी में गाल बोगरा
0: ठीक है
1: ऐने जब फोन रहा तो सेंचुरियों पाई दिया।
0: तो कई तो कहवे जगदीश जी के वो की कार कम करे जैवी के जगह आ
1: थोड़ो
0: थोड़ी
1: हाँ थोड़ो कम तो करे पर अंग्रेजी देखो तुरंत असर करे
0: तुरंत असर
1: और धीरे
0: करे
1: धीरे करे।
0: भाई देसी दवाई वाली बात
1: देसी
0: है
1: दवाई वाली बात है।
0: जड़ू है जकी बाय देखो रोग
1: हाँ
0: मिटावे
1: रोग मिटा
0: अंग्रेजी की देख देन की वेर पाछो उसे के देसी
1: पाचो
0: पाछो कोन वे
1: पाचो गोन्यू है।
0: जन कुल
1: हाँ
0: मिला जैवी के जो देसी है जन फायदो है
1: हाँ भी हूँ फायदो है।
0: पर लोग हाल
1: अब आर
0: समझे को
1: डीएपी
0: नहीं।
1: बीच देखो गोबर खाद ने कहा जगह में धान बहुत तेज रही।
0: भाई बाजरी अबार दी
1: हाँ
0: की रही है थांगे
1: अब आर बाजी देखो खाद ने किड़ो जल्दी से
0: पूरी तगड़ी
1: फेरू
0: दिस है।
1: खाद लाइडो पड़ी है
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: डाल दे वहाँ।
0: खाद बजे जगदीश जी ओ काई करो इमे सड़क ला नाको हो
1: हाँ
0: क्या काई।
1: जान अबार ले लियो तो अब गए मुंडा अगली फसल में डाल दे वहाँ
0: अच्छा
1: सड़ियोड़ो है खाद खासा गलियोड़ो ही है
0: हाँ
1: फेरू गलजी से 5-6 महीना महीने बरसात को पानी आनी पीजो और गलजी
0: तो औरों की कचरो पूछ ना को हो
1: नहीं
0: माते
1: और
0: की
1: क्यों को नहीं क्यों सा
0: खाली
1: खाली
0: की।
1: गोबर गोबर ही है वो वापस पाँच बार अभी जान सर्दी की फसल चालू करा जखीम नेक दे वहाँ।
0: नाक देव
1: हाँ
0: बीघे एक मायने की तो काई नाकनो पड़े
1: बिग्गा के महीने 1.5-2 टोली नेक दिया।
0: पचे पाचो 2-3 साल मांग कर ले।
1: हाँ दो 1 साल छोड़ 1 साल नेक दिया जान बड़ी ही है कई कई बार सालों साल ही नेके टूबे लू पावे जना
0: हाँ हाँ हाँ
1: नहीं जी 1 साल छोड़ 1 साल नेक दिया।
0: अच्छा वो ही है जो गोबर ही ने को
1: हाँ
0: भाई
1: गोबर
0: एक
1: ही
0: मायने अंग्रेजी तो कम ही काम
1: हम
0: लो।
1: अंग्रेजी कम काम ले वहाँ।
0: तो जका भाई थान मिले है जिया थान पड़ोसी है तो बन के वो कोनी भी आपा पाचा है जो पुरानी खेती का नहीं चला आपा देसी है जो खाद
1: पन
0: है
1: तो
0: बीज
1: मानने को
0: काम
1: नहीं है के वहां तो घने जना ना पर मानने कम में नहीं लोगा ना आजकल तुरंत काम हुनो
0: तुरंत हो।
1: जल्दबाजी घनी है।
0: पर देखो बीमारियां तरह तरह की
1: हाँ
0: भांत भांति
1: तरह
0: हो
1: तरह
0: रही
1: की हो
0: है
1: रही है बीमारियां।
0: है
1: हाँ
0: तो भी हुआ जो असर तो अंग्रेजी को ही है गलो।
1: अंग्रेजी को ही है।
0: तो यूं लोगन थे को जागरूक करो कौन करो।
1: के वहां था कोई भाई सैन मिले जन के वहां सा देखो ओ बनाओ
0: हाँ हाँ
1: बेसन वालो गुड़ कोर गोमत
0: हाँ
1: कोर
0: हाँ
1: कहीं भाई धान बटवार वास्ते तो बढ़िया है
0: बहुत बढ़िया है।
1: कीड़ा वास्ते वार नीम वालो बना भी है। देखो कोई
0: नीम
1: नीम का पत्ता वो बनावे और कोई निम्बोलिया को बनावे
0: अच्छा
1: और कोई नीम ओइल ले आवे जहाँ नाम दुकान पर हूँ
0: ठीक है
1: वो ही बढ़िया है।
0: बोला थे नीम की कड़ी
1: हाँ
0: बनाएंगे
1: नीम को करने बाद 10-15 दिन में पौधा बस जीव कौन लागे
0: जीव कौन
1: दस
0: लागे।
1: पंद्रह दिन पाचो करता जब फिर जीव कौन लागे।
0: तो जगदीश कुल मिलार भाई जैविक खेती भी कर रही है और
1: हाँ
0: पानी की पूरी बचत कर रही है।
1: हाँ पानी की बचत तो जो पानी हो तो डिगी मंगा लिया पाचो काम आ जाए।
0: तो भाई जगह रेडियो होने है बन है जो नई खेती के बारे में जैविक खेती के बारे में काई विचार है था काई कहनी चाहो।
1: वहां तो आई गया देखो जैविक खेती रहे बत्ती यान फसल तो कांटा कम हुआ है पर गुणकारी ज्यादा हुआ है।
0: गुणकारी वे
1: हाँ
0: हाँ हाँ और कई सालते हैं जो
1: कई
0: जमी
1: साल
0: है जी आपारी सही रहे निरोगी।
1: हाँ जमीन तैयार रही।
0: भाई
1: हाँ
0: यूं अंग्रेजी जमिया खराब हो रही
1: हाँ
0: है।
1: अंग्रेजी जमीन देखो यूरिया वूरिया को मोदी जी के ही रही है बंद
0: हाँ
1: को
0: हाँ
1: धागे
0: हाँ हाँ
1: सुन रही है
0: हाँ सही
1: कहीं
0: है भाई।
1: डीएपी लिक्विड में काट दियो
0: हाँ
1: यूरिया अब देख लियो लमसम बंद होने की तैयारी है।
0: भाई नुकसान करे जी की चीजा
1: हाँ
0: बंद होनी है।
1: हाँ बंद होनी है जमीन खराब करे इनसे।
0: तो पाचे जी के आपने बढ़ रहे हैं खेती का
1: अब
0: चालू
1: आराम ना
0: करी
1: ये बाजरा में देख लो यूरिया दियोड़ो नहीं हाल हम तो बिल्कुल नहीं
0: पूरा देसी तरीका हो रही है।
1: हाल तो देसी तरीकों हो रही है।
0: तो इन उतार की बात करा तो जगदीश जी कत्तो का उतार
1: उतार
0: होगी
1: देखो साहब बरसात पर है बरसात हो जाए तो ताजो हो जी
0: तो बीघा का कताक मन
1: बीघा की
0: उजी
1: 10-15 मण हो
0: 10-15 मन बीघा की उजी जन तो बढ़िया उजी
1: बरसात हुए जाना
0: वे जन
1: नहीं
0: वे
1: हुए जन देखो कई हिंटी काड़ी की काटे
0: पच पच
1: कोनी।
0: ट्यूबवेल वाला पानी अति
1: हाँ
0: कौन वे
1: ट्यूबवेल वाला पानी होती कोनी
0: और
1: बरसात ही होट बरसात ही करे
0: जवार
1: सब
0: पचे आके ती गुजे
1: जवार देखो बरसात पर यह हिंटी काट जो वो उतार जवार
0: इमाते
1: को है।
0: भाई कुल मिलार
1: हाँ
0: पानी माते है अगलो
1: पानी माते डिपेंड है अगलो।
0: और पानी जो को बरसे अभी पूरी बचत है कर रही हो।
1: अब देखो हुए जितने तो घर यहाँ में चल रही है कि
0: हाँ
1: वो मिक्स हो जाए ट्यूबवेल को जाए फसल ही बढ़िया हुआ है।
0: बढ़िया वाह शाबाश जगदीश जी आज आप मिलर इतनी बंथल करी आपने घणो घणो धन्यवाद।
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेती बाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं तो नोट कीजिए हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का एसडी कोड है 015-82। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: सूचना समाप्त हुई।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: तो भाई देखो, अगली जे बात करा तो बाजार भावरी पांदड़ी मारते ही पुगती हुई है। तो आज नागौर मंडी मायने मूंगा नी बोली 5,500 ले 7,400 रुपया प्रति क्विंटल लागी। काला तिल नागौर मंडी में 9,000-11,000 तक बिका, तो धोड़ा तिल 10,000-11,500, जवार है जी की 4,500-5,800, गंवारी बोली 5,000-5,875, तारा मीरो 5,500-6,200, औसत 40% फैट का भाव, रायडा का रिया 8,100, जीरो नागौर मंडी में 17,000 लेर 20,800 रुपया प्रति क्विंटल बिक्यो, तो मेथी 5,700-6,300 तक बिकी। इस सब गोल 9,000-12,000 तक बिक्यो, तो सौंपरी बोली 7,000-12,000 रुपया प्रति क्विंटल लागी। नागौर मंडी में चीना 5,000-5,700, अषाढ़ियो 5,600-6,000, और सिंधी 6,600 रुपया प्रति क्विंटल बिक्यो। जे आपने भाव दाय आवे तो आप रिजिंसा है जे की पूर्ति कर सको मंडी में, और आप आमदनी ले सको, पैसा कमा सको, जेब भर सको। और देखो चौपाली जकी रंगत है वा तो गीत भजन सुई जमे, तो आज आपने पूग तो कर यहाँ कालू राम प्रजापति रो गाड़ो ओ गीत।

तो कालूराम प्रजापति रो गायडो लोकगीत आप तई पूगतो यो जाण हाक आपने दाय आवेला और इनरे साथे आज री खेतीबाड़ो टेम अब भी पूरो दिरो आपरे विष्णु भाई ने श्री करा राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। बड़ा ही खूबसूरत पर्यावरण संदेश आपने भेजा है। लिखा है, करते वृक्ष प्रदूषण दूर, देते हैं वर्षा भरपूर। बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो मित्रों, सबसे पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी का। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम भाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का। और आखिरी संदेश जो हमें मिला है वो हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या देवांगन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके उमंग कार्यक्रम से। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो आइए करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। तो श्रोताओं, आज हम एक बार फिर से चलते हैं सुदूर उत्तर पूर्वी सुंदर राज्य मेघालय और पहुंचते हैं वहां के पूर्वी खासी हिल्स में, जिसे हम ईस्ट खासी हिल्स भी कहते हैं। श्रोताओं, इन्हीं पर्वतों में बसा है मावली नोंग गांव। बता दें कि यह चेरापूंजी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। अब आइए जानते हैं कि क्या खास बात है इस गांव में। जी, तो आपको बता दें कि मावली नोंग गांव को सन

0: 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था। कहते हैं कि इसका नाम मावलिनोंग किसी प्राचीन स्थानीय गांव के मुखिया के नाम पर पड़ा है। श्रोताओं, इस गांव को लोग प्रेम से गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बगीचा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ चारों ओर सुंदर फूलों, पेड़ों और हरियाली का अनूठा और सुंदर संसार दिखाई पड़ता है। चारों ओर बादल, झरने और घने बादल इस गांव की खूबसूरती को बहुत बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। श्रोताओं, अब जानते हैं कि इस गांव की सबसे खास बात क्या है। जी, तो इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में सफाई और स्वच्छता किसी सरकारी विभाग या कर्मचारी का दायित्व तो नहीं है, लेकिन यहाँ के हर निवासी का काम है। यहाँ हर व्यक्ति गांव की सफाई में भाग लेता है। उस गांव को देखने वाले कहते हैं कि जैसे आप इस गांव की सीमा में घुसेंगे, आपको जगह जगह बांस से बने हुए सुंदर कलात्मक कूड़ेदान लगे हुए मिलेंगे। आप कूड़ा यहाँ वहाँ जहाँ जी चाहे वहाँ नहीं फेंक सकते। सड़क पर एक पत्ता भी दिखाई दे तो लोग तुरंत उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद श्रोताओं, सप्ताह के अंत में गांव का सारा कचरा एक जगह जमा किया जाता है और उसे जैविक खाद बनाई जाती है। प्लास्टिक और रासायनिक खाद पर पूर्ण प्रतिबंध है। आइए अब बात करते हैं यहाँ के समाज की। मित्रों, यहाँ समाज में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था चलती है, यानी परिवार का उपनाम माँ के नाम पर चलता है। एक और बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद बात आपको बताना चाहते हैं श्रोताओं। हम विश्वास करते हैं कि आपको भी ये बात बड़ी अच्छी लगेगी, और वो ये है कि इस गांव को देखने के लिए पूरे सप्ताह पर्यटक देश विदेश से आते रहते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ भी आते रहते हैं। पूरा सप्ताह गांव वालों के लिए बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए यहाँ की ग्राम समिति ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि प्रति रविवार को गांव पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाए। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गांव वाले चाहते हैं वे अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक समय यानी क्वालिटी टाइम शांति से बिता सकें। श्रोताओं, इस गांव के बाहर एक बहुत ऊंचा टावर है जिसे स्काई व्यू टावर कहते हैं। ये बांस का बना हुआ है। इस टावर पर चढ़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश को साफ साफ देखा जा सकता है। मावलिनोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। ये अद्भुत पुल प्राकृतिक इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। श्रोताओं, इसे लोहे या सीमेंट से नहीं बनाया गया, लेकिन ये रबर के पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाया गया है। सचमुच मावलिनोंग गांव अपने आप में एक अद्भुत गांव है और आज के युग में स्वच्छता और सामाजिक सामंजस्य की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से तो हमारा आज का प्रश्न है, मावलिनोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। मावलिनोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल पर भी आप अपना संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। श्रोताओं, कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा विशेषकर इतिहास के उन विभिन्न स्रोतों की चर्चा की गई है जिनके द्वारा हम अपने भूतकाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
2: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
3: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
4: हाँ, 2000 साल पहले।
3: नानी माँ?
5: हाँ निधि।
3: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
5: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
3: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
5: हाँ हाँ बताती हूँ, जल्दी क्या है।
3: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ,
4: ये तो बहुत पुराने हैं।

0: ना?
1: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आधिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
0: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
1: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
0: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
1: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
0: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
1: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
0: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
1: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना? अरे देखो देखो, तुम्हारे नाना जी भी आ गए, आइए आइए ना, देखिए बिटिया कुछ पूछ रही है।
0: नाना जी, पुरातत्वेता किसे कहते हैं?
2: हाँ हाँ बताइए ना नाना जी।
3: बेटी बड़ा अच्छा सवाल है, देखो पुरा यानी पुरानी या प्राचीन, तत्व यानी चीजें या वस्तुएं, और वेत्ता यानी जानकार।
0: अच्छा,
3: पुरानी या प्राचीन वस्तुओं की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, अंग्रेजी में इसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पंकज आज शाम को आएगा तो उससे पूछ लेना, ठीक है?
0: मामा जी, मामा जी।
4: अरे निधि, ओ आधिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
0: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है
0: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
4: अच्छा अच्छा, तो ये बात है, आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
0: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
4: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भूर्ज वृक्ष कहा जाता है।
0: अच्छा, भूर्ज वृक्ष?
4: हाँ, भूर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है, इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे, हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
0: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
4: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
0: अच्छा,
4: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है, हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
0: ये किस भाषा में है?
4: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने, ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है, उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
0: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
4: हाँ बताता हूँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
0: अच्छा,
4: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं, इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना, इसको उकेरना भी कहते हैं।
0: अच्छा,
4: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं, ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं, लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
2: अच्छा,
4: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
4: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
4: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
4: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
0: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
4: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
0: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
4: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
5: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख? अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मुकुल सिंह, कलाकार रंजीत कुमार, रेणु तंवर, अजीत होरो और पूनम कुदुसिया, बाल कलाकार आदिका और परिनिधि, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अंत में कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के द्वारा दो यात्रियों का एक रोचक यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार उन दो लोगों ने 80 दिनों में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लिया।
2: Which is the most interesting place you have visited? How did you go there and return? Have you traveled by different means of transport? Is there a mode of transport that you would like to use?
3: Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. This is the story of how he traveled with his companion, Passepartout.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। रात्रि के 8 बजने को हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: संसद समीक्षा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप वैष्णवी से संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनुवारुल हक। लोकसभा की कार्यवाही आज भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित रही। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने आज सदन में फिर हंगामा किया, जिससे प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। सदन में गतिरोध के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी सदस्य लोग गृह मंत्री के नाम का नारा लगाकर सदन से चले जाते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा का जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया, तब विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने लगे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहराते हुए नारा लगाने लगे। श्री बिड़ला ने भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है और उनसे प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि जब आप सब भी उनसे प्रेरणा ले और देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए चर्चा संवाद करें तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और उसे चलने देना चाहिए। श्री बिड़ला ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। उन्होंने कहा कि वे हर बार आप सबसे आग्रह करते हैं, लेकिन उनका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं होता है। अध्यक्ष ने कहा कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन की पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में ये विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग आज भी सवेरे से गृह मंत्री का नाम ले लेकर नारे लगा रहे हैं और हंगामा करके

गायब हो जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह सुबह-सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। वे दिन भर संसद में ही रहते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि जिस दिन यहां चर्चा होगी, गृहमंत्री अमित शाह जब यहां जवाब देंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नियम के अनुसार जो विधेयक होता है उसी से संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि आप यहां निर्देश नहीं दे सकते कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है, वे सरकार और आसन तय करते हैं। इसका पीठासीन दिलीप सैकिया ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया और कहा कि आप मन बनाकर आए हैं कि सदन चलने नहीं देंगे, ये सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 15वें दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 के कारणों तथा उद्देश्यों में कहा गया है कि एमएसएमई आर्थिक विकास के मुख्य कारक हैं, रोजगार सृजन करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसी इकाइयां सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ समय के दौरान तकनीकी बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों के बढ़ते प्रयोग और बदलते विधिक परिदृश्य के कारण मूल अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता है। इस विधेयक के माध्यम से 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निःशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि एमएसएमई की तरलता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इन इकाइयों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के मामले में केंद्र के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों को उनके इनवॉइस के निस्तारण व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा। विधेयक में इस बात के भी प्रावधान है कि राज्य सरकारें अपने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी इस तरह के उपबंध करेंगी। इस दौरान सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कई सांसदों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को बताया कि इस साल 31 मई तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2000 से ज्यादा अस्पतालों को सूची से हटा दिया है और 1200 अन्य अस्पतालों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए 29 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और लगभग 303 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण 2359 अस्पतालों को सूची से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में धोखाधड़ी के मामले में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जाती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई संदिग्ध दावों का पता लगाने के लिए एआई और मशीन लर्निंग पर आधारित स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल करती है। मंत्री ने कहा कि संदिग्ध माने गए दावों के भुगतान से पहले जांच 31 जुलाई 2026 तक 676 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना देश के आबादी के निचले 40% हिस्से को द्वितीय और तृतीय स्तर के अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है। यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। श्री नड्डा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पात्र लाभार्थियों के लिए लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, अस्पताल में भर्ती होने के लगभग 3 करोड़ मामलों को मंजूरी दी गई और योजना के अंतर्गत 5000 से अधिक अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल के दौरान 8400 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए। एक अन्य प्रश्न के जवाब में श्री नड्डा ने कहा कि 31 जुलाई 2026 तक देश में लगभग 96 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते

खाते आभा बनाए गए थे, जिनमें से 5 करोड़ से अधिक खाते गुजरात में बनाए गए। उन्होंने कहा कि आभा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक अहम घटक है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी गतिरोध बना रहा। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाहन 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि करो या मरो के आह्वान ने लाखों देशवासियों को सभी बाधाओं से ऊपर उठकर एकजुट होने और राष्ट्र की स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सभापति ने कहा कि गंभीर दमन, जेल और अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों ने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और देश की आजादी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। उनके निस्वार्थ बलिदान और दृढ़ इच्छा शक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया तथा 1947 में देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की तभी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद में गृह मंत्री की लगातार अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि सरकार सभापति की टिप्पणियों का सम्मान नहीं करके सदन का अपमान कर रही है। कल सभापति राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा था कि वे विपक्ष के भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाएं और सदन में उनकी मौजूदगी की मांग पर विचार करें। विपक्षी दल 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति की ओर से इस मामले में कोई निर्देश नहीं दिया गया है और विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्र चलता है तब गृह मंत्री पूरे दिन सदन में मौजूद रहते हैं और मंत्री अपने मंत्रालयों के एजेंडे के अनुसार संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री कब सदन में आएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति ने केवल टिप्पणी की थी लेकिन कोई निर्देश नहीं दिया था। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हैं और फिर संसद से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने इस व्यवहार की निंदा की। हंगामे के बीच ही सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए कहा। बीजू जनता दल के सुलता देव ने पखाला भात की विशिष्टता और ओडिशा की परंपरा में इसके महत्व को रेखांकित करते हुए इस व्यंजन को जीआई टैग देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पखाला भात केवल एक भोजन नहीं बल्कि राज्य की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की मांग की। भाजपा के प्रकाश चिक बाराइक ने उत्तर बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है लेकिन उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण अपनी प्रतिभा को निखारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाजपा के अमरपाल मौर्य ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले राम दर्शन रेल पथ गलियारे के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक विरासत और धार्मिक परंपराओं के प्रमुख केंद्र रहे हैं तथा इन क्षेत्रों का संबंध भगवान राम के जीवन और उनसे जुड़ी आस्थाओं से है। उन्होंने कहा कि यदि राम वन गमन मार्ग से जुड़े प्रमुख स्थानों को एक ही रेल गलियारे के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी।
जब ये सदस्य अपने मुद्दे उठा रहे थे तो विपक्षी सदस्य लगातार

0: नारेबाजी और हंगामे कर रहे थे। हालांकि सभापति ने उनसे सदन की कार्यवाही चलने देने की कई बार अपील की, लेकिन इस अपील का कोई असर न होते देख उन्होंने 11:30 पर बैठक को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करने की घोषणा की। दोपहर 12 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन से पूरक प्रश्न पूछने को कहा। सुमन ने ट्रेनों में कवच और सिग्नल प्रणाली लगाए जाने से संबंधित विषय पर पूरक प्रश्न पूछने के बजाय कहा कि सदन में गतिरोध कायम है और विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। सभापति ने सुमन को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सदस्य डॉ. एम थंबी दुरे से आज की प्रश्नावली में सूचीबद्ध से प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा। थंबी दुरे ने पूरक प्रश्न पूछा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन हंगामे की वजह से सदन में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन उनकी अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 12:04 पर बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: FM बैंड 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:15 में हैं। आइए सुनते हैं चंद फिल्मी कव्वालियां।

प्रोग्राम की पहली पेशकश आस्था फिल्म से हैं, आशा फिल्म का नाम, और आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

अभी आप फिल्मी कव्वालियाँ सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर। अब सुनते हैं फिल्म संगीत के तहत कार्यक्रम गाने नए जमाने के।

यह है प्रोग्राम का पहला गीत, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। फिल्म का नाम ए जेंटलमैन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए जमाने के। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 MHz पर।

FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य

0: मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमरीका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
1: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
2: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक के अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से

0: मैं विपिन मिश्रा।
1: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। दो दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
2: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मकदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान एनएफडीसी ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि एनएफडीसी और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फंड के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
5: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले 1 सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
6: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार।

0: भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिन्मय चैनल से बोल रहे हैं। सुगम संगीत में लीजिए चंद गज़लें समात फरमाइए। पहले पेश है ओला मली की आवाज़ में ये गज़ल।

0: अभी आप सुगम संगीत में चंद गज़लें समात फरमा रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरबी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
1: आशा भोसले की आवाज में हम साया फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। ओपी नैयर का संगीत, शिवन रिजवी के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर आपके लिए।

0: झुक गया आसमां फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।
1: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। वंदे सहभागी विशेषज्ञ

0: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
2: विविधारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

आशा भोसले की आवाज में नरम गरम फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर और कार्यक्रम का नाम है आपके लिए।

तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। संगीत का ये सुरीला सफर आपने तय किया अपनी दोस्त नेहा शर्मा के साथ, और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सावरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

सन 1947 भारत का विभाजन हो रहा था। एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करने वाला एक प्रोडक्शन मैनेजर लाहौर से मुंबई की तरफ रवाना हो रहा था। जाने माने शायर कतील शिफाई उसके दोस्तों में से एक थे। दो दोस्त जुदा हो रहे थे और शायर दोस्त ने अपने फिल्मी दोस्त से विदा लेते हुए उसे एक शेर उपहार में दिया। कतील शिफाई ने एक पर्ची पर लिख कर दिया था, उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी हरजाई की। ये पर्ची उस लड़के ने संभाल कर रख ली। देश के विभाजन के वक्त लाहौर से मुंबई आने वाला वो प्रोडक्शन मैनेजर था जे ओम प्रकाश। जे ओम प्रकाश आगे चलकर फिल्मी दुनिया के एक बड़े निर्माता और निर्देशक बने। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई।

जी ओम प्रकाश का जन्म 24 जनवरी 1927 को सियालकोट पंजाब में हुआ था। हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जब भारत अविभाजित था। ओम प्रकाश के पिता लाहौर के एक स्कूल में टीचर थे और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को उसूल सिखाए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी में तमाम उपलब्धियों से बढ़कर हैं आपके उसूल। पिता हमेशा बेटे से कहा करते थे कि आपको हमेशा जिंदगी में सीखते रहना है, ज्ञान की प्यास कभी खत्म नहीं होनी चाहिए और कभी ये मत मानो कि तुमने सब कुछ जान लिया है। और जानने की लालसा जिंदगी में बनाए रखना, देखना तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ओम प्रकाश लाहौर में एक फिल्म प्रोड्यूसर के दफ्तर में क्लर्क बन गए। बहुत लगन के साथ काम किया और फिर वो मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचे, यानी धीरे धीरे उनकी तरक्की होती चली गई। दिल में

हमने आपको बताया कि विभाजन के बाद जे ओम प्रकाश मुंबई आ गए। ये वो दिन थे जब उनकी जिंदगी का संघर्ष चल रहा था। संघर्ष के इन दिनों की रातें जे ओम प्रकाश लोकल ट्रेनों में सोकर बिताते थे। दादर से ट्रेन में बैठते, ट्रेन कल्याण तक जाती और फिर दादर वापस आती। जे ओम प्रकाश उस ट्रेन में ऊँगते रहते। जब पुलिस वाले देख लेते तो भगा देते थे, उतार देते थे। मुसाफिर थे जे ओम प्रकाश, चलते चले जाते थे लोकल ट्रेनों में अपनी मुफलिसी के दिनों में।

संघर्ष के इन दिनों में जे ओम प्रकाश को निर्माता निर्देशक मोहन सहगल की कंपनी में काम मिल गया। ये वो दिन थे जब मोहन सहगल न्यू दिल्ली फिल्म बना रहे थे, जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर बन गए। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में जे ओम प्रकाश चिंचपोकली नाम के एक इलाके में चौल में रहा करते थे। अभिनेता राजेंद्र कुमार भी उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और वहीं उनके साथ रहा करते थे। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब वो फिल्म उद्योग में बड़ा नाम बन जाएंगे तो एक दूसरे के साथ काम करेंगे, और दिलचस्प बात यह है कि ये वादा पूरा भी हुआ। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर लगातार काम करते रहे और उन्होंने फिल्मी दुनिया में फिल्में बनाने के हर पहलू पर गौर किया, उसे सीखा और उसमें माहिर बन गई।

साठ के दशक का वो जमाना जब जे ओम प्रकाश के भीतर एक सपना पल रहा था, और वो सपना था प्रोड्यूसर बनने का सपना। उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू की कि कोई ऐसा फाइनेंसर हो जो पैसे लगाने के लिए राजी हो जाए और उनकी फिल्म बन जाए। बहुत संघर्ष के बाद जब कहीं कोई

उम्मीद नहीं बची थी, अचानक एक दिन फाइनेंसर का फोन आया। वो फिल्म में पैसा लगाने के लिए राजी हो गए। इस तरह से 60 के दशक में जे ओम प्रकाश ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया फिल्म युग। फिल्म युग की पहली फिल्म आई आस का पंछी। इस फिल्म के हीरो थे वही राजेंद्र कुमार जो चिंच पोकली के संघर्ष के जमाने में जे ओम प्रकाश के साथ रहा करते थे। हीरोइन थी वैजयंती माला। संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन। मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के निर्देशक बनाए गए मोहन कुमार जो मोहन सहगल के असिस्टेंट हुआ करते थे। फिल्म आस का पंछी जबरदस्त हिट रही और एक प्रोड्यूसर के तौर पर जे ओम प्रकाश और फिल्म युग छा गए।

0: यहाँ तक चले।
1: इसके बाद मोहन कुमार के ही निर्देशन में जे ओम प्रकाश ने अपने प्रोडक्शन हाउस फिल्म युग की दूसरी फिल्म पेश की, जिसका नाम था आई मिलन की बेला। ये फिल्म सन 1964 में आई थी। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे।
0: आहा, आई मिलन की बेला देखो आई बन

सन 1966 में जे ओम प्रकाश ने एक नए निर्देशक को मौका दिया। ये निर्देशक थे रघुनाथ झालानी, जो उन दिनों में बिमल रॉय के असिस्टेंट हुआ करते थे। रघुनाथ झालानी ने बनाई आए दिन बहार के। मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और आशा पारेख।

सन 1969 में रघुनाथ झालानी ने ही बनाई आया सावन झूम के। ये भी जी ओम प्रकाश की एक बहुत जबरदस्त फिल्म थी।

आपको बता दें कि जे ओम प्रकाश अक्सर ही नई प्रतिभाओं को मौका दिया करते थे। उन्होंने रघुनाथ झालानी को मौका दिया बतौर निर्देशक, जिन्होंने आए दिन बहार की बनाई। रघुनाथ झालानी बिमल रॉय के सहायक निर्देशक हुआ करते थे। इसी तरह उन्होंने मुकुल दत्त को मौका दिया और निर्देशन की दुनिया में उनका पहला कदम बना आन मिलो सजना।

सचिन भौमिक जाने माने स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे। उन्हें निर्देशन की दुनिया में मौका दिया जे ओम प्रकाश ने और फिल्म आई राजा रानी। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों के नाम हमेशा अ से हुआ करते थे। ये उनका एक अंधविश्वास था कि अगर वो फिल्मों के नाम अ से रखेंगे तो वो फिल्में ज्यादा चलेंगी। इत्तेफाक ये भी हुआ कि दो ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई जिनके नाम अ से नहीं थे और वो ज्यादा नहीं चली, सचिन भौमिक के निर्देशन वाली राजा रानी और फिल्म भगवान दादा। ये दोनों फिल्में जे ओम प्रकाश के प्रोडक्शन से आई थीं और इनका नाम अ से नहीं था। वैसे अ से फिल्मों के नाम शुरू होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी का ताल्लुक उसी घटना से है जो हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताई थी। सन 1947 में जब भारत का विभाजन हो रहा था, तब जे ओम प्रकाश के दोस्त मशहूर शायर कतिल शिफाई ने जुदा होते हुए एक पर्ची पर एक शेर लिखकर दिया था जे ओम प्रकाश को। कतिल शिफाई ने यह कहा था कि तुम चाहो तो इस शेर का इस्तेमाल आगे चलकर अपनी फिल्मों के लिए कर लेना। सन 1960 के जमाने में जब जे ओम प्रकाश प्रोड्यूसर बने और अपनी पहली फिल्म बनाने लगे, तो जो कहानी उनके पास थी वो थी एक नौजवान की कहानी जो फौज में जाना चाहता है और उसके परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं हैं। इस फिल्म का नाम उन्होंने कतिल शिफाई के इस शेर में से ही लिया, आस का पंछी। आगे चलकर कतिल शिफाई ने जे ओम प्रकाश को चिट्ठी लिखी और कहा, देखा मेरा शेर तुम्हारे कितने काम आया।

जी ओम प्रकाश फिल्मी दुनिया में पूरी तरह से डूब जाना चाहते थे, यानी फिल्म बनाने के हर पहलू पर जुनून की हद तक उनका ध्यान था। चूंकि वे फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए उनकी रचनात्मक प्यास अभी भी पूरी तरह से नहीं बुझ रही थी और इसके लिए उन्होंने निर्देशक बनने की ठानी। सन 1973 में वो निर्देशक बन गए फिल्म आपकी कसम के जरिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार। वैसे आपको बता दें, आपकी कसम सन 1970 में आई के एस सेतु माधवन की फिल्म वजवे मायम पर आधारित थी, लेकिन ये जे ओम प्रकाश की फिल्मी समझ थी कि उन्होंने मूल मलयालम फिल्म के अंत को बदल दिया। मूल मलयालम फिल्म में पति और पत्नी दोनों ही समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जे ओम प्रकाश ने फिल्म आपकी कसम का अंत कुछ इस तरह से रखा कि पति पत्नी के कदमों में अपना दम तोड़ता है और इस तरह से वो अपना प्रायश्चित करता है।

जाने माने निर्माता निर्देशक बी आर चोपड़ा ने आपकी कसम को देखकर ये कहा था कि ये फिल्म किसी नए नवेले निर्देशक का काम नहीं लगती, बल्कि एक बहुत पके हुए और समझदार निर्देशक का काम लगती है। जे ओम प्रकाश ने इसके बाद बनाई आंखों आंखों में।

फिल्म युग हमेशा अपनी सामाजिक फिल्मों के लिए जाना जाने वाला फिल्म बैनर रहा। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो परिवार के साथ देखी जा सकें या जिनमें कोई सामाजिक पहलू हो। जे ओम प्रकाश ने इस तरह से मनोरंजक और खुशनुमा फिल्में बनाने वाले एक निर्माता निर्देशक के तौर पर अपना नाम स्थापित कर लिया था। सन 1975 में उन्होंने निर्देशन किया फिल्म आक्रमण का। सन 1975 जे ओम प्रकाश के करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण साल बन गया जब उन्होंने कमलेश्वर की कहानी पर गुलजार के निर्देशन वाली फिल्म प्रोड्यूस की

इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे सुचित्रा सेन और संजीव कुमार। सन 1977 में जे ओम प्रकाश ने फिल्म अपनापन का निर्माण और निर्देशन किया। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश ने बाहर की कई फिल्मों का निर्देशन किया, यानी ऐसी फिल्में जिन्हें उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया था। ऐसी ही एक फिल्म थी सन 1977 में आई आशिक हूं पहाड़ों का। सन 1981 में आई फिल्म आसपास के निर्देशक जे ओम प्रकाश ही थे। इस फिल्म की एक खासियत आपको बता दें, मशहूर गायक मोहम्मद रफी 31 जुलाई 1980 को इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। उनका जो आखिरी गाना रिकॉर्ड किया गया था वो फिल्म आसपास के लिए ही किया गया था। सन 1980 में जे ओम प्रकाश ने बनाई अपनी जबरदस्त कामयाब फिल्म आशा।

जी ओम प्रकाश ने इस बीच में कई फिल्में बनाई जिनमें से कुछ बहुत कम चली और कुछ नहीं चली। सन 1993 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म का निर्देशन किया था जिसका नाम था आदमी खिलौना है। जी ओम प्रकाश अपने फिल्मी करियर में इम्पा के प्रेसिडेंट रहे, इसके अलावा फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट भी रहे और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए भी उन्होंने जमकर काम किया। वो फिल्मी दुनिया से रिटायर हो चुके कलाकारों के कल्याण में लगे रहे थे।

0: आप सुन रहे थे निर्माता निर्देशक जी ओम प्रकाश पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। इस समय रात्रि के 10 बज चुके हैं। हमारी आज की यह सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल सवेरे 8:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।